मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्स पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की चौथी तिथि, तदनुसार 26 सितंबर 2026। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 और 10 सेकंड्स हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ उपस्थित है आपकी दोस्त व्याप्ति उमड़ेकर। आप सभी को मेरा नमस्कार, सुप्रभात।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। हिंदी में समाचार अब से कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार आकाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच

0: की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृह मंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना 31 अगस्त को मुंबई की नौसेना गोदी में निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई UPI ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के साथ वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की एक दशक की लंबी सफलता की सराहना की है।
1: दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में UPI की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में UPI के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। UPI की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। UPI अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात UAE, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाना है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने प्याज की सस्ती बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाने और नेफेड से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन की यात्रा पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। इस दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसुआ फिलिप शोपेनिए के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका जाएंगी। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के 4थे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए सुनते हैं वंदना में सबसे पहले समूह स्वर में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। वंदना की अगली प्रस्तुति में सुनते हैं पंडित कुमार गंधर्व की आवाज़ में ये भजन।

वंदना में अंतिम प्रस्तुति के रूप में सुनते हैं महेंद्र कपूर व सुलक्षणा पंडित की आवाज़ में ये भक्ति गीत।

0: इसी के साथ आज की वंदना यहीं संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। लीजिए सुनिए परनिंदा विषय पर श्री केजी माहेश्वरी के विचार। वाचक स्वर यतिंद्र चतुर्वेदी का है।
1: मानव का एक स्वभाव है, वो दूसरों की बुराई करने व सुनने में बहुत ही रुचि लेता है। वह नहीं समझता कि जो ही हम किसी की निंदा करते हैं, नरक का द्वार हमारे लिए अपने आप ही खुल जाता है। भले ही आज का मानव विशेष तौर से अपने को शिक्षित कहने वाला मानव, स्वर्ग व नरक में विश्वास न करने वाला मानव है, पर रहीम के शब्दों में रहीमन जिव्वा बाबरी कह गई सरग पताल, आप तो कहीं भीतर गई जूती खात कपाल। बहुत से लोग तो ये भी कहते हुए मिल जाएंगे कि निंदा करने से तुरंत ही लाभ प्राप्त होता है। ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि क्षणिक लाभ के लिए हम अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इस निंदा का मूल्य न चुकाना पड़े। इसी भ्रम में एक व्यक्ति ने अमेरिकी पत्र में जेम्स शील्ड नामक व्यक्ति की खिल्ली उड़ाई। बड़ी चटपटी भाषा में वो पत्र छापा गया। इस पत्र को पढ़कर शील्ड आग बबूला हो गए और पत्र लेखक के गुमनाम होते हुए भी वो उसके घर तक पहुंच गए। बस फिर क्या था, दोनों में बहस हुई और तलवार से द्वंद्व युद्ध का फैसला हुआ। नियत तिथि को दोनों एकत्रित हुए, पर उनमें से एक व्यक्ति जिसने पत्र छपवाया था द्वंद्व युद्ध जानता तक न था। खैर, कुछ लोगों ने बीच बचाव करके फैसला किया, तब वह व्यक्ति बच सका। कौन था वह व्यक्ति जानते हैं? वह अमेरिका के शिखर तक पहुंचने वाले एक राष्ट्रपति थे। इस निंदा के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के लिए यही सलाह है कि वो निंदा से बचें। निंदा करने वाले व्यक्ति के पास आगे पीछे बहुत से लोग एकत्रित हो जाते हैं, उसे उकसाते भी हैं, और वह यह नहीं समझ पाता कि उससे कितना बड़ा पाप हो रहा है। निंदा करने वाला तो दोषी है ही, पर निंदा सुनकर अपना आपा खोना और भी बेवकूफी है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, उस निंदा से हम अपने दोषों को ढूंढने व उन्हें दूर करने का प्रयास करें। निंदक के विरुद्ध मोर्चेबंदी से कोई लाभ नहीं होने वाला। निंदा का बदला निंदा ही नहीं है, क्योंकि बैर का वृक्ष बड़ी तेजी से फलता फूलता है। कभी कभी तो पुष्ट दर पुष्ट

0: यह बढ़ता ही जाता है। तब आप ही सोचिए कि यह सौदा कितने घाटे का है। अच्छे व घनिष्ठ मित्र इसी के कारण कभी कभी कटु शत्रु बन जाते हैं। जिन्हें हम प्यार करते हैं उन्हीं को कभी मिट्टी का तेल डालकर भस्मसात करने से भी हम नहीं चूकते। निंदा के चलते आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक हानि तो होती ही है। निंदा करने वाले को लोग दूर से ही पहचान लेते हैं। अतः इस व्यसन से बचें, तभी कल्याण हो सकता है। यदि हम किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते तो न सही, पर निंदा तो न करें। निंदा करने वाले न तो मानव को देखते हैं और न ही भगवान को। इसीलिए निंदा से बचना ही श्रेयस्कर है।
1: अभी आप सुन रहे थे परनिंदा विषय पर श्री केजी माहेश्वरी के विचार। वाचक स्वर यतिंद्र चतुर्वेदी का था। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

राजा जनक की यज्ञशाला में शिव के जिस धनुष को रावण तथा बाणासुर जैसे जगत विजयी वीर हिला तक नहीं सके, उसे खंडित करने के लिए गुरु विश्वामित्र का आदेश पाकर श्री राम उठ खड़े हुए। इधर लक्ष्मण ने अग्रज को धनुष की ओर ताकते देखकर अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाकर दिक्पालों, कच्छप तथा शेषनाग और वराह को सावधान होकर पृथ्वी को दबाए रहने का आदेश दिया ताकि वो हिलने ना पाए। श्रीराम धनुष के निकट पहुंचे। सबका संदेह और अज्ञान, अभिमानी तथा दुष्ट राजाओं का अभिमान, परशुराम के गर्व की क्रूरता, देवताओं की कातरता, सीता जी की सोच, राजा जनक का संशय, सभी मानो शिव जी के धनुष रूपी जलयान पर आकर सवार हो गए। लगा वो राम की भुजाओं के बल का सहारा पाकर भव सागर पार कर जाना चाहते हैं। श्री राम ने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और बड़ी सहजता से धनुष को उठा लिया। उसे उठाते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा कि एक भयंकर नाद के साथ वो दो खंडों में टूटकर पृथ्वी पर आ गिरा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा। आज इस कार्यक्रम में जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह। विषय है कीटनाशक रसायनों के प्रयोग में सावधानियां।
1: किसान भाइयों, हम फसल उत्पादित करते हैं। फसलों में कीट और व्याधि लगना स्वाभाविक है, कोई भी मौसम हो। केवल अंतर यह रहता है, किसी मौसम में कीट फसलों को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं और किसी मौसम में कम। जब फसलों में कीट और बीमारियों का प्रकोप अधिक बढ़ जाता है और फसलों में नुकसान आर्थिक स्तर से अधिक होने लगता है, तो कीटनाशक या फफूंदनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं। इन दवाओं का प्रयोग कुछ सावधानी पूर्वक करना चाहिए। फसलों में कीट या बीमारी की नुकसान पहुंचाने की स्थिति कैसी है, किस तरह फसलों को हानि हो रही है, कीट की प्रवृत्ति कैसी है, उसी के आधार पर कीटनाशक या फफूंदनाशक दवाओं का चयन करना चाहिए। कीटनाशकों का घोल हमेशा खुली जगह पर बनाएं। घोल किसी बड़े बर्तन में बनाना चाहिए। घोल की आवश्यकता के अनुसार पानी एक साथ मिला लें, जिससे घोल की सांद्रता एक समान रहे। घोल बनाते समय हाथ में दस्ताने और मुंह पर मास्क पहन लेना चाहिए। साथ ही कीटनाशक दवा प्रयोग करने वाले व्यक्ति के शरीर पर किसी भी प्रकार की खरोंच या घाव न हो, अगर हो तो पट्टी बांध लेनी चाहिए, क्योंकि कीटनाशक दवाएं अधिकतर जहरीली होती हैं और हानिकारक हो सकती हैं। कीटनाशक दवा हमेशा हवा को देखते हुए प्रयोग करनी चाहिए। हवा के विपरीत दिशा में कभी भी दवाओं का प्रयोग न करें। अगर हवा तीव्र गति से चल रही हो तो कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दवा का प्रयोग मौसम को देखते हुए भी करना चाहिए। यदि बादल छा रहे हों, बरसात होने की संभावना हो, उस स्थिति में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग न करें। घोल को लकड़ी की सहायता से हमेशा हिलाते रहना चाहिए, जिससे घोल की सांद्रता एक समान रहे। दवा का छिड़काव करने वाले व्यक्ति को कार्य करते समय किसी भी प्रकार का धूम्रपान या खाद्य पदार्थ उपयोग में न लाएं। दवाओं के घोल में स्टिकर अवश्य मिला लें, जिससे दवा फसल के विभिन्न भागों पर अधिक समय तक चिपकी रह सकती है। दवा का छिड़काव करने के लिए फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे फसलों में एक साथ छिड़काव होगा और ऐसा छिड़काव करना चाहिए कि पौधा पूरी तरह भीग जाए। यदि दानेदार दवाओं का भुरकाव कर रहे हैं, वहां पर दवा पौधों की जड़ों की कुछ दूरी पर ही प्रयोग करनी चाहिए, नहीं तो जड़ों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। साथ ही दवा प्रयोग करने से पहले भूमि में नमी होना अत्यंत आवश्यक है और दानेदार या पाउडर वाली दवाओं का प्रयोग सुबह के समय ही करें। दवाओं का भुरकाव हमेशा डस्टर से करना चाहिए। हाथ से दवा का भुरकाव करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है और न ही फसलों पर समान रूप से भुरकाव हो पाता है। जहाँ पर कीटनाशक छिड़काव के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ पर स्प्रेयर को पूरा न भरें। हमेशा 3/4 भरना चाहिए, जिससे कार्य करने में सुगमता रहे। अगर किसी भी कारण से नोजल में रुकावट आ जाती है तो फूंक मारकर कभी भी साफ न करें। दवा का छिड़काव करने के बाद कृषि यंत्र, डस्टर या स्प्रेयर को तालाब में न धोएं, क्योंकि तालाबों के पानी को पशु पीते हैं और वह पशुओं के लिए हानिकारक हो सकता है। कृषि यंत्रों का प्रयोग करने के बाद साफ करके ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जो बच्चों और पशुओं की पहुँच से दूर हो। कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करने के एक निश्चित समय तक फसलों के उत्पादों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ दवाओं के अंश उत्पादों के माध्यम से पशुओं, मनुष्यों में चले जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अगर बाड़ी की सब्जी प्रयोग कर रहे हैं तो धोकर साफ करके ही प्रयोग करनी चाहिए।
0: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। विषय था कीटनाशक रसायनों के प्रयोग में सावधानियां। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।

0: पेड़ की।
1: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
2: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
1: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
2: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
1: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
2: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
1: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
2: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
1: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
2: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
1: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
2: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
1: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
2: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
3: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे,
2: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
1: समय है पानी बचाने का,
2: पानी का मोल समझने और समझाने का।
4: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र और राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृहमंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना 31 अगस्त की मुंबई की नौसेना डॉकयार्ड में नेपस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये 6ठी बैठक थी। इसमें 382वीं रिपोर्ट के मसौदे पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाना है। इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है कि वह केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करेगा। केंद्र सरकार ने इस याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। दोनों देशों ने कहा कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर

हेक्टर यानी 1386 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:05 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा।

प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से सुबह 7:10 पर अनुप्रसारित होंगे। सुबह 7:20 पर सुनिए सीमा जैन से उनकी कहानी नन्ही हथेलियों में। प्रातः 7:30 पर श्रोता साथी आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। प्रातः 8:00 समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ सुबह 8:15 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होगी।

श्रोता साथी आनंद लेंगे सुगम संगीत का प्रातः 8:30 पर। कलाकार हैं निकिता जोशी। इस घंटे की खास खबरें सुनिए सुबह 8:58 और 10:58 पर। प्रातः 9:00 सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। श्रोता साथी आनंद लेंगे शास्त्रीय संगीत का सुबह 9:30 पर। कलाकार हैं पंडित भजन सवपोरी।

जिले की चिट्ठी प्रातः 10 बजे आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित होगी। श्रोता साथी आनंद लेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का सुबह 10:05 पर।

प्रातः 11 बजे से सभा की समाप्ति तक सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। सुनिए महिला कार्यक्रम दोपहर 1 बजे। ये आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

हमारी सायंकालीन सभा भी पुनः आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित की जाएगी। युवा साथी आनंद लेंगे उनके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का शाम 5:02 पर। ये आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति होगी। शाम 6:00 सुनिए NCERT का शैक्षणिक प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

7:20 पर हमारे ही केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल। चर्चा के विषय होंगे नेत्रदान महादान और मिलाद उन नबी। साथ ही श्रोता साथी सुनेंगे श्री लोकेंद्र सिंह जादौन से सोहन सिंह की बातचीत। विषय होगा गन्ना की फसल में सामायिक कार्य। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न होता है।

0: आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब से कुछ ही देर में हमारे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाएं। प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े 10,630 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंत्रिपरिषद ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मालनपुर में गोदरेज की चौथी विनिर्माण इकाई का करेंगे शुभारंभ और प्रदेश में भोपाल और उज्जैन सहित 5 संभाग के जिलों में तेज बारिश होने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े 10,630 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने 12 सड़क मार्गों के निर्माण के लिए मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को नाबार्ड से 4,600 करोड़ रुपए के ऋण की शासकीय गारंटी देने का निर्णय लिया। ये भी निर्णय लिया गया है कि 22 चयनित राजमार्गों, जिला और ग्रामीण मार्गों का स्वामित्व मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को हस्तांतरित किया जाएगा। बैठक में सिवनी बालाघाट के 91.64 किलोमीटर मार्ग को 3,960 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन करने की मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने गरीब और कमजोर वर्गों से जुड़ी 19 जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए 1,740 करोड़ 40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके साथ ही उज्जैन के मध्यप्रदेश धनवंतरी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 244 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा है कि नशीले पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों के संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल ग्वालियर जिले के डबरा तहसील प्रांगण में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में वर्चुअली संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत किसानों की सेवा और समृद्धि के लिए बलराम कृषि महोत्सव मनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्वालियर तेजी के साथ विकास की ओर अग्रसर है। ग्वालियर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का भी बड़ा हब बनने जा रहा है। डॉ. यादव ने ग्वालियर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी आदर्श गौशाला लाल टिपारा की भी सराहना की। श्री यादव ने कहा,
1: ग्वालियर की पावन धरती पर डबरा के अंदर बलराम कृषि महोत्सव के माध्यम से किसानों को

0: बाकी आनंद के साथ त्योहार की पूर्व दो दिन के पहले से जो माहौल बन रहा है, वास्तव में रक्षाबंधन में बहनों के साथ इमरती देवी, प्रियंका जी, सारी हमारी बहनें बैठी हुई है। अब तो 33% आरक्षण मिलने वाला, बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। आपके कलेक्टर भी बहन है और सारे लोग यहाँ आने वाले समय की दृष्टि से ये सरकारों का पावर आप ही को मिलने वाला है। मैं अपनी ओर से खासकर बलराम कृषि महोत्सव में आप सबको पुनः स्वागत करता हूँ। भगवान बलराम जी की जयंती 2 तारीख को है, लेकिन अब ये तो किसान कल्याण वर्ष पूरा वर्ष मना रहा है।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भिंड जिले के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की चौथी विनिर्माण इकाई का शुभारंभ करेंगे। 450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित इस इकाई से 2,250 रुपए से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। नई इकाई में आधुनिक स्वचालित पैकेजिंग प्रणाली और 10 मीट्रिक टन प्रति घंटे क्षमता वाला सैपो निफिकेशन संयंत्र स्थापित किया गया है। विस्तार के बाद राज्य को प्रति वर्ष लगभग 185 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जीएसटी राजस्व मिलने का अनुमान है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में अन्य किसानों के बीच दी जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा,
3: इतना बड़ी बड़ी चुनौतियां जिस रहे, चेंज का खतरा है, पानी की कमी है, मिट्टी के, आप में से ही किसी ने कहा कि प्राकृतिक खेती कितनी आवश्यक है, आपके बीच में ही किसी ने कहा चार चार जिसकी जरूरत ही नहीं, मारे जा रहे हैं, कार्बन कम हो रहा है, नई नई बीमारियां, नए कीट, खेती की लागत भी बढ़ रही है और बाजार भी तेज लगे हित हाथ। एक विषय पे और जाट साहब मैं सुझाव दे रहा हूं आप लोग।
1: हरियाणा के पंचकुला में हुए भारतीय एथलेटिक्स सीरीज के 14वें चरण में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में विक्रांत पांचाल ने 46.16 सेकंड के समय के साथ जीत दर्ज की। उन्होंने ओलंपियन मोहम्मद अजमल को पीछे छोड़ा, जो 47.03 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहे। महिलाओं की हैमर थ्रो में तान्या चौधरी ने 61.28 मीटर के प्रयास के साथ पहला स्थान हासिल किया। प्रदेश में मॉनसून अब उत्तरी, पश्चिमी और मध्य हिस्से में एक्टिव रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक भोपाल, उज्जैन, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में तेज बारिश का अनुमान जताया है। प्रदेश में इस मॉनसूनी सीजन में औसत 25.5 इंच बारिश हो चुकी है, जो कुल कोटे की 68% है। मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया और सागर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शाजापुर, राजगढ़, आगरमालवा, उज्जैन, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, दमोह, मैहर और सिवनी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल में 1 सितंबर को स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत महाविद्यालय के विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिनटेक के क्षेत्र में IIT दिल्ली के विषय विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। टिंडौरी में अति वर्षा और बाढ़ की संभावित स्थिति को देखते हुए यात्री बसों के सुरक्षित संचालन के लिए जिला परिवहन अधिकारी द्वारा यात्री बस ऑपरेटर्स और संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दतिया में संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। अशोकनगर के कलेक्टर साकेत मालवीय कल ग्राम पलकाटोरी में औद्योगिक क्षेत्र विकास के संबंध में कहा कि जिला प्रशासन द्वारा उद्योग स्थापना के लिए उद्यमियों के लिए हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत झाबुआ जिले के पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए द्वारका सोमनाथ तीर्थ यात्रा प्रस्तावित है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:20 हो रहे हैं। अब सुनिए सीमा जैन से उनकी कहानी नन्ही हथेलियों में।
1: बरखा जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। महादेवी माई की महिमा को आपने बड़े मन से प्रस्तुत किया। आपके यह शब्द मैं भूल नहीं पाऊंगा। हमारे शरीर में 70% पानी है। एक तरह से महादेवी हमारे भीतर भी है, या मैं भी महादेवी हूँ। मेरे शब्दों को दोहराते हुए उसने मेरी आँखों में झांका था। बस एक पल भी नहीं लगा और मैं उसकी आँखों की गहराई में डूब चुकी थी। डूबने का कारण उसकी आवाज़ थी, या गहरी हरी भूरी आँखें, या उसकी और मेरी एक सी सोच, पता नहीं क्या था। पर जो भी था, वही पल हमारे प्रेम का कारण बना था। प्रेम पहली निगाह में ही होता है, यह शाश्वत सत्य है। जब कुछ महीनों के बाद मैंने कुंतल दादाल से कहा कि मुझे गौतम से प्रेम हो गया है, मैं उसे आपसे मिलवाना चाहती हूँ, तब दादा ने कहा था, इतनी जल्दी इस रिश्ते को प्रेम का नाम मत दो बेटा। दादा, गौतम बिल्कुल मेरे जैसा है। बहुत समय हो चुका है उससे मिलते हुए। अब हम कहते कहते मैं रुक गई थी। गौतम जिन शब्दों के साथ मेरे दिल में उतरे थे, बस उन्हीं की डोर थाम कर मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी। जिस दिन प्रेम का इकरार हुआ था, उसी दिन को हमने शादी के लिए चुना था। आज शादी के 7 साल बाद उसी डोर को एक झटका लगा अब यह टूट जाएगी। शाम के समय हम अपने बगीचे में थे। मानव एक पौधे की पत्तियों को तोड़कर उनसे खेलने लगा। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया, पर वह नहीं माना। जब मैं उस पर चिल्ला उठी तो गौतम ने मुझसे कहा, बरखा तुम ये क्या कर रही हो? मानव को कैसे डांट रही हो? बच्चे पर कौन ऐसे चिल्लाता है? देखो गौतम, मानव कैसे पत्तियां और फूलों को तोड़कर फेंक रहा है। ये बहुत जिद्दी होता जा रहा है, बिल्कुल भी कहना नहीं मानता। यह इसका हर दिन का खेल हो गया है। अपने गार्डन में मेरे बेटे का जो मन कहे वो करे, उसे अपने ढंग से खेलने दो ना। 2-4 पत्तियों के टूट जाने से गार्डन में क्या कमी आ जाएगी? 2 बेडरूम के फ्लैट से एक बंगले तक का सफ़र हमने तय किया था। इस रास्ते में गौतम बहुत बदल चुके थे। गौतम, इनमें भी जान है, अब इसे समझना चाहिए। पानी की बर्बादी पर इसे रोक नहीं सकते। कोको को सताए, उसकी पूंछ पर पैर रखे, उसे परेशान करे, पानी पीते या खाते हुए उसके बर्तन हटा दे, ये सब क्या है गौतम? और तुम कहते हो कि यह खेल रहा है। तितलियों को पकड़कर मार दे, या एक दिन में एक पेंसिल शार्प करके ख़त्म कर दे, तुम्हें यह सब ठीक लगता है? गौतम, तुम्हारी शह से यह गैर जिम्मेदार हो रहा है। यार, छोटे बच्चे पे कौन इतनी पाबंदियां लगाता है? अब हम अपने बेटे को प्यार से, इसे प्यार नहीं प्यार में बिगाड़ना। बरखा छोड़ो यार, मैं अपने बेटे को तुम्हारा नहीं हमारा बेटा, ठीक है? हमारा बेटा, हमारा बेटा वैसे ही पलेगा जैसे मैं। फिर मुझे सोचना होगा कि मैं क्या चाहती हूँ। यहाँ बात सिर्फ मैं की नहीं हो सकती है। मतलब तुम शायद भूल चुके हो कि हमारे मिलने का कारण महादेवी माई थी। मैं आज भी प्रकृति और पर्यावरण के लिए उतनी ही जिम्मेदार हूँ जितनी कल थी। तुम शायद बदल रहे हो। अपनी संतान और पर्यावरण को बचाना ही मेरी जिम्मेदारी। बरखा, कैसी बातें कर रही हो? संतान को बचाना माने क्या? एक छोटी सी बात को कितना तूल दे रही हो? अपने बेटे के भविष्य और इसके भविष्य के लिए यह पृथ्वी, इन दोनों को नहीं सहेजा तो क्या किया? यह सब अपने ही हाथों से नष्ट होते देखना बहुत पीड़ादायक। कहते कहते मेरी आंखें भर आई थी। बच्चे की मस्ती में तुम्हें क्या नष्ट होते हुए दिख रहा है, मैं नहीं समझ पाऊंगा। तुम आज भी अपना काम पूरी शिद्दत से कर रही हो। मैं भी तुम्हें जितना दे सकता हूँ कवरेज दे ही देता हूँ। कहते हुए गौतम मानव का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गए। मैं वहीं रुक गई। गौतम का फोन आया। बरखा, रात हो गई है, अंदर आओ, खाना खा लो। मानव तुम्हारे बगैर खाना नहीं खा रहा है। तुम खाना खा लो, मैं दादा के पास जा रही हूँ। कैब में बैठते हुए मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और मैं गाड़ी में बैठ गई। आज पहली बार यह ख्याल करने का मन नहीं हुआ कि मानव मेरे बगैर कैसे रहेगा या गौतम अकेले।

को अनंत गहराई दे देता है या उस दिन महसूस किया था। उसके हाथ को पकड़कर चलते हुए उस दिन लगा कि मेरे पैर रेत पर नहीं बादलों पर पड़ रहे हैं। इच्छा हुई थी कि यहीं ठहर जाऊं, उसे एक लंबे आलिंगन में बांध लूं। सागर किनारे की भीड़ में मैं ऐसा नहीं कर पाई थी, पर उन पलों को याद करके मैंने उसे अनगिनत बार बाहों में भरा था। हम प्रेमियों के जीवन में प्रेम के जितने पल होते हैं ना, उससे ज़्यादा उनकी यादों के पल होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेमी प्रेम में डूबे रहते हैं। एक दिन मेरे जूड़े में फूलों को सजाते हुए उसने शरारत से कहा था, यह सब चुने हैं, तोड़े नहीं हैं। उस दिन फूलों की महक मेरे तन ही नहीं, मन को भी महका गई थी। कितनी यादें और कितनी बातें हैं, कैसे इस इंसान को याद दिलाऊं कि यह कितना बदल चुका है। दादा ने सच ही कहा था कि इंसान का मन बदलने में देर नहीं लगती। बरखा के जाने के बाद आज पहली बार गौतम को लगा कि यह सारे काम बरखा कितनी सहजता से कर लेती, वह भी अपने एनजीओ और डांस क्लास के साथ। क्या हम उसकी कद्र करते हैं? यह सवाल उसने अपने आप से किया था। क्या हम उसकी सोच का सम्मान देते हैं या सफलता और दौलत के नशे में सब भूल जाते हैं? गौतम ने जब भी बरखा को फ़ोन लगाया उसका फ़ोन बंद ही था। कुंतल दादा ने उसका फ़ोन उठाया ही नहीं। आज पाँचवें दिन तो मानव अपनी माँ की याद में सिसकने लगा। मुझे माँ के पास जाना है। वह हम दोनों से नाराज है। क्यों? हम उनका कहना नहीं मानते हैं। मैंने क्या नहीं माना? तुम कोको को तंग करते हो, मैं तो उसके साथ खेलता हूँ। नहीं बेटा, किसी को दुख देकर हम कैसे खुश हो सकते हैं? माँ तुमको मना करती थी ना? हाँ, पर आप तो मेरी साइड लेते थे, मानव ने बड़े प्यार से कहा, जिसे सुनकर गौतम आश्चर्य से भर गया कि उसकी शह को छोटा बच्चा कैसे पकड़ लेता है। फिर तो मैंने भी गलती की। तुम बगीचे में पत्तियाँ तोड़ते हो, उससे क्या हुआ? पेड़ जिंदा हैं, उनको दर्द होता है। दर्द कैसे होगा? वो बोल नहीं सकते हैं। जो बढ़ते हैं वो सब जिंदा हैं, चाहे बोल नहीं सकते हों। तुम्हारी माँ से मेरी दोस्ती पक्की हो गई थी जब मैंने उनके बालों में चुने हुए फूल लगाए थे। चुने हुए माने सिलेक्ट किए हुए? नहीं बेटे, जो ज़मीन पर गिर जाते हैं, जिन्हें हम तोड़ते नहीं हैं। उसके भोलेपन पर वह मुस्कुरा उठा था। गौतम को लगा कि अनजाने ही उसने मानव के भीतर की संवेदना को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। आज ये बच्चा कोको को प्यार से सहला सकता था, पौधों को पानी दे सकता था या किसी तितली को देखकर खुश होता, मगर उसे पकड़कर मार कैसे सकता था? इसके मन में संवेदना का संचार होना था। जब बरखा अपने दादा के पास पहुंची तो अपने आप को रोक नहीं पाई। उनको देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। दादा ने उसे छूकर पूछा, क्या हुआ बेटा, घर में सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है, सब बिखर रहा है। गौतम की दौलत की चमक में सब धुंधला रहा है। दादा, यदि मैं अपने बच्चे को संस्कार ही नहीं दे पाई तो यह सफलता किस काम की? पिछले 5 दिनों से उसने दादा से भी कोई बात नहीं की। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने की सोच, उसने यह सब मानव को सिखाना चाहा तो क्या गलत किया? मैं गलत नहीं थी, इस निष्कर्ष ने उसे शांति दी। आज सुबह उसने सोचा कि वह दादा को बताएगी कि उसने क्या सोचा है। इतने में बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। मानव भागता हुआ उसके पास आया और उसने उसे बाहों में भर लिया। उसे चूमते हुए वह सब कुछ भूल गई। मानव भी सहमा सा उससे लिपटा हुआ था। गौतम चुपचाप एक ओर खड़ा था। किसी को ध्यान ही नहीं था कि क्या कहना है। इस उदासी को तोड़ते हुए कुंतल दादा ने ही कहा, अरे मानव, अपने मामा से बात नहीं करोगे? नहीं, कहते हुए उसने बरखा को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। आराम से मिल लो अपनी माँ से, फिर हमसे बात कर लेना, कहकर उन्होंने मानव के सर पर हाथ फेरा। बाद में पीछे आंगन में चिड़िया के बच्चे को देखना। क्या, चिड़िया के बच्चे? अभी चलो ना मामा, कहते हुए बरखा की गोदी से उतर गया। बरखा, हम पीछे से आते हैं, तब तक तुम खाना लगा दो, कहते हुए कुंतल आगे बढ़ गए। वे चाहते थे कि ये तीनों एक दूसरे के महत्व को अच्छी तरह से समझ लें। इन 5 दिनों में उन्होंने क्या महसूस किया है, उस पर उनका निर्णय टिका है। पर उस निर्णय को पूरा समय मिल जाए, कोई हड़बड़ी न हो, यही उनकी इच्छा थी। गौतम भी बरखा के साथ रसोई में चला गया। बरखा, तुम अपना कोई निर्णय दो, उससे पहले मुझे कुछ कहना है, बोलो। अब वह पूरी तरह से तैयार थी जीवन के इस फैसले को सुनने के लिए। बरखा, मानव को एक जिम्मेदार इंसान बनाना ज़रूरी है। हमारे बच्चे के संस्कार या उसकी संवेदनशीलता ही हमारी दौलत है। इसे दौलत से तोलना बहुत बड़ी भूल होगी, कहते हुए उसने आज फिर बरखा की आँखों में झाँका। उसकी आँखों में एक विस्मय था और वह शायद गौतम को समझने की कोशिश कर रही थी।
हमारी लापरवाहियों का भुगतान या पृथ्वी और हमारे बच्चे

0: सबको करना अब शब्द बरखा के कानों में नहीं जा रहे थे। कान तो आँखों के साथ मिल चुके थे और अब सिर्फ धुंधलापन था। अचानक मानव की आवाज़ से बरखा अपने धुंधलेपन से बाहर आई। माँ देखो मैंने यह फूल चुने हैं, तोड़े नहीं हैं। कहते हुए जब मानव ने हर सिंगार के फूलों से भरी हुई अपनी नन्ही हथेलियों को आगे किया तो बरखा ने झुककर मानव की हथेलियों को चूम लिया और घुटनों के बल बैठकर उसे बाहों में भर लिया। वह सिसक उठी, पास खड़ी चार आंखों में भी पानी भराया, वही पानी जो महादेवी माई में है या जो हम सब में भी रमता है।
1: अभी आप सुन रहे थे सीमा जैन से उनकी कहानी नन्ही हथेलियों में। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब समय है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त व्याप्ति उमरेकर। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, फिल्म डेली सिक्स से, जिसके बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने और संगीतबद्ध किया है एआर रहमान ने। जावेद अली और कैलाश खेर की आवाज़ में लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

अब सुनिए फिल्म माय नेम इज खान से जावेद अख्तर के लिखे और शंकर एहसान लॉय के संगीतबद्ध किए इस गीत को अदनान सामी, शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की आवाज़ में।

0: बड़ी बहू
1: ये तुम्हारे नाम।
2: इतनी भी क्या जल्दी थी?
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम
0: और ये
3: मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी
1: हाँ
4: आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो क्या
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
7: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
8: अरे रुको रुको पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
7: मतलब?
8: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से एचआईवी एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
7: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
6: आप भी सतर्कता अपनाएं और एचआईवी के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी ग्वालियर से फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है, आइए सुनते हैं फिल्म फिजा से गुलजार के लिखे एआर रहमान के संगीत बद्ध किए इस गीत को कदर गुलाम मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा गुलाम मुस्तफ़ा की आवाज़ में।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
3: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
2: क्या, कैसे?
3: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
2: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
3: mmsky.mp.gov.in पर। mmsky, सीखो भी कमाओ भी।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

श्रोता साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म वीर ज़ारा से, जिसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने। मदन मोहन के सुरों से सजे इस गीत को सुनिए अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में सुनिए समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़, ये हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दुनिया भर में ईद मिलादुन्नबी की रौनक, केरलवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में

0: एक गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे कानून का रूप मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्य वर्धन करना है। भारतीय नौसेना निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
3: अब तक 9,13,000 से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है और 6,52,000 से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि वित्तीय सहायता अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। दिल्ली के वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से समय पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने का भी आग्रह किया है। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीद कर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने के विचार पर सहमत हो गया है। केंद्र सरकार ने याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार और मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्ष

0: अध्यक्षता वाली समिति की ये छठी बैठक थी। ई श्रम पोर्टल के को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। इसके माध्यम से देश का पहला आधार आधारित राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस तैयार किया गया है। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने मीडिया को बताया कि देश में वर्तमान में फैल रहा इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। वर्तमान अवलोकन किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा की 4 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन वहां के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शॉपिने के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। अमरीका में वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
0: भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और 2030 के रोड मैप के लक्ष्यों को पूरा करने पर विचार किया। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश में वृद्धि करने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और मोरक्को के बीच साझेदारी को अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कनाडा ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमेरिकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8 सितंबर से लागू होंगे। गोवा के परनेम स्थित पत्रा देवी शहीद स्मारक का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनावरण करेंगे। ये स्मारक गोवा के मुक्ति संग्राम में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति और उनके योगदान को समर्पित है।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि यह स्मारक उन 31 सत्याग्रहियों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1955 में गोवा को भारत में शामिल करने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया था। गोवा में प्रवेश की कोशिश के दौरान पुर्तगाली सैनिकों की गोलीबारी में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्मारक परिसर में शहीदों की याद में मूर्तियां और अलग अलग संरचनाएं बनाए गए हैं। पत्रा देवी शहीद स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने, इतिहास को समझने और आने वाली पीढ़ियों को गोवा के मुक्ति संग्राम से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की उम्मीद है। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उधर केरलवासी ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ओणम के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि खुशियों और उल्लास का ये रंगारंग त्यौहार पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने ईद मिलाद उन नबी की भी शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के बीच आज सुबह राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिमला में सुबह करीब 5:46 पर हल्के झटके आए जो कुछ सेकंड्स तक चले। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। शीर्ष 3 स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन से पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान की खबर है, देश में अब निजी कंपनियां भी मिसाइल का निर्माण कर सकेंगी। डीआरडीओ की तकनीक निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की मंजूरी। अमर उजाला लिखता है, सरकार देगी तकनीक, निजी कंपनियां बनाएंगी मिसाइलें। इस फैसले से देश में ही मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, H1N1 संक्रमण के मामले बढ़े, स्कूलों को दी हिदायत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीमा विवाद का समाधान तलाशने पर भारत चीन सहमत। एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अगुवाई में हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। जनसत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का कथन दिया है, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं होने देंगे। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर। स्कॉलरशिप से वंचित स्टूडेंट्स के लिए फिर खुलेगा पोर्टल, मेडिकल क्षेत्र में भी भत्ता बढ़ा। पंजाब केसरी ने 48 साल पहले की खौफनाक घटना को याद किया है, गीता और संजय के हत्यारे रंगा बिल्ला को आज भी नहीं भूली दिल्ली। 26 अगस्त 1978 को मासूम भाई बहन का अपहरण कर दोनों की हत्या कर दी गई थी। कल हुई मूसलाधार वर्षा पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, थम गई दिल्ली, गुरुग्राम में सड़कें धंसी, हाईवे पर गहरा गड्ढा, एनसीआर में जलभराव से लगा जाम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। और दुनिया भर में ईद मिलाद उन नबी की रौनक, केरलमवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिव्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ 30,000 crore रुपीज एट प्रगति मीटिंग। Union Home Minister Amit Shah sets one-year deadline for 100% implementation of 3 new criminal laws. Delhi government to hand over approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under Lakshmi Yojana today. India and China agree to continue their work in seeking political settlement of boundary question for overall and long-term interests. Eid Miladun Nabi, birth anniversary of Prophet Muhammad being celebrated today. Keralites across the globe celebrating Thiruvanam, most auspicious day of Onam. And R. Pragyanan cruises into finals of Grand Chess Tour's last leg after 19-9 win over Germany's Vincent Keimer. And now the news in detail. Prime Minister

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आप आनंद ले रहे हैं सुगम संगीत का, कलाकार हैं निकिता जोशी। आइए सुनते हैं निकिता जोशी की आवाज़ में ये गीत।

इसी गीत के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें, ये हमारे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित की जाएंगी, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल प्रगति मंच की 53वीं बैठक में कहा है कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। बैठक में 30,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 9 राज्यों से जुड़ी हुई 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े 10,630 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज भिंड जिले के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की चौथी विनिर्माण इकाई का शुभारंभ करेंगे। 450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित इस इकाई से 2,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में अन्य किसानों के बीच दी जानी चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल करना समय की मांग है। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में NCTE पाठ्यक्रमों में प्रवेश के द्वितीय अतिरिक्त चरण की तिथियां बढ़ा दी हैं। विद्यार्थी 30 अगस्त तक पंजीयन और आवेदन कर सकेंगे। और मौसम विभाग के अनुसार आज भिंड, दतिया, सागर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ग्वालियर, गुना, उज्जैन सहित 18 से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब समय है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर का।

गुड मॉर्निंग ग्वालियर, श्रोता साथियों को आपकी दोस्त व्याप्ति उमरेकर का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज ईद मिलाद उन नबी का पर्व है। यह दिन इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबी उल अव्वल की 12वीं तारीख को पैगंबर हज़रत मोहम्मद के जन्म की स्मृति में मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग उनके जीवन और उनके संदेश को याद करते हैं, धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और लोग एक दूसरे को इस खास दिन की मुबारकबाद देते हैं। साथियों, इस दिन की रौनक अपने आप में विशेष होती है। धार्मिक आयोजन आयोजित किए जाते हैं, स्वादिष्ट मिष्ठान और पकवान बनाकर परिवार तथा मित्रों के साथ मिलकर खुशियाँ साझा करती हैं। साथियों, त्योहारों की सबसे सुंदर बात ही यही है कि वह हमें एक दूसरे के करीब लाते हैं, ये प्रेम, भाईचारे और आपसी सद्भाव की भावना को मजबूत कर

करने का अवसर होते हैं। ईद मिलाद उन नबी के इस पावन अवसर पर आप सभी को दिल से मुबारकबाद। ये दिन आपके और आपके परिवार के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
2: साथियों, आज 26 अगस्त है और यह दिन मदर टेरेसा की जयंती के रूप में याद किया जाता है। मदर टेरेसा का नाम आते ही मन में एक ऐसी महिला की छवि उभरती है जिन्होंने अपना जीवन उन लोगों के लिए समर्पित कर दिया जिन्हें समाज में अक्सर सबसे कम सहारा मिला। 26 अगस्त 1910 को मदर टेरेसा का जन्म स्कोपजे में हुआ था। आगे चलकर उनका जीवन भारत से इस तरह जुड़ा कि भारत ही उनकी कर्मभूमि बन गया। वे 1929 में भारत आईं और कोलकाता में उन्होंने लंबे समय तक अध्यापन का कार्य किया, लेकिन धीरे धीरे उनका ध्यान शहर के उन लोगों की तरफ गया जो गरीबी, बीमारी और अकेलेपन से जूझ रहे थे। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलने लगी। उन्होंने सुरक्षित जीवन से बाहर निकलकर जरूरतमंद लोगों के बीच काम करने का निर्णय लिया। शुरुआत छोटी थी, लेकिन उनके काम का विस्तार धीरे धीरे बहुत बड़ा होता गया। 1950 में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। इसका उद्देश्य साथियों जरूरतमंद, बीमार, अनाथ और बेसहारा लोगों की देखभाल करना था। कोलकाता में स्थापित निर्मल हृदय और निर्मला शिशु भवन उनके सेवा कार्य से जुड़े प्रमुख केंद्र हैं। साथियों, मदर टेरेसा के काम की खास बात यह थी कि उन्होंने केवल आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन लोगों तक पहुंची जिनके पास बीमारी या सामाजिक परिस्थितियों के कारण कोई सहारा नहीं था। उनकी पहचान उनकी सादगी से भी जुड़ी रही। सफ़ेद साड़ी और नीली किनारी वाली उनकी पोशाक आगे चलकर मिशनरीज ऑफ चैरिटी की पहचान बन गई। वे साधारण जीवन जीती थी और अपना अधिकांश समय लोगों के बीच बिताती। धीरे धीरे उनका कार्य की चर्चा भारत से बाहर भी होने लगी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग उनके काम के बारे में जानने लगे और मिशनरीज ऑफ चैरिटी का कार्य भी कई देशों तक पहुंचा। उनके काम को अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले। वर्ष 1962 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1969 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला और 1980 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी। नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद मदर टेरेसा का नाम पूरी दुनिया में और अधिक जाना गया, लेकिन उनकी दिनचर्या में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। वे उसी तरह जरूरतमंद लोगों के बीच काम करती रहीं। साथियों, हम अक्सर सोचते हैं किसी की मदद के करने के लिए हमारे पास बहुत पैसा होना ज़रूरी है या कोई बड़ी संस्था होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं। किसी बुज़ुर्ग के साथ कुछ देर बैठना, किसी बच्चे को पढ़ने में मदद करना या किसी बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाना, किसी ज़रूरतमंद को भोजन देना, हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। मदर टेरेसा का निधन साथियों सितंबर 1997 में हुआ कोलकाता में। उनके निधन के बाद भी उनके द्वारा स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी का काम आगे बढ़ता गया। 2016 में उन्हें संत घोषित किया गया और वे संत टेरेसा ऑफ कलकत्ता के नाम से भी जानी गईं। साथियों, किसी महान व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान केवल इस बात से नहीं होती कि उन्हें कितने पुरस्कार मिले या उन्होंने कितनी बड़ी संस्था बनाई। असली पहचान ये होती है कि उनके बाद उनके विचार और कार्य कितने लोगों को प्रेरित करते हैं। आज मदर टेरेसा की जयंती पर हमें उनके जीवन से सरल सी बात सीख सकते हैं कि मानवता के लिए किया गया कोई भी काम छोटा नहीं होता। हम सब अपने अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, ज़रूरत केवल इतनी है कि हम अपने आसपास के लोगों की परेशानियों को नज़रअंदाज ना करें, किसी की मदद करते समय उसके आत्मसम्मान का ध्यान रखें, किसी दुखी व्यक्ति को थोड़ी देर सुन ले और जहाँ संभव हो वहाँ अपना समय, श्रम या साधनों से सहयोग कर सकें, क्योंकि सेवा हमेशा बड़े काम का नाम नहीं है, कई बार किसी के लिए मौजूद रहना भी बड़ी सहायता बन जाता है।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैक चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया किडबैक।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
6: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
5: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
6: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
5: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
7: साथियों, जरा सोचिए, हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो दुनिया नहीं देख सकता। वो सुबह की पहली किरण महसूस तो करता है लेकिन देख नहीं सकता। माँ के चेहरे की मुस्कान, बच्चे की शरारत, बारिश में भीगी धरती, आसमान का रंग, किसी अपने का चेहरा, इनमें से कुछ भी उसकी आँखों के सामने नहीं है। और अब ज़रा ये सोचिए कि किसी के जाने के बाद उसकी आँखें किसी दूसरे इंसान की दुनिया रोशन कर सकती हैं। कितना अद्भुत विचार है ना ये। हमारा जीवन समाप्त हो जाए लेकिन हमारी आँखों से किसी और के जीवन में उजाला बना रहे। इसी सुंदर भावना को जन जन तक पहुँचाने के लिए हर वर्ष नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। ये केवल आँखें दान करने की बात नहीं है, बल्कि ये उस मानवीय संवेदना की बात है जिसमें हम अपने जाने के बाद भी किसी के जीवन में रोशनी छोड़ जाने का संकल्प लेते हैं। अक्सर हम दान की बातें करते हैं तो हमारे मन में आर्थिक सहायता जैसी बात आती है, लेकिन नेत्रदान अपने आप में एक अलग ही विशेष दान है, क्योंकि इसमें हम किसी को सिर्फ कुछ पैसे नहीं देते बल्कि उसे उस दुनिया को देखने का अवसर दे रहे हैं जिसे वो अब तक केवल महसूस करता आया है। साथियों, हमारे समाज में नेत्रदान को लेकर आज भी कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि नेत्रदान करने के लिए व्यक्ति को पूर्णतः स्वस्थ आँखों वाला होना ज़रूरी है। कई लोग ये भी मानते हैं कि उम्र अधिक हो जाने पर नेत्रदान नहीं किया जा सकता, जबकि वास्तविकता ये है कि नेत्रदान के संबंध में अंतिम निर्णय चिकित्सा विशेषज्ञ ही करते हैं। इसलिए केवल अपनी उम्र या चश्मा लगने जैसी बातों के आधार पर ये मान लेना कि हम नेत्रदान नहीं कर सकते सही नहीं। और हाँ, एक ज़रूरी बात, नेत्रदान का अर्थ ये नहीं कि किसी जीवित व्यक्ति की आँख निकाल कर किसी दूसरे को लगा दी जाए। नेत्रदान मृत्यु के पश्चात किया जाता है। मृत्यु के पश्चात निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत आँखों के उपयोगी ऊतक, विशेष रूप से कॉर्निया, ज़रूरतमंद व्यक्ति के उपचार में काम आ सकता है। यानी हमारा शरीर इस संसार से विदा हो जाए लेकिन हमारी आँखें का एक हिस्सा किसी दूसरे के लिए नई उम्मीद बन सकता है। साथियों, नेत्रदान हमें एक सुंदर बात सिखाता है कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं, हम जाते जाते भी किसी के काम आ सकते हैं। हमारी आँखें किसी और की आँखों में दुनिया का रंग भर सकती हैं। किसी बच्चे को अपनी माँ दिखाई दे सकती है, किसी माँ को अपने बच्चे का चेहरा दिखाई दे सकता है। कोई विद्यार्थी किताबें पढ़ सकता है, कोई व्यक्ति फिर से अपनी दुनिया को देख सकता है। इसलिए इस नेत्रदान पखवाड़े पर आइए हम केवल नेत्रदान की चर्चा न करें बल्कि इसके बारे में सही जानकारी अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचाएं, भ्रांतियों को दूर करें। और यदि हम नेत्रदान का संकल्प लेना चाहते हैं तो अधिकृत चिकित्सा संस्थान या नेत्र बैंक के माध्यम से विधिवत संकल्प लें, क्योंकि आँखें केवल देखने का माध्यम नहीं, आँखें हमारे लिए दुनिया से जुड़ने का माध्यम है। और यदि हमारे जाने के बाद भी किसी के लिए उस दुनिया का एक दरवाज़ा खुल सके तो इससे सुंदर विदाई शायद ही कोई हो।

साथियों, आपसे बातें करते करते वक्त का तो मुझे पता ही नहीं चलता, लेकिन घड़ी की टिक टिक अब इशारा कर रही है इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। तो अपनी दोस्त व्याप्ति उमड़ेकर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं पंडित भजन सोपुरी। आइए सुनते हैं राग नट भैरव में पंडित भजन सोपुरी का संतूर वादन।

0: अभी आप सुन रहे थे राग नट भैरव में पंडित भजन सोपोरी का संतूर वादन। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित होगी, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है धार जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील सचान, वाचन स्वर दीपा सिंह। धार जिले में इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में अब तक लगभग 4.5 इंच वर्षा कम दर्ज हुई है, जबकि गत वर्ष इस समय तक 500 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई थी। इसके बावजूद इस साल धार जिले में 5,14,665 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बोनी हो चुकी है। इनमें सर्वाधिक 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन, 1,10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कपास और 84,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का की फसलें बोई गई है। शेष क्षेत्र में दलहन और अन्य उद्यानिकी फसलें आच्छादित की गई है। जिले में 2 रेल परियोजनाओं इंदौर दाहोदा और छोटा उदयपुर धार का तेजी से काम चल रहा है। यहां रेल सुरक्षा आयुक्त पश्चिम सर्किल मुंबई ई श्रीनिवास के निरीक्षण के दौरान रेलवे ट्रैक पर 127 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इंजन चलाकर परीक्षण किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट रेलवे को सौंपी जाएगी। इसके बाद रेल मंत्रालय की अनुमति मिलने के बाद यात्री रेल सेवा शुरू करने की कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पीथमपुर के स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में 850 करोड़ रुपए निवेश की 2 अत्याधुनिक विनिर्माण इकाइयों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों इकाइयां उच्च तकनीक आधारित विनिर्माण और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं को और मजबूत करेंगी। इन इकाइयों से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले हैं। देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिले में तिरंगा यात्रा निकालकर राष्ट्रप्रेम की अलग जगाई गई है। राष्ट्रप्रेम, एकता और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इन तिरंगा यात्राओं में बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लोगों, राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों द्वारा आमजनों के साथ सहभागिता की गई। धार और बदनावर में निकाली गई तिरंगा यात्रा में धार महू सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री महिला बाल विकास सावित्री ठाकुर, विधायक नीना वर्मा सहित जनप्रतिनिधि शामिल हुए। जिले में स्वतंत्रता दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जगह जगह ध्वजारोहण के आयोजन हुए। जिला मुख्यालय स्थित किला मैदान पर आयोजित मुख्य समारोह में कलेक्टर राजीव रंजन मीना द्वारा ध्वजारोहण कर संयुक्त परेड की सलामी ली गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा भी साथ थे। यहां मीसाबंदी, लोकतंत्र सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का सम्मान किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जिले के राजगढ़ में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 के अंतर्गत जिला स्तरीय जनसंवाद और समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया। बदनावर में नगर परिषद द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र के हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम में इंदौर संभाग आयुक्त भास्कर लक्षकार शामिल हुए। संभाग आयुक्त ने हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभों का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना के अंतर्गत धार जिले के कुल 340 श्रमिक परिवारों के बैंक खातों में सीधे सिंगल क्लिक के माध्यम से 7.58 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत कर उनके खातों में पहुंचाई गई है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और जिला प्रशासन द्वारा धार में पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 217 से अधिक टीमों ने पंजीकरण कराया था। सभी टीमों के प्रथम सत्र में लिखित परीक्षा आयोजित की गई। द्वितीय सत्र में मल्टीमीडिया क्विज में 6 टीम के 3-3 बच्चों की टीम ने भाग लेकर 10 राउंड में मुकाबला किया। सावन के पवित्र माह में धार जिले में अनेक स्थानों पर कांवड़ निकालकर श्रद्धालुओं द्वारा भगवान शंकर का पूजन अर्चन किया गया। माँ सरस्वती गौशाला की मुक्ति और उनके गौरवपूर्ण पुनर्स्थापना के लिए महाराजा भोज उत्सव समिति द्वारा मां वाघ देवी मातृशक्ति महिला कावड़ यात्रा निकाली गई। संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में धार में जिला स्तरीय सम्मेलन और समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ विधायक नीना वर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में संत शिरोमणि रविदास महाराज के जीवन दर्शन और मूल्यों पर आधारित विशेष व्याख्यान हुए। रक्षाबंधन पर्व को लेकर जिले भर में उत्साह का माहौल है, बाजार गुलजार हैं। रक्षाबंधन के पवित्र पर्व को ध्यान में रखते हुए धार डाक विभाग द्वारा बहनों और भाइयों के स्नेह को समय पर पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे धार जिले की चिट्ठी, वाचन दीपा का था। यह आकाशवाणी का
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त व्याप्ति उमड़ेकर। आइए सुनते हैं फिल्म संघर्ष से ये पहला गीत, जिसे लिखा है समीर ने और संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने। सुनिए सोनू निगम की आवाज़ में ये गीत, जिसे सुनने की फरमाइश की है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी ने, कडला बंदर कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल ने, साथ ही दत्तरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा ने। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

श्रोता साथियों, फिल्म परदेश से कुमार सानू की आवाज़ में सुनिए ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़के ने, और नारगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी, निशा और तुलसी गोस्वामी ने। लीजिए सुनिए प्यारा सा गीत।

अब सुनिए फिल्म रिफ्यूजी से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में गीत, जिसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने। गीत को सुनने की फरमाइश की है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा, धनेश्वरी वर्मा, सूरज, कुशल वर्मा ने। साथ ही सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप ने और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज ने। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

फिल्म साथिया से साधना सरगम की आवाज़ में सुनिए ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं गुलजार ने और संगीत दिया है एआर रहमान ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है मुकाम पोस्ट फूल चिंचोली तालुका पंढरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज़ मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, बानूबी मुलानी, बादशाह मुलानी और पूरे मुलानी परिवार ने। साथ ही धनेरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू ने। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

श्रोता साथी फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का आनंद ले रहे हैं। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब सुनिए फिल्म राजनीति से इरशाद कामिल के लिखे प्रीतम के संगीत बद्ध किए इस गीत को मोहित चौहान और अंतरा मित्रा की आवाज़ में। सुनने की फरमाइश की है न्यू बजरंग कॉलोनी गोल पहाड़िया लश्कर ग्वालियर से नेत्राम गोड़िया, सरोज गोड़िया, शशि कुमार गोड़िया, भावना गोड़िया, नीरज गोड़िया, अर्चना गोड़िया, आद्या, श्रेया और देवांशु ने। साथ ही किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, कीर्ति भारती और देवश्री ने। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

की आंखों को ही सपना मिलेगा, कोई खुशियाँ नहीं।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
3: सच?
2: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
3: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए तो?
2: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
3: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
2: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
5: आकाशवाणी ग्वालियर से व्हाट्सएप फरमाइश का प्रसारण हो रहा है। श्रोता साथी आनंद ले रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का। अब सुनिए फिल्म रेस से आतिफ असलम की आवाज़ में गीत। संगीतकार हैं प्रीतम, गीतकार हैं समीर। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है गाड़गी नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे, रक्षता लोखंडे और समस्त लोखंडे परिवार ने। साथ ही अजीत नगर मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और उनकी लाडली पोती रौनकदीप कौर ने। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

सुनिए फिल्म चक दे इंडिया से गीत। गायक कलाकार हैं कृष्णा और सलीम मर्चेंट, गीतकार हैं जयदीप साहनी और संगीतकार हैं सलीम सुलेमान। गीत को सुनने की फरमाइश की है सप्तरंगी श्रोता परिवार कुंभार गली श्री रामपुर से, अशोक दड़े, सविता दड़े, अनिकेत दड़े, रोहिणी दड़े, ऋषिकेश दड़े और जीविका दड़े ने। साथ ही पुनावले पुणे से अजय सोनव ने, करिश्मा सोनव ने, अविका सोनव ने और विशाखा सोनव ने। साथ ही राजकोट से जैमिन कुमार जैन, हेतल कृष्णा और राकेश जैन ने। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

फिल्म जब वी मेट से मोहित चौहान की आवाज़ में इरशाद कामिल के लिखे प्रीतम के स्वरबद्ध किए इस गीत का आनंद लीजिए, जिसे सुनने की फरमाइश की है बिहारी कॉलोनी दिल्ली से वसीम बेलदार, अकरम बेलदार, उल्लाह बेलदार, आसमा बेलदार, डब्लू बेलदार और सोनम बेलदार ने। साथ ही बिहारी कॉलोनी दिल्ली से मोहम्मद याकूब आसमा कुरैशी, मोहम्मद यूसुफ आसमा कुरैशी, मोहम्मद सलीम आसमा कुरैशी, मोहम्मद कलीम आसमा कुरैशी। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

इसी गीत के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अगला कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में हमारे मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भिंड जिले के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की चौथी विनिर्माण इकाई का शुभारंभ करेंगे। 450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित इस इकाई से 2000 से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कल भोपाल में प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े 10,630 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए 1,740 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बैठक में उज्जैन के धनवंतरी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 244 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। प्रदेश में किसानों की फार्मर आईडी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह आईडी किसानों को खाद और बीज वितरण सहित सभी प्रकार के लाभ दिलवाने में सहायक होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी की भूमि की निःशुल्क रजिस्ट्री के लिए संयुक्त कमेटी गठित की जाए और ग्राम की दखल रहित भूमि का चिन्हांकन का कार्य जल्द पूरा किया जाए। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में एनसीटीई पाठ्यक्रमों में प्रवेश के द्वितीय अतिरिक्त चरण की तिथियां बढ़ा दी हैं। विद्यार्थी 30 अगस्त तक पंजीयन और आवेदन कर सकेंगे, जबकि सीट आवंटन के बाद प्रवेश शुल्क 8 सितंबर तक जमा किया जा सकेगा। शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर के अंतिम चरण के फाइनल में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। लीजिए अब सुनिए फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज के फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करती है आपकी अपनी रेडियो संगिनी प्रियंका। कभी कभी सबसे मुश्किल सफर कहीं पहुंचने का नहीं होता बल्कि उस जगह को छोड़ने का होता है जहां हम अभी हैं। पर शायद यही जिंदगी का इशारा होता है हमें अनजान रास्तों पर भरोसा करना सिखाने का। उस चलती नाव में कदम रखने का जब किनारा अब भी अपना सा लगता है, क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जब हम सुकून से ज्यादा हिम्मत को चुनते हैं और यकीन करते हैं कि आगे जो है वो हमारे लिए और भी खूबसूरत होगा। इन्हीं आशास्पद विचारों के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। हेलो
2: नमस्कार।
1: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
2: कहते हैं रोशनी की तरह आपकी जिंदगी में नूर हो
1: जी,
2: और आप और हम कभी भी आकाशवाणी मध्य प्रदेश से ना दूर हो। और दीदी जी अगर बिछड़े भी तो इस वादे के साथ कि हमेशा आकाशवाणी के साथ जरूर हो, आकाशवाणी के साथ जरूर हो। नमस्कार बहन जी,
1: स्वागत है आपका हमारे आज के फोन करे गीत सुने कार्यक्रम में।
2: जी दीदी जी, आपका नाम जानना चाहूंगा।
1: जी मैं आपकी रेडियो संगिनी प्रियंका बात कर रही हूँ आकाशवाणी मध्य प्रदेश से,
2: और मैं बात कर रहा हूँ राम की तपोभूमि चित्रकूट धाम के बहेरी ग्राम से।
1: जी
2: तिनकर सिंह
1: जी,
2: और दीदी जी को राम की तपोभूमि से सत सत बार राम राम पहुंचा रहा हूँ।
1: जी शुक्रिया बहुत बहुत। अब आपकी इतनी सुंदर सी बातें सुन के, इतनी प्यारी सी बातें सुनकर हमारा मन जो है बड़ा भाव विभोर हो गया है। तो दिनकर जी जल्दी से आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
2: पहले मैं रक्षाबंधन की जो है सभी भाई बहनों को जो है शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और आपको आपके चैनल वालों को भी जो है रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।
1: जी हमारी ओर से भी सभी को शुभकामनाएं पहुँचे,
2: क्योंकि देश के जवान जो सोल्जर हैं वो देश की रक्षा करते हैं और भाई बहन एक दूसरे की सामाजिक और आर्थिक रक्षा करते हैं। तो इस स्नेह और प्रेम के त्योहार को मैं सभी को जो है सप्रेम भेंट कर रहा हूँ कि ये स्नेह और प्रेम बना रहे रक्षाबंधन में भाई बहन का।
1: बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है कि भाई और बहन एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहे, यही इस रक्षाबंधन पर्व की जो है पवित्रता है और इसका महत्व है। दिनकर जी गीत बताइए कौन सा सुनेंगे आप?
2: अंधा कानून फिल्म का गीत सुनना है।
1: जी
2: मेरी बहना दीवानी है पर वो समझती है सबसे वो सयानी है।
1: जी बिल्कुल, आपके लिए आपके रेडियो सेट पर आपकी तरफ से एक शुभकामना के रूप में ये गीत सुनिए।
2: दीदी जी मेरे साथ प्रेमदास बाबा जी हैं, उनके साथ सुनूंगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, और अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ भी सुनिए और उन्हें भी कहिए कि हमसे जुड़े और अपनी फरमाइश स्वयं सुने। नमस्कार
2: नमस्कार, दीदी जी।
1: नमस्कार जी।

0: हेलो,
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार।
1: राखी बंधन की शुभकामनाएं आपको, मेरी बहना को, सबको।
0: जी, हमारी ओर से भी, आकाशवाणी परिवार की ओर से आप सभी श्रोताओं को भी रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं। इस बार उल्लास बहुत देखने को मिल रहा है। और बताइए, अब गीत कौन सा सुनना चाहते हैं? अपना नाम और जगह का नाम भी बताइए पहले।
1: मैं तुलसीराम व्यास।
0: अच्छा, तुलसीराम जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: ये डिस्ट्रिक्ट जिला वाशिम मालेगांव।
0: तो आपको कैसा सुनाई देता है हमारा प्रसारण वाशिम में?
1: अरे, महाराष्ट्र में सुना तो अच्छा देता है, जरी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ।
0: बिल्कुल। और कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप हमारे यहाँ से?
1: मैं तो सुबह 6 बजे लगाता हूँ
0: जी,
1: तो राम जी की कथा भी सुन लेता हूँ।
0: रामचरित मानस गान।
1: उसके बाद में 3:30 बजे संगीत, 5:30 बजे संगीत।
0: जी जी जी।
1: 6:30 बजे संगीत।
0: अच्छा, यानी फिल्म संगीत के कार्यक्रम आप विशेष रूप से सुनते हैं?
1: मुझे फिल्म संगीत बहुत पसंद इतना है कि मेरे परिवार में सिर्फ मैं गाने सुनता हूँ, मेरी पत्नी को गाने अच्छे नहीं लगते।
0: अरे, फिर आप रेडियो सुनते हैं तो उन्हें परेशानी नहीं होती है, उलझन नहीं होती है?
1: परेशानी होती, वो मेरे कमरे से दूसरे कमरे में चले जाते।
0: अच्छा, और लेकिन आप रेडियो का प्रेम नहीं छोड़ते हैं, है ना?
1: मैं तो कैसा छोड़ू, मैं 1960 से लगा हूँ रेडियो पर
0: जी,
1: और मर्फी रेडियो है, बहुत पुराना है मर्फी का।
0: ओहो, क्या बात है।
1: हाँ, मर्फी का रेडियो है, आज भी मेरे पास में, मेरे पिताजी ने दिया था मेरे,
0: और वो बहुत अच्छी कंडीशन में चलता भी है।
1: हाँ, वो क्या है, कभी मैं बीमार नहीं रखता हूँ।
0: बस हम अभी यही कहने वाले थे कि आप उसका बहुत ख्याल रखते होंगे, समय समय पर उसकी सर्विसिंग करवाना और उसके लिए जो भी आवश्यक है उसके लिए आप उसका ध्यान रखते होंगे, तभी अभी तक चल रहा है वो।
1: मेरे स्वास्थ्य से उसका ख्याल ज्यादा रखता हूँ मैं।
0: बहुत बढ़िया, ये है आपका रेडियो के प्रति प्रेम।
1: आज मैं 80 साल का हो चुका हूँ।
0: जी जी जी जी। तो बताइए, आज के इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: आप सुना जो हमारी पत्नी की पसंद का गाना है। आप 80 साल में वो गाना गाती,
0: कौन सा?
1: क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा नहीं।
0: चलिए, कोई बात नहीं, ये उम्र तो आज आई है ना, जब मिले थे तब थोड़ी ना ये उम्र थी आपकी।
1: लेकिन वो गाना उसको आज भी पसंद है।
0: और उन्हें चूंकि फिल्म संगीत और रेडियो सुनना पसंद नहीं है, तो क्या ये गीत सुनेंगे वो? उनकी अपनी पसंद जो भेज रहे हैं वो।
1: मैं कभी कभी बोलता हूँ कि आकाशवाणी पर 1 मिनट तो बात कर लो आप।
0: जी जी।
1: नहीं करते, वो अब मेरे कमरे में है, नहीं वो दूसरे कमरे में चली गई।
0: अच्छा, तो आप मोबाइल से बात कर रहे हैं या लैंडलाइन से?
1: मोबाइल से बात कर।
0: अरे, तो मोबाइल लेकर आप पहुँच सकते हैं पत्नी जी के पास कि आपकी पसंद का गीत हम?
1: फिर काम बहुत, वो उल्टा काम हो जाएगा, फिर वो
0: झगड़ा हो जाएगा,
1: मेरी क्लास लग जाएगी।
0: जी जी,
1: मेरी क्लास लग जाएगी।
0: चलिए, कोई बात नहीं, हम नहीं चाहते कि क्लास लगे, लेकिन अच्छी बातों की लगे, प्यार भरी बातों की लगे, हम यही चाहते हैं। तो तुलसीराम जी, आपकी पत्नी जी की पसंद पर आपके लिए, दोनों के लिए ये गीत। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो,
1: मैम।
0: नमस्कार। कार्यक्रम में फोन करें, गीत सुने, स्वागत करते हैं। अपना नाम और जगह का नाम बताइए।
1: हाँ, जितेंद्र झा बात कर रहे हैं, ग्राम गोरा कला, तहसील चंदेरी, अशोकनगर से।
0: अच्छा जी, जितेंद्र जी, स्वागत है आपका।
1: जी मैम।
0: कैसे हैं आप?
1: हाँ ठीक है मैम, बढ़िया है। बारिश हो
0: बढ़िया
1: रही है
0: है
1: बहुत।
0: जी। मौसम कैसा है अभी अशोकनगर का?
1: अरे बहुत बहुत बारिश हो रही है।
0: हाँ, तो आपको कोई परेशानी तो नहीं है? स्वास्थ्य ठीक है आपका इतनी बारिश में, और परिवार के अन्य
1: परेशानी क्या,
0: सदस्यों
1: लोग
0: का?
1: घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।
0: चलिए, तो कोई बात नहीं, घर में रहकर अब बताइए कि आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनवा दे आपको।
1: हाँ मेरे लिए ये गीत सुनना है, गौर फिल्म का गीत सुनना है। हाँ,
0: कौन सा गीत इस फिल्म का?
1: पानी रे पानी तेरा रंग कैसा।
0: जी चलिए, बहुत आपने मौके का गीत पसंद किया है
1: हाँ
0: ना?
1: जी मैम, बहुत अच्छा लगता है वो गीत।
0: जी जी बिल्कुल। चलिए जितेंद्र जी, शुक्रिया, नमस्कार, आपने हमें फोन किया।
1: नमस्कार मैम।

0: हेलो,
1: हाँ नमस्कार।
0: नमस्ते जी। कार्यक्रम में फोन करें, गीत सुने।
1: हाँ दीदी, मैं राजाराम नगर देवास से राजेश अग्रवाल बोल रही हूँ।
0: जी राजेश जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया दीदी, यार
0: अपनी पसंद का
1: कार्यक्रम
0: गीत
1: सुन
0: बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: गीत आज दीदी सुनवा दीजिए। देव कोली साहब की पुण्यतिथि है आज,
0: हाँ
1: 26 अगस्त की, तो उनका ही गीत है, लाल पत्थर का गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ।
0: जी, बहुत
1: मैंने
0: पुरानी पसंद आपने। बाकी
1: या फिर मैंने प्यार किया का कोई सा भी सुनवा दीजिए, अगर ये नहीं मिले तो।
0: बिल्कुल दोनों गीत मिल जाएंगे।
1: हमारे
0: आपकी प्राथमिकता कौन से गीत की है?
1: हमारे पसंद लाल पत्थर पिक्चर का गीत है, पहले तो किशोर दा की आवाज में,
0: बिल्कुल, तो
1: और
0: आपको हम यही
1: हमारे
0: गीत
1: परिवार
0: सुनवाएंगे।
1: के लोग का नाम लेना चाहता हूँ। मुकेश महाजन है, शांति महाजन है,
0: जी, बहुत बहुत
1: और
0: शुक्रिया।
1: राजेश महाजन है।
0: बिल्कुल, तो परिवार के साथ सुनिए आपकी पसंद। नमस्कार।
1: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार,
0: नमस्कार, कैसे हैं आप? कौन बात कर रहे हैं?
1: एमपी सीपरी गांव का नाम चंदनपुरा।
0: जी, स्वागत है
1: सही
0: आपका। कौन
1: समझते
0: सा
1: हैं?
0: गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: अरे गाना मैडम कराना रे, उनका सुनवा देना।
0: जी जी जी
1: हाँ,
0: बिल्कुल।
1: प्यार का बंधन है।
0: तो शुक्रिया, नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते बहन।
0: कैसे हैं आप?
1: जी बहन, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। मस्त हूँ, व्यस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, बिंदास हूँ।
0: चलिए, तो आपकी ये स्वस्थता और आपका ये जो बेस्टाइज है वो हमेशा बना रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। अब अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं जिनके
1: जी
0: लिए
1: बहन,
0: हम
1: मैं राजीव
0: शुभकामना भेज रहे
1: यादव,
0: हैं।
1: ग्राम उपरेखासी, रामपुर डेरा, सरीला राठ मुस्कुरा, हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश।
0: अच्छा जी,
1: राजू
0: और
1: यादव।
0: मौसम क्या कह रहा है
1: मौसम
0: बुंदेलखंड
1: तो
0: का?
1: बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं।
0: बराबर, बहुत अच्छी बात है, ठंडी हवाओं का लुत्फ़ उठाना चाहिए। आप चहलकदमी करते हैं या नहीं सुबह इतनी ठंडी और प्यारे सुहाने मौसम में?
1: हम तो कृषक हैं, कृषक के लिए तो बराबर हर समय मेहनत होती रहती है।
0: तो आपकी वैसे ही हो जाती है चहलकदमी, है ना, करने की
1: जी
0: ज़रूरत ही नहीं है।
1: जी जी
0: राजू जी, कौन सा गीत सुनेंगे आप बताइए?
1: बहना जी, हम गीत सुनेंगे, जिनका घर हुआ अयोध्या जैसा, जिनकी होत बड़ाई, आंगे आंगे राम चलत हैं, पीछे लक्ष्मण भाई, कौसल्या तोहरे अंगनवा।
0: बहुत खूबसूरत। अब सुनिए रेडियो सेट पर ये गीत। नमस्कार।

0: हेलो,
1: नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? कौन सा गीत सुने के और ये भी बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: नाम अनोखे जी।
0: कौन सा गीत सुनेंगे अनोखे सिंह जी?
1: हमको सुनना तो क्रांति का ही चना चोर गरम।
0: अनोखे सिंह जी, आपने 2 दिन पहले ही शायद फोन लगाया था, है ना?
1: सर जी, वो सुनाते ही नहीं, ऐसी बातचीत सब हो जाती है। अगले दिन हम 1 घंटा फिर रेडियो के पास अटके ले रहे थे।
0: आपने परसों फोन लगाया था, आज दोबारा अपनी फरमाइश सुन रहे हैं।
1: वो अक्षर साहब ने हमारी रिकॉर्डिंग सुना ही नहीं।
0: अच्छा, चलिए ठीक है, तब कल हम आपको गीत सुनवाएंगे ये जरूर। चलिए, आपके रेडियो सेट पर अवश्य सुनिए ये गीत।

ये दुश्मन है खुद गर्जी का, मेरा चना है अपनी मर्जी का।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी
1: हाँ,
0: नमस्ते
1: मैं कटनी से बोल रहा हूँ, सुनील गर्ग।
0: जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: जी, आज कार्यक्रम ये फोन करें गीत सुने।
0: बिल्कुल, आज कार्यक्रम है फोन करें गीत सुने। कौन सा गीत आपने सोच कर रखा है सुनने के लिए?
1: हमें सुना दीजिए कश्मीर की कली का, ये दुनिया उसी की, ये जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो।

0: हेलो
1: मैम नमस्ते।
0: नमस्ते
1: मैम ग्राम नेगई सिनोड़ी तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी से बोल रहा हूँ मैम
0: जी। कटनी से कौन बात कर रहे हैं?
1: जी। परमलाल साहू बोल रहा हूँ मैम
0: परमलाल जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में
1: जी। मैम
0: जी। कैसे हैं आप
1: बहुत अच्छे हैं मैम।
0: जी? कौन सा गीत
1: पानी
0: आप
1: जी
0: सुनना चाह
1: जी
0: रहे हैं?
1: फिल्म रेशम की डोरी
0: हाँ
1: बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है।

0: मत ढूंढो कि दुनिया में खूबसूरत कौन है, ढूंढना है तो उसे ढूंढो जिसके होने से आपकी दुनिया खूबसूरत है। अगली मुलाकात तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और नेक गतिविधियों में व्यस्त रहिए। फिर किसी नई उम्मीद और नई किरण के साथ आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ओणम के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कामना की है कि त्यौहार लोगों में खुशी, एकता और समृद्धि की भावना को और मजबूत करेगा। ओणम नई फसल और प्रकृति के प्रति आभार का पर्व है। ये भारत की समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना को दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी सांस्कृतिक विरासत और अन्नदाताओं की समृद्धि का उत्साह ओणम के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज भिंड जिले के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की चौथी विनिर्माण इकाई का शुभारंभ करेंगे। 450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित इस इकाई से 2000 से अधिक नए अवसर सृजित होंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में एनसीटीई पाठ्यक्रमों में प्रवेश के द्वितीय अतिरिक्त चरण की तिथियां बढ़ा दी हैं। विद्यार्थी 30 अगस्त तक पंजीयन और आवेदन कर सकेंगे, जबकि सीट आवंटन के बाद प्रवेश शुल्क 8 सितंबर तक जमा किया जा सकेगा। राजधानी में मंत्रालय सहित विंध्याचल और सतपुड़ा भवनों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था शुरू की जा रही है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रदेश के सभी जिलों में लागू की जाएगी। और मौसम विभाग ने आज पिंड, दतिया, सागर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो

तक भोपाल, उज्जैन, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में तेज बारिश होने का अनुमान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को सरिता का प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, आज हम लेकर आए हैं बहुत प्यारे प्यारे से गीत आप सभी की पसंद पर। तो फिर क्यों ना शुरू करें आज का ये कारवां, फिल्मी फरमाइशी गीतों का कारवां कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में पहला गीत हमने लिया है फिल्म कुदरत से। स्वर है किशोर कुमार के, शब्द रचना है मजरू की और संगीत है आरडी बर्मन का। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने सेक्टर 67 मोबाली चंडीगढ़ से। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा और कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और इनका पूरा परिवार इसी गीत को पसंद किया है। बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी ने, डुमराव बिहार से डॉक्टर डल्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, सारीमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी और आसमा खातून अंसारी ने, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती ने, आप सभी ने सुनना चाहे ये बहुत खूबसूरत संगीत।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अगला गीत हमने लिया है फिल्म आपकी कसम से। सुमधुर आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गीत लिखा है नंद बख्शी ने और संगीत है आरडी बर्मन का। पसंद करने वाले श्रोता हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, शायमा खान और पोत्रा से मुश्तवा खान, पोत्री अफिया खान। आप सभी श्रोता हैं गांधीबाग अकोला से, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मास्टर मनीष। इसी गीत को पसंद किया है थाना रोड बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष आयुषी और सानवी ने। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म घर से और आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत है आरडी बर्मन का। इस गीत को सुनना चाहें आप सभी ने रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और इनका पूरा डागला परिवार। इसी बहुत खूबसूरत से गीत को सुनना चाहे गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित ने। इसी फिल्म के लिए हमारे अगले श्रोता हैं जिन्होंने फरमाइश लिख भेजी है। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये प्यारा संगीत।

धड़कन, आइए अब हम सुनवाते हैं श्रोताओं की पसंद पर ये बहुत प्यारा सा गीत। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने, गीत लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का। और अपनी पसंद हम तक लिख भेजी है आप सभी श्रोताओं ने। धामड़ी मानोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे और प्रज्वल डेरे ने इसी गीत को पसंद किया है। रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने यही गीत सुनना चाहा है। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन डोमने और धीरज सब्बा सेरे ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, जिसे हमने लिया है फिल्म मेरे जीवन साथी से। स्वर हैं किशोर कुमार के, गीत लिखा है मजरू ने और संगीत है आर डी बर्मन का।

इस गीत को पसंद किया है साहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन, रोशनी और स्वीटी बेबी प्रियांशी ने। इसी गीत को सुना चाहे मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र, अभिजीत गवाड़, श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत, प्रणीता और अर्जुन ने। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश और सुमित ने। आप सभी की पसंद पर सुनिए कार्यक्रम का ये गीत।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं पर संपन्न होता है। इजाजत दीजिए अपनी दोस्त सरिता को। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है एक छोटे से अंतराल का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: अभी तक आप सुन चुके हैं कि जमुनिया अपने पति रतन के साथ मेहनत से कमा खा रही थी। रतन मेहनती था और ईमानदार भी। गांव के दीवान से मिलकर करण यानी रतन के भाई ने 10,000 रुपए का कर्ज दिलाया, जिसे कागजों में छल पूर्वक 25,000 बना दिया गया। जब रतन को ये बात मालूम हुई, वो स्तब्ध हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। बाद में करण ने अपनी भाभी जमुनिया को घर से निकाल दिया, उसकी दुधमुही बच्ची के साथ। उन्हें पास के गांव के झुल्लन बाबा ने आश्रय दिया, जहां बांस के डलिए और पंखे बनाना सीखकर जमुनिया गुजर बसर करने लगी। यहीं उसने पढ़ने की इच्छा जताई। गुरुजी ने उसे शिक्षा देना शुरू किया, अक्षर अंक के साथ वाक्य बनाना और जोड़ना घटाना भी सिखाया, और बताते रहे भारत के इतिहास और आज के भारत की गाथा। अब आगे।
1: अरे वाह, आज तो बहुत सारे डलिया पंखे बन रहे हैं। हाथ थोड़ा जल्दी चले जाते हैं, हो सकता है बिक जाए।
2: हाँ, एक काम करो बिटिया।
1: जी।
2: हाट आज मैं चला जाता हूँ, हैं? ये सामान भी बेच आऊंगा और कुछ बांस भी लेता आऊंगा। आज तुम और चिरैया घर पर रहो, पढ़ो पढ़ाओ, डंडिया पंखे बनाओ।
1: मैं भी साथ चलती हूँ बाबा, तुमको अकेले परेशानी होगी।
2: अरे बिटिया, काहे की परेशानी है, कुछ मुझे भी करने दिया कर, नहीं तो अला लिया जाएगी मेरे को।
1: तो फिर ठीक है, आज ज्ञान का नया पाठ पढ़ेंगे।
3: मैं चलूं बाबा हाट में?
2: है? चल, अच्छा आजा आजा आजा, चल थोड़ा तू भी घूम आएगी।
1: बाबा
2: हाँ?
1: तो फिर इसमें थोड़ा चबीना है, थोड़ा बहुत भूख मारने के लिए अच्छा रहेगा।
2: अरे बिटिया, कहीं बाहर निकलो तो एक पोटली या कुछ पकड़ा ही देती हो तुम, हैं? अन्नपूर्णा हो बिटिया तुम।
1: क्या अन्नपूर्णा?
3: बाबा, अन्नपूर्णा क्या होता है?
2: आज शाम को हाट से लौट कर आएंगे, तब अपनी माई से पूछना। हाँ, वो ही बताएगी तेरे को।
3: ठीक है माई, शाम को बताना, तब तक सोच कर रखना।
1: अच्छा भाई, अच्छा, अब चलो जाओ। प्रणाम गुरुजी।
4: प्रणाम प्रणाम। आओ आओ जमुनिया, आओ, खुश रहो बेटा।

0: ये क्या सुन रहे थे गुरुजी?
1: अरे बस जरा रेडियो पर शास्त्रीय संगीत सुन रहा था।
0: ये क्या होता है?
1: अरे भाई, वो जैसे अपने गांव में तुम लोग गाते बजाते हो ना, उसे लोक संगीत कहते हैं।
0: अच्छा,
1: उसी प्रकार संगीत की लंबी साधना और उसे स्थायी रूप देने के लिए शास्त्रीय संगीत होता है।
0: कठिन काम होगा, है ना?
1: देखो जमुनिया, ये पढ़ाई लिखाई ज्ञान ध्यान की

0: बातें बहुत गहरी हैं। इसे सीखने के लिए पूरा एक जीवन भी कम पड़ता है। अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, यहीं से रास्ता खुलता है।
1: ठीक है गुरुजी, एक ही दिन में सब कुछ सीखना होने वाला नहीं है। आज क्या पढ़ेंगे गुरुजी?
0: भाई आज तुम बहुत जरा जल्दी आ गई हो ना, लगता है घर का काम धाम सब निपटा कर आई हो यहाँ पर है
1: जी।
0: और मैं अभी बाहर से आया हूँ, थोड़ा सा जरा आराम करूँगा।
1: तो फिर मैं वापस चली जाऊँ?
0: अरे नहीं नहीं नहीं भाई, ये मैंने थोड़ी कहा कि तुम वापस चली जाओ है। तुम जरा यहीं पर आराम से बैठो, मैं अभी आता हूँ और तुम वो पिछले पाठों का अभ्यास करो तब तक है, फिर बाद में तुम्हें आराम से पढ़ाऊंगा।
1: ठीक है गुरुजी। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, राम घर चल, कमल लोटा ला, सच सच कह। इतनी हड़बड़ी मत मचा जमुनिया, पहले अपना नाम दिखना सीख, फिर दूसरे का नाम पढ़ना, हाँ फिर हिसाब किताब। ये जाने क्या तो शास्त्रीय गीत है, अपना तो कजरी होरी गारी यही भला है। ओ गुरुजी आ गए।
0: हाँ भाई जमुनिया, सुना भाई क्या कर रही हो है? अब मैंने तो आराम कर लिया, थकान जाती रही सारी। चलो अब आगे पढ़ते हैं
1: जी।
0: लाओ जरा देखें क्या क्या लिखा है तुमने। भाई वाह वाह जमुनिया वाह, अरे ये क्या लिखा है तुमने?
1: अपना नाम लिख रहे थे गुरुजी।
0: अरे पर इसमें मात्राएं तो सारी गायब हैं
1: जी।
0: ये तुमने जम नहीं लिखा है। चलो तुम्हारा नाम सही सही लिख देता हूँ मैं, अभ्यास करके लिखना सीखो
1: जी।
0: देखो ये है जा, जा माँ
1: जी,
0: माँ पर छोटे ऊ की मात्रा है, और ये ना है
1: जी,
0: ना पर छोटे छोटे ई की मात्रा, नी, और ये आ, आ की मात्रा, और या। हाँ देखो अब ये सब मिलकर बन गए ना जमुनिया, समझी कुछ?
1: बिल्कुल सही गुरुजी, कल लिख कर आऊंगी 100 बार।
0: अच्छा 100 कितना होता है?
1: हम भूले नहीं है गुरुजी, 10 बार 10 मिलकर 100 होते हैं।
0: शाबाश, चलो तो भाई आज तुम्हें एक दूसरा नाटक सुनवाते हैं
1: जी।
0: उससे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि अगर आज देश के गांव की हालत खराब है तो कहीं तक हो, उसकी नींव उस खुदगर्ज और जालिम अंग्रेजी साम्राज्य में ही है। अंग्रेजों को हराने की हमने कई कोशिशें की पर हर बार हम कभी हमारी आपसी फूट तो कभी उनकी चालाकी और ताकत से हार जाते थे। हमारी खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, पूरी खेती होने के बावजूद भी हमारे किसान भूखों मरने लगे।
1: बाप रे,
0: बहुत जुल्म किए उन्होंने।
2: हम तुमको उस लायक नहीं छोड़ेगा, तुम्हारी उंगली ही तोड़ेगा। यस गेट दैट, यस हम तुमको एक बार फिर बोलता है, तुम लोग सिर्फ हमारा वास्ते काम करने का और किसी का वास्ते नहीं।
3: काम दोगे तो हम दूसरों को कपड़ा तो भेजेंगे।
2: काम हम तुमको ठीक समझेगा वही देगा, जो इनकार करेगा उसका यही हाल करेगा हम। ए, इसका कपड़ा जला दो। Okay, you see to it. I'll break your karga, bloody karga. I'll break it. Yes, go.
4: Mama, अब हम क्या करेंगे मामा?
3: करेंगे क्या बेटा? अपने भाग को रोएंगे और क्या? अभी ये पालने के लिए कहीं मजूरी करेंगे? अब तक बुनकर थे, हम मजूर कहलाएंगे। मजूर कहलाएंगे।

0: देखा बेटा, ऐसे जुल्म और ज्यादतियों के दौर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए, आम इंसान को उसका हक दिलाने के उद्देश्य से 1885 में कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ।
1: गुरुजी, काहे का जन्म हुआ?
0: अरे भाई, भारत के लोगों ने एक पार्टी बनाई, कांग्रेस।
1: अच्छा, समझ गई, चुनाव वाली है ना।
0: चलो अच्छा, यही समझ लो, फिर बाद में समझाऊंगा, तब बात और साफ हो जाएगी। तो हमारी लड़ाई अलग अलग तरीके से चलती रही, कहीं जुल्म का मुकाबला बंदूक से करने वाले क्रांतिकारी थे, तो कहीं अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाले गांधी जी और उनके अनुयायी। आखिर सैकड़ों सालों के बाद, सैकड़ों साल गुलाम रहने के बाद, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया।
1: ओह गुरुजी, आपने तो गांधी जी के साथ क्या कहा, उनके क्या?
0: वो अनुयायी।
1: अच्छा, इसका मतलब?
0: हाँ, अरे इसका मतलब है उनके साथ काम करने वाले, उनको अपना नेता मानने वाले।
1: अच्छा,
0: तो तुम्हें अपने आजाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आवाज सुनवाते हैं?
1: जी जी।
2: कितने बरस हुए कि हमने किस्मत से एक बाजी लगाई थी, एक इकरार किया था, प्रतिज्ञा की थी, अब वक्त आया कि हम उसको पूरा करें।

0: अरे बाबा, तुम लोगों ने तो बड़ी देर लगा दी।
1: जमुनिया, अरे देख तो इधर,
0: क्या?
1: आज हम सारी डलियां और पंखा बेचकर आए हैं।
0: अरे वाह।
1: हाँ, तुम्हारे लिए चाक लाए हैं, चाक।
0: अच्छा,
1: और थोड़ी सी रबड़ी भी बेटा, सब मिलकर चाय का बदल लेंगे, हैं?
0: जीप चटोर हो तुम भी बाबा। हाँ।
1: अरे कुछ भी कहो, पर रबड़ी तो रबड़ी है बेटा।
2: सच्ची माई, बहुत ही बढ़िया है। हलवाई ने तो थोड़ी सी वैसे ही मुझे दे दी खाली। हाँ।
0: अच्छा अच्छा, चलो हाथ मुंह धो लो, गरम गरम रोटियां बना रही हूँ, खा लो।
2: काहू माई, ये बार बार हाथ धोने को कहती हो?
0: ताकि हाथ की गंदगी धुल जाए, साफ हो जाए और तुम बीमार ना पड़ो, है ना?
1: चिरैया बेटा, समझी?
2: हाँ, समझ गई।
1: तुम्हारी माई बड़ी ज्ञानी हो गई है। हाँ।
0: बाबा, आज हमने जवाहरलाल नेहरू की आवाज सुनी, समझ में उतना तो नहीं आया, पर अच्छा बहुत लगा।
1: कहाँ सुन लिया रे चाचा नेहरू की आवाज? पता है बेटा,
0: क्या
1: बच्चे उनको चाचा कहते थे। हाँ, वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे
0: बाबा।
1: हाँ?
0: वो गुरुजी ने रेडियो पर आज भी उन्होंने एक नाटक सुनवाया।
1: अच्छा,
0: बड़े जालिम थे ये अंग्रेज।
1: हाँ बेटा, बहुत ही बेरहम थे वो लोग। चल अब रोटी सेक बेटा।
0: अभी लो बाबा। गुरुजी प्रणाम।
3: प्रसन्न रहो बेटा, अब तुम्हारा उच्चारण भी ठीक हो रहा है। अच्छा लग रहा है तुम्हें?
0: क्या ठीक हो गया गुरुजी?
3: अरे भाई, जिस तरह शब्द को बोलना चाहिए वैसे ही बोल रही हो तुम। शब्द को बोलना ही उसका उच्चारण होता है।
0: ओह।
3: शब्द और अंक ज्ञान के साथ साथ जोड़ना घटाना भी करती रहो और शब्दों को मिलाकर वाक्य भी बनाओ। ये काम घर पर भी कर सकती हो तुम। यहां तुम्हें अपने देश की आजादी की कहानी सुनाऊंगा
0: जी,
3: अपने देश के बारे में बताऊंगा।
0: बहुत अच्छा गुरुजी।
3: तो बिटिया
0: जी,
3: कहीं एक तरफ आजादी की खुशी थी, कहीं देश अपने मुल्क के बंटवारे से जूझ रहा था। देश की एक बड़ी आबादी गांव में रहती थी। वे भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन की समस्याओं से ग्रस्त थी। एक मंजिल तो मिल गई थी, पर अभी कई मंजिलें पाना बाकी था। सच्ची आजादी पाने के लिए, देश को सुदृढ़ बनाने के लिए और मुल्क को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे देश के नेताओं ने बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में 26 जनवरी 1950 को भारत को एक नया संविधान दिया। इसमें हमारे देश के विकास के हर पहलू की बुनियाद है।
0: गुरुजी, देश का बंटवारा क्यों हुआ, किसने किया?
3: अब ये बात मैं तुम्हें कभी विस्तार से बताऊंगा
0: जी।
3: अभी तो ये समझ लो कि अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति पर चल रहे थे और जाते जाते हिंदुस्तान पाकिस्तान बना गए, ताकि हम आपस में लड़ते रहें और आगे ना बढ़ें।
0: जाते जाते भी उन्होंने आपसी फूट का बीज बो दिया, है ना?
3: हाँ बेटा, अब तुम्हें हम एक गाना सुनवाते हैं
0: जी। गुरुजी।

0: कैसा लगा बेटा?
1: बहुत अच्छा लगा गुरुजी।
0: पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो बता देना
1: जी।
0: कहानी पढ़ी है, धीरे से कहानी को सुनना पड़ेगा
1: जी,
0: तब समझ में आएगी
1: जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप सुनाइए, मैं नहीं थकने वाली। हाँ आप थक जाए तो बता दीजिएगा, ठीक है?
2: अरे थोड़ी सांस लेने दो बेचारी को। बेटी ये गुरुजी पढ़ाने के मामले में एक बार शुरू हो गए ना तो फिर थकने का नाम नहीं लेते। लो बिटिया पानी पी लो।
1: सच्ची गुरुजी?
0: अरे भाई तुम भी किसकी बातों में लग गई।
2: लो भाई हम तो चले, आप दोनों पढ़ो पढ़ाओ
1: जी।
0: हाँ तो आगे शुरू करें जमनिया
1: जी। गुरुजी
0: तो एक बार देश गणतंत्र बना तो फिर देश के विकास की योजनाएं एक के पीछे एक चल पड़ी। हर योजना देश को कुछ नया कुछ बेहतर देती रही, चाहे वो नेहरू जी हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री, चाहे इंदिरा गांधी। आजादी के शुरू के वर्षों में देश ने गजब की तरक्की की।
1: अरे वाह,
0: बड़े बड़े बांध बने, खेतों में सिंचाई के लिए पानी लाया गया, नहरें बनी, घर घर बिजली पहुंची, फैक्ट्री कारखाने बड़े बड़े उद्योग बने।
1: अच्छा,
0: आम आदमी की जरूरत की सभी चीजें अपने देश में ही बनने लगी। देश ने तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में भी दुनिया में बड़ा नाम कमाया। रेडियो टेलीविजन ये सब देश के कोने कोने में पहुंचने लगे। पर यह विकास बड़ी आसानी से हमारी झोली में नहीं आया, इसमें कई मुश्किलें सामने आई।
1: वो तो होता ही है, अच्छे काम में मुश्किलें तो होती हैं। क्या मुश्किलें आई गुरुजी?
0: देश में भयानक अकाल भी पड़ा। सूखा पड़ने से खेतों में अनाज नहीं था, लोग भूखों मरने लगे। तभी अपनी सूझबूझ से खेती पर ध्यान देते हुए हरित क्रांति आई। देश के अकाल को हमारे किसानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। खेत खलिहान लहलहा उठे, जो कदम चल चुके थे अब वो रुकने वाले नहीं थे। अब हमें खाने के लिए किसी की ओर हाथ नहीं फैलाना था, यह एक खुशहाल दौर था।
1: वाह गुरुजी, अब बात धीरे धीरे समझ में आ रही है। उसी नेह में जिनके पास जमीन नहीं है बंजर जमीन दी खेती करने के लिए, ये भी सोचा होगा सरकार ने, है ना?
0: सरकार ने तो अच्छा ही सोचा था बेटा। खैर चलो छोड़ो, मैं सोचता हूं आज के लिए बस इतना ही काफी है, हैं? क्यों?
1: ठीक है गुरुजी, फिर कल।
0: हाँ हाँ ठीक है।
1: प्रणाम गुरुजी।
0: प्रणाम प्रणाम, खुश रहो बेटिया।

0: ले चिरैया ले, अब देख तेरी माँ आ गई।
1: हाँ आज तो माई जल्दी आ गई।
2: पर आज बहुत सारा पढ़ाया गुरुजी ने।
1: अच्छा माई, क्या क्या पढ़ाया गुरुजी ने?
0: अरे तू नहीं पूछेगी तो भी वो बताएगी। पढ़ के आती है फिर हमें पढ़ाने लगती है।
2: चलो नहीं बताती, ठीक?
0: लगता है बिटिया रूठ गई।
2: तुम भी ना बाबा। आज उन्होंने बताया देश कैसे आजाद हुआ, आजादी के बाद कैसे देश की तरक्की हुई। शुरू में तो हालत बहुत खराब थी।
0: हाँ बिटिया, चल अब खाना खाते हैं, फिर तुम कहानी सुनाना हमें।
2: चलो बाबा ठीक है, पहले खाना ही खाते हैं।
0: हाँ। चल।
2: ओ बाबा, आज दिन भर डलिया और पंखे ही बनाएंगे।
0: ए ले, मैं भी कुछ मदद करता हूं। आज हाट भी नहीं है, चिड़िया नहीं दिखाई दे रही है। अभी तक सो रही है क्या वो?
2: अरे हाँ, देखो तो बाबा अंदर।
0: देखता हूँ बेटा। अरे चिड़िया बिटिया, आज इतनी देर तक कैसे सो रही है? उठो उठो बेटा उठो। अरे देखो तो कितना दिन निकल आया है।
1: नहीं हमको नहीं उठना बाबा।
0: उठो बेटा उठो, दातुन करके कुछ खा लो बेटा।
1: सिर पिर रहा है बाबा।
0: हैं? अरे दिखा तो मेरे को। हैं? अरे देह गरम है इसकी तो, माथा भी गरम है। अरे अरे बुखार लग रहा है इसको।
2: का हुआ बाबा, किसको बुखार है?
0: अरे बिटिया चिरैया को।
2: देखूं तो हाँ लगता तो है बुखार है, मैं सिर दबा देती हूँ। हाँ बाबा।
0: हाँ
2: तुम देखो कोई दवाई मिल जाए तो।
0: हाँ ठीक ठीक है, मैं वैद्य जी के पास जाता हूँ।
2: जी
0: राम राम वैद्य जी।
3: अरे अरे झुलन, अरे राम राम भाई, आओ आओ आओ, इधर कैसे आए?
0: अरे वैद्य जी, प्यासा ही कुएं के पास जाता है। हमारी चिरैया बिटिया को बुखार आ गया है, सिर भी बहुत दुख रहा है उसका, कोनो दवा हो तो दे दो।
3: हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, तुम जरा बैठो।
0: अच्छा
3: बैठो, ये लो ये लो, ये चार पुड़िया हैं। हाँ इन्हें उबाल कर एक एक पुड़िया गुड़ मिलाकर छान कर पिला देना।
0: अच्छा
3: समझ गए, ये काढ़ा है, काढ़ा बहुत असरदार होता है। हाँ
0: वैद्य जी, कितने पैसे दे दूं?
3: अरे भाई देखो, ये काढ़ा तो मैं यहीं के पौधे तोड़कर बनाता हूँ। इस तो इसके तो पैसे लगते नहीं। हाँ कभी मन हो तो एक आध डलिए है पंखा दे जाना।
0: जी क्यों नहीं जी।
3: अच्छा अभी तो जाओ जल्दी से जाकर उबालो, अच्छे से उबालना।
0: हाँ
3: 10-15 मिनट।
0: हाँ
3: फिर गुड़ मिलाना।
0: अच्छा
3: हल्का गरम गरम पिला देना।
0: हाँ
3: ईश्वर ने चाहा तो बिटिया जल्दी ठीक हो जाएगी।
0: हाँ
3: सुबह शाम दो बार पिलाना।
0: हाँ हाँ वैद्य जी, बड़ी कृपा है आपकी।
3: अरे
0: हाँ।
3: कृपा तो ऊपर वाले की है भाई, मेहनत हमारी है।
0: वो तो वैद्य जी है ये, प्रणाम करता
3: हूँ। प्रणाम प्रणाम।
0: चल रहा हूँ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जमुनिया का 8वां भाग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

0: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित खेलो इंडिया संवाद का उद्देश्य युवाओं को देश की खेल यात्रा से जोड़ना, उनकी आकांक्षाओं को साझा करना और एक सशक्त युवा नेतृत्व वाले विकसित भारत के लिए विचार प्रस्तुत करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ओणम के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ओणम नई फसल और प्रकृति के प्रति आभार का पर्व है। यह भारत की समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना को भी दर्शाता है। इधर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी सांस्कृतिक विरासत और अन्नदाताओं की समृद्धि के उत्सव ओणम के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत न्यूयॉर्क में शनिवार को आयोजित होने वाले हिंदू समुदाय सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमरीका पहुंच गए हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य एकता, नागरिक जिम्मेदारी और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देना है। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में NCTE पाठ्यक्रमों में प्रवेश के द्वितीय अतिरिक्त चरण की तिथियाँ बढ़ा दी हैं। विद्यार्थी 30 अगस्त तक पंजीयन और आवेदन कर सकेंगे, जबकि सीट आवंटन के बाद प्रवेश शुल्क 8 सितंबर तक जमा किया जा सकेगा। और मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया और सागर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन तक भोपाल, उज्जैन, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग के कुछ जिलों में तेज बारिश होने का अनुमान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। योगदान है आकाशवाणी ग्वालियर का।

महिला सभा कार्यक्रम में आप सभी सखियों का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी सखी निरंजना। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों कैसी हैं आप? मुझे मालूम है आप सभी बारिश की फुहारों और भोले बाबा की भक्ति और आराधना के साथ सावन का आनंद ले रही हैं, साथ ही तैयारी कर रही होंगी भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्यौहार यानी रक्षाबंधन की। सखियों त्योहारों के सिलसिले में आज है हमारे मुस्लिम भाई बहनों के भाईचारे का त्यौहार मिलादुन्नबी। मिलादुन्नबी इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाने वाला एक पवित्र त्यौहार है, जिसे अमन, प्रेम, एकता और भाईचारे के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसमें लोग पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को याद करते हैं जो मानवता, दया और मेल मिलाप का संदेश देती हैं। इस अवसर पर कई जगहों पर शांतिपूर्ण जुलूस निकाले जाते हैं जिनमें आपसी भाईचारे का संदेश दिया जाता है। मस्जिदों और घरों में विशेष प्रार्थनाएं होती है, कुरान की तिलावत की जाती है और गरीबों को दान दिया जाता है। इस अवसर पर पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन, उनकी शिक्षाओं और आध्यात्मिक विरासत को याद किया जाता है। सखियों मुस्लिम समुदाय के लिए ये दिन केवल उत्सव का नहीं बल्कि आत्मचिंतन और इबादत का प्रतीक है।

0: सखियों, अभी नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है, इसी के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं एक भेंट वार्ता, नेत्रदान महादान। डॉक्टर निखिल जैन से बातचीत कर रही हैं धमित्रा। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: नेत्रदान महादान, इस विषय पर विस्तृत बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर निखिल जैन को, जो नेत्र रोग एवं कॉर्निया विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद मैम।
1: सर, ये नेत्रदान क्या है, इस पर थोड़ा सा बताइए आप।
2: जैसा आपने बताया, नेत्रदान पखवाड़ा जो कि 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चलता है, उसमें हम नेत्रदान यानी कि एक व्यक्ति जब मृत हो जाता है तब अपनी आँखें दान करता है, जिसको हम नेत्रदान कहते हैं। इस चीज़ को समझने के में बहुत सारे लोगों में काफ़ी सारी शंकाएं हैं और उससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी हैं जो इसको थोड़ा सा कम करती हैं, लोगों के अंदर एक भ्रांति पैदा करती हैं। आपके माध्यम से अपने लिसनर्स को यही बताना चाहूँगा कि एक्चुअली होता क्या है। देखिए, नेत्रदान ऐसा होता है, जो हमारी आँखें हैं, एक इंसान की दो आँखें होती हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तब वो इंसान की आँखें 6 घंटे के अंदर अगर हम उसके शरीर से निकाल लें प्रॉपर तरीके से, तो हम उन आँखों का उपयोग कर सकते हैं उन मरीजों के लिए जिनको कि नेत्रदान पुतली के उपचार की आवश्यकता है।
1: सर, नेत्रदान में क्या पूरी आँखों को निकाला जाता है या सिर्फ कुछ पार्ट को उसमें निकालते हैं?
2: जी देखिए, ज़्यादातर केसेस में हम पूरी आँख ही निकालते हैं
1: जी,
2: क्योंकि कुछ जगहों पे या कुछ स्पेशल सिचुएशन में एक पार्ट निकाला जा सकता है, लेकिन मोस्टली केसेस में हम पूरी आँख निकालते हैं, दोनों आँखें निकालते हैं।
1: एक व्यक्ति के नेत्रदान से कितने लोगों को लाभ मिल सकता है?
2: जी, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। एक इंसान अपनी दो आँखें जो दान करता है, उससे करीबन 4 से 5 लोगों के उपचार का प्रबंध हो जाता है। जैसे कि आप पूछेंगे दो आँखों से कैसे, देखिए ऐसा होता है जब पूरी आँख निकाली जाती है तो एक बहुत कॉमन लोगों में कन्फ्यूजन भी है कि हम वो पूरी आँख लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम निकालते पूरी आँख है, लेकिन आँख के अलग अलग पोर्शंस होते हैं, जैसे कि काली पुतली, सफ़ेद पुतली। तो जिस इंसान को, जैसे किसी मरीज की सफ़ेद काली पुतली में धब्बा आ गया है या वो किसी इन्फेक्शन के कारण सफ़ेद पड़ गई है, तो हमें सिर्फ उसकी काली पुतली बदलनी होती, पूरी आँख नहीं बदली जाती है। तो अब उस दान की हुई आँख का हम सिर्फ काली पुतली निकाल के उस मरीज को हम प्रत्यारोपित कर देते हैं। तो ऐसे दो काली पुतली लग गई, फिर जो सफ़ेद पुतली बचती है वो भी कई रोगों में जैसे गल जाती है या फट गई है, तो हम उस सफ़ेद पुतली को 2 से 3 लोगों में आराम से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसे एक इंसान की दी हुई दो आँखें करीबन 4 से 5 लोगों को हितकारी होती हैं।
1: नहीं, बहुत अच्छा बताया कि उससे कम से कम 4 से 5 लोगों को हम लाभ पहुंचा सकते हैं, वो इस खूबसूरत दुनिया को वो देख सकते हैं। ये भी होता है कि क्या चश्मा लगाने वाला व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है, क्योंकि अमूमन आजकल तो हर कोई चश्मा लगा रहा है, तो ये भी एक
2: जी बिल्कुल आपने सही किया और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमें तो चश्मा लग गया, क्या हम नेत्रदान कर सकते हैं? तो मैं यही बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जी हाँ बिल्कुल, जिनको चश्मा लगा है वो लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं। नेत्रदान के लिए कोई भी इंसान जो कि नेचुरल कॉजेज से जिसकी डेथ हुई है, चाहे वो किसी भी एज का हो, वो नेत्रदान कर सकता है।
1: नेत्रदान करने की किसी व्यक्ति की इच्छा है तो उस व्यक्ति को कहाँ जाना चाहिए और इसका आगे का क्या प्रोसेस होता है, कोई रजिस्ट्रेशन होता है?
2: जी मैम, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर एक ये बहुत अच्छी भावना आई है कि जब अभी मैं जीवित हूँ लेकिन मैं मृत्यु उपरांत अपनी दोनों आँखें दान करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल उनके लिए एक तरीका है। जैसे जिस किसी के मन में ये आए तो कई सारे तरीकों से वो अपना ये संदेश तक पहुँचा सकता है या अपनी जहाँ पे वो रहते हैं। तो सबसे पहले जिस भी एरिया में वो रहते हैं वहाँ अगर कोई मेडिकल कॉलेज है तो वो मेडिकल कॉलेज में जो कि नेत्र रोग डिपार्टमेंट होता है वहाँ जाके अपनी शिक्षा को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो भी कंसर्न डॉक्टर्स होंगे वो आपको एक फॉर्म देंगे जिसको आपको भर के देना होता है, जिसको कि प्लेज फॉर्म कहते हैं। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है और उस हिसाब से आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। तो ऐसे केस में जब भी कभी आपकी ऐसी मृत्यु होती है तो आपके परिजनों को बस उस डिपार्टमेंट में एक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है, बाकी सारी चीज़ें डिपार्टमेंट द्वारा मैनेज कर ली जाती हैं।
1: जी।
2: और आजकल तो खैर इंटरनेट का ज़माना है, तो जैसा कि अगर आप नहीं जान सकते या असमर्थ हैं, आपके आसपास मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो हमारी भारत सरकार की एक वेबसाइट है pledge.mygov.in, इस वेबसाइट पर जाके भी आप अपनी आँख नेत्रदान का प्लेज कर सकते हैं। वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा जिससे कि मृत्यु उपरांत इन सब चीज़ों में कोई परेशानी नहीं आती है।
1: डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मृत्यु के कितने समय के अंदर नेत्रदान कराया जा सकता है?
2: देखिए, मृत्यु उपरांत 6 घंटे के अंदर हमें मृत व्यक्ति के शरीर से नेत्र निकालने पड़ते हैं, तब तक ही वो वैलिड रहते हैं। उसके बाद उन आँखों को एक प्रिजर्वेटिव में रख के स्टोर किया जाता है और तुरंत ही उसको ज़रूरत है वहाँ भेज दिया जाता है।
1: जी सर, कई बार ये भी होता है कि व्यक्ति ने नेत्रदान का संकल्प ले लिया और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या इसमें परिवार के लोगों की भी अनुमति की आवश्यकता होती है या उसकी अनुमति के बगैर भी नेत्रदान किया जा सकता है?
2: परिवार की सहमति, अगर किसी इंसान ने पहले अपनी ऐसी इच्छा प्रस्तुत की है या उसने ऐसा कोई प्लेज फॉर्म भर रखा है
1: जी,
2: तो उस केस में जो परिवार वाले हैं उनको मात्र सूचना प्रेषित करनी होती है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। अगर किसी ने पहले ऐसा प्लेज फॉर्म नहीं भरा है उस और मृत्यु से पहले उसने अपने परिवारजनों को सिर्फ इस इच्छा के बारे में बताया है, तो उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो परिवार वाले हैं वो अपनी आपसी सहमति से भी उनका नेत्रदान करवा सकते हैं।
1: सर, मान लीजिए किसी बेटे ने अपने पिता की आँखों का दान करवाया है, तो क्या वो बाद में पता कर सकता है कि भाई हमारे पिताजी की आँख किसको लगी है?
2: मैम, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। देखिए, नेत्रदान करना बहुत पुण्य का काम है
1: जी, जी।
2: लेकिन ये एक प्रोफेशनल सीक्रेसी, एक पेशेंट सीक्रेसी की बात होती है कि ये चीज़ें कभी भी बाहर डिस्क्लोज नहीं की जाती हैं।
1: सर, नेत्रदान बहुत ही पुण्य का काम है, लेकिन फिर भी आप मुझे बेहतर बता सकते हैं कि ये कितने लोग नेत्रदान करने के लिए आगे आते हैं?
2: मैम देखिए, यही हमारी थोड़ी सी स्थिति हमें बताती है, दर्शाती है कि जिन लोगों को एक नई पुतली की आवश्यकता है उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, लेकिन दान करने वाले बेहद कम हैं। और इसका कहीं ना कहीं मैं कारण मानता हूँ, इसके लिए जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए नेत्रदान पखवाड़ा शुरू किया गया है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस आपके माध्यम और सभी माध्यमों से उन तक ये बात पहुंचा सकें कि जो भी भ्रांतियां चल रही हैं नेत्रदान से संबंधित, उनको हम ख़त्म कर सकें या कम कर सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएं और नेत्रदान करें, जिससे जो हमारे मरीज जिनको की आवश्यकता है नेत्रों की, उनको हम उपचार कर पाएं जिनका।
1: सर, आपने भ्रांतियों की बात की, तो किस तरीके की भ्रांतियाँ अमूमन सुनने में आती हैं इसमें?
2: देखिए, भ्रांतियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ जो कॉमनली लोग कहते हैं यही कि जैसे अगर किसी इंसान ने मृत्यु उपरांत अपनी आँखें दान करी हैं तो उसको अगले जन्म में आँखें मिलेंगी ही नहीं, वो अंधा पैदा होगा।
1: जी, जी, जी।
2: लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि नेत्रदान एक बहुत ही पुण्य का काम है
1: जी, जी।
2: और पुण्य वाले व्यक्ति को भगवान ऐसा कभी नहीं करेगा, तो ये एक पूरी भ्रांति है। और उसमें एक जैसा ये होता है, कुछ लोगों को लगता है कि अगर हमने नेत्रदान कराया है तो कोई उनसे मिलने आएगा तो आंखें बहुत ही अजीब से दिखेंगी या वो लोग डर जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब नेत्रदान करवाया जाता है उसके बाद आपका शरीर बिल्कुल वैसा ही दिखता है, आंखें बंद ही होती हैं, और ऐसा कोई भी नहीं होता कि वो कोई इंसान डर जाए ऐसा देख के। और जब नेत्रदान कराया जाता है तो बिल्कुल ट्रेन स्टाफ होता है, उसके माध्यम से कराया जाता है।
1: सर, नेत्रदान के लिए लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: नेत्रदान से संबंधित संदेश से पहले मैं कुछ आपके साथ हमारे फिगर्स में कुछ साझा करना चाहूँगा, जिससे आपको उसकी गंभीरता का थोड़ा सा एहसास होगा। जैसा कि अभी कुछ स्टडीज़ ने पाया है कि हमारे देश भारत में करीबन 1 मिलियन से 1.2 मिलियन लोगों को कॉर्नियल ट्रांसप्लांट यानी कि पुतली प्रत्यारोपण की आवश्यकता है, मतलब इतने सारे मरीज हैं जो इंतज़ार में हैं, और उसका सिर्फ 25-30% तक ही लोगों का ऑपरेशन हो पा रहा है, यानी कि 65-70% मरीजों को पुतली मिल ही नहीं पा रही है। क्योंकि जो आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उनके अनुसार करीबन 45,000 से 50,000 तक ही कॉर्निया यानी कि जो नेत्रदान होते हैं, जिनमें से कि सिर्फ 30,000 तक जो अच्छे कॉर्निया होते हैं वो ही यूज़ किए जा पाते हैं, बाकी 15,000 कॉर्निया वेस्ट हो जाते हैं या वो लगाने लायक नहीं होते हैं। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि आवश्यकता कितनी ज़्यादा है और नेत्रदान कितने कम हो रहे हैं। तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से ये सब हमारे सारे श्रोतागण से अनुरोध है कि कोई भी भ्रांति को ना सुनते हुए आप अपने आसपास किसी भी नेत्र रोग विशेषज्ञ से या किसी कॉर्निया स्पेशलिस्ट से जाके अपनी कोई भी डाउट या भ्रांति को क्लियर करके ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर नेत्रदान का प्लेज करें, जिससे कि हमारे जो देश में जिन लोगों को ज़रूरत है हम उनको के उपचार में हम सहायता कर पाएँ, ताकि जब उन लोगों को नेत्र मिले तो वो भी हमारी तरह इस खूबसूरत दुनिया को देख सकें।
1: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जितने कॉर्निया की आवश्यकता है उतने लोग दान नहीं कर रहे हैं कॉर्निया को, लेकिन जो दान हो भी रहे हैं उनमें से भी कई प्रत्यारोपित नहीं हो पाते हैं, तो इसका क्या कारण है?
2: कई सारे कारणों से, जैसे अगर थोड़ा सा विलंब हो जाए नेत्र दान कराने में
1: जी।
2: या फिर जो कॉर्निया की कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है
1: नहीं।
2: तो कुछ कॉर्निया ऐसे कॉर्नियाज बच जाते हैं जो कि हम प्रत्यारोपित नहीं कर पाते हैं
1: जी।
2: तो ऐसे कॉर्नियाज हैं उनका भी हम उपयोग करते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए, अपनी रिसर्च के लिए और अपनी टीचिंग के लिए, जिससे कि आगे हमें और उसके एडवांस टेक्निक्स का हम परीक्षण कर सकते हैं। मैं अपने श्रोतागणों से यही कहना चाहूँगा कि नेत्रदान एक महादान है, एक बहुत ही पुण्य का काम है। आपके द्वारा किया गया नेत्रदान कईयों की ज़िंदगी में खुशियाँ भर सकता है और वो आपकी दान की हुई आँखों से इस सुंदर दुनिया को दोबारा देख सकते हैं। तो आगे बढ़िए मेरे दोस्तों और नेत्रदान का संकल्प करें।
1: डॉक्टर साहब, आपने नेत्रदान महादान के विषय में इतनी अच्छी जानकारी दी, पूरी उम्मीद है कि इस जानकारी का हमारे जो श्रोता हैं वो ज़रूर इस पर अमल करेंगे, नेत्रदान करने के लिए वो आगे आएंगे, और इतनी अच्छी जानकारी के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद
0: सखियों। अभी आपने भेंटवार्ता सुनी नेत्रदान महादान, डॉक्टर निखिल जैन से बातचीत कर रही थी धमित्रा। अब सखियों हम चर्चा करेंगे कृषकों का त्यौहार ओणम पर। हर साल जब केरल में मानसूनी हवाएं चलने लगती हैं तो वातावरण में एक जादुई एहसास जाग उठता है। गलियां ताजे फूलों की खुशबू से महक उठती हैं, घर लाइटों से जगमगा जाते हैं। इसी बीच परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होकर केरल का प्रसिद्ध त्यौहार ओणम मनाते हैं। सखियों, ये केरल का 10 दिनों तक चलने वाला फसल उत्सव है जो मलयाली कैलेंडर के चिंगम महीने यानी अगस्त सितंबर के दौरान मनाया जाता है। ये त्यौहार महान असुर राजा महाबली के स्वागत और उनकी न्यायप्रियता की याद में मनाया जाता है। सखियों, ओणम की मुख्य परंपराओं में सबसे पहले आता है पुक्कलम, जिसमें घरों के सामने फूलों से सुंदर रंगोली बनाई जाती है। फिर आता है ओण सग्या, जिसमें शाकाहारी और पारंपरिक भोज केले के पत्ते पर परोसा जाता है। इसमें लगभग 26 से अधिक पकवान होते हैं और ये केवल भोजन नहीं समानता का प्रतीक है, जिसमें सभी लोग जमीन पर बैठकर एक साथ भोजन करते हैं। इसके बाद वल्लम कली यानी स्नेक बोट्स, जो कि प्रसिद्ध और रोमांचक सर्प नाव दौड़ होती है। फिर थिरुवथिरावली, जिसमें महिलाएं सफ़ेद और सुनहरी केरल की साड़ियों में सजी लयबद्ध समूह नृत्य करते। इसके बाद आता है पुली कली द टाइगर डांस, जिसमें कलाकार अपने शरीर को बाघ और तेंदुओं की तरह रंगते हैं और गलियों में नृत्य करते हैं। सखियों, ओणम मलयाली नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और यह समाज में प्रेम, भाईचारे और समरसता का संदेश देता है।

0: सखियों, अब हम बात करेंगे मानवता, करुणा और निस्वार्थ सेवा की मूर्त मदर टेरेसा के बारे में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, असहायों और बीमारों की सेवा में लगा दिया। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। उन्होंने कोलकाता में रहकर पूरी दुनिया को प्रेम और भाईचारे का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कम उम्र में नन बनकर 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था की नींव रखी। उन्होंने अनाथों, कुष्ठ रोगियों, लाबारिस लोगों के लिए निर्मल हृदय नामक आश्रय गृह बनाया। मानवता की सेवा के लिए उन्हें 1979 में विश्व प्रसिद्ध नोबेल शांति पुरस्कार मिला। सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया और फिर उन्हें रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। सखियों, मदर टेरेसा का जीवन हमें सच्चा धर्म और मानवता की सेवा करना सिखाता है। उनका काम आज पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। वो जरूर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचारों को मिशनरीज ऑफ चैरिटी की सिस्टर्स आज भी जीवित रखे हुए हैं। सखियों, आपसे चर्चा करते करते अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। तो आप सभी अपना, अपने परिवार का ध्यान रखते हुए त्योहारों का आनंद लीजिए, खुश रहिए और अपनी सखी निरंजना को दीजिए जाने की अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, योगदान था आकाशवाणी ग्वालियर का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है अंतराल का।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाते हैं जहान सिंह कुशवाहा के गाए लोक भजन।

0: ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत के कार्यक्रम में जहान सिंह कुशवाहा के गाए लोकगीत। योगदान था आकाशवाणी ग्वालियर का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, योगदान था आकाशवाणी ग्वालियर का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है अंतराल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म दिल तो पागल है से। ये गीत गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है उत्तम सिंह का।

कार्यक्रम के अंतिम पेशकश फिल्म मैंने प्यार किया से सुमधुर आवाज लता मंगेशकर की, गीत रचना है असद भोपाली की और संगीत है राम लक्ष्मण का।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेज के युवाओं की भागीदारी रहेगी। ये संवाद खेल, युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयंसेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। ये संवाद खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा सहित 5 विषयों

पर केंद्रित होगा। खेलो इंडिया संवाद का मुख्य उद्देश्य युवाओं को देश की खेल यात्रा से जोड़ना, उनकी आकांक्षाओं को साझा करना और एक सशक्त युवा नेतृत्व वाले विकसित भारत के लिए विचार प्रस्तुत करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भिंड जिले के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की चौथी विनिर्माण इकाई का शुभारंभ करेंगे। 450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित इस इकाई के जरिए 2000 से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। नई इकाई में आधुनिक स्वचालित पैकेजिंग प्रणाली और 10 मीट्रिक टन प्रति घंटे क्षमता वाला सेपोनिफिकेशन संयंत्र स्थापित किया गया है। इसके विस्तार के बाद राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 185 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जीएसटी राजस्व मिलने का अनुमान है। नई फसल और प्रकृति के प्रति आभार का पर्व ओणम आज देश भर में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व भारत की समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओणम के अवसर पर देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि खुशियों और उल्लास का ये त्यौहार पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। श्री मोदी ने कामना की कि ये त्यौहार लोगों में खुशी, एकता और समृद्धि की भावना को और मजबूत करेगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी आज प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही मिलाद जुलूस भी इस दौरान निकाले जा रहे हैं। राज्य के छिंदवाड़ा सहित अन्य जिलों से भी ईद मिलादुन्नबी के मनाए जाने के समाचार मिल रहे हैं। ई श्रम पोर्टल के शुभारंभ के आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल का शुभारंभ किया था। इसके माध्यम से देश का पहला आधार आधारित राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस तैयार किया गया है। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में अगले 2 दिन भोपाल, उज्जैन, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग में तेज बारिश का दौर रहने की संभावना है। मौसम केंद्र भोपाल ने आज भिंड, दतिया और सागर जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम और शहडोल संभाग के कुछ जिलों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हो सकती है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता कार्यक्रम के अंतर्गत खरगोन जिले में 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान आमजन को नेत्रदान के प्रति जागरूक किया जाएगा। शिवपुरी जिले में खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष जाँच अभियान चलाया जा रहा है। अगर मालवा में कल मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा महर्षि अरविंद जयंती पर जिला स्तरीय व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। झाबुआ में कल जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के सिकल सेल कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम और आयुष्मान भारत कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। और नीमच में समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन और मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान सहित विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। अभी आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया, 2500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर जोर दिया। ओणम का त्यौहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। पूर्वी और उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने

0: कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यहां व्यापक अवसर, निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत तथा तेजी से विकसित हो रहे पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश के मजबूत अवसर प्रदान करता है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने ये बात कही।
1: India today stands as the fastest.
2: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
1: क्रॉस वर्चुअली एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी।
0: वित्त मंत्री ने कहा कि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं तक पहुंच का दायरा बढ़ाया है। भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक सेतु है।
1: इंडिया कनाडा बायलैटरल रिलेशंस हैव सीन।
2: भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में हाल के समय में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इन संबंधों को हमारे साझा लोकतांत्रिक और बहुलतावादी मूल्यों, बढ़ते आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क ने मजबूत किया है।
1: ब्रिज बिटवीन टू वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज एंड टू इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमीज।
0: श्रीमती सीतारामन ने जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने को लेकर बनी सहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों ने भविष्य केंद्रित रणनीतिक साझेदारी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। श्रीमती सीतारामन 4 दिवसीय यात्रा पर कल टोरंटो पहुंची। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय क्षेत्र के प्रमुखों से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मौजूद कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया।
3: फूड इनसिक्योरिटी रिमेन्स। खाद्य असुरक्षा सशस्त्र संघर्षों के सबसे गंभीर मानवीय परिणामों में से एक है। आज के संघर्षों का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। ऊर्जा बाजारों, उर्वरक आपूर्ति, समुद्री परिवहन, मानवीय सहायता की व्यवस्था और कृषि व्यापार में होने वाले व्यवधानों से स्पष्ट है कि किसी क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।
4: हाईली इंपोर्ट डिपेंडेंट।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। नई दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र सौंपते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि योजना के शुभारंभ के बाद से 9,22,000 से अधिक महिलाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया है।
4: एक अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है।

0: 1000 बहने हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
1: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये वित्तीय सहायता महिलाओं को बच्चों की देखभाल और शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और आजीविका तथा व्यवसायिक गतिविधियों में सहायता जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा ए के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA H1N1 का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। IMA ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। IMA ने विशेष रूप से एजिथ्रोमाइसिन, एमिक्सुलिन, क्लूवेंटलेट और सेफिक्साइमिम जैसी एंटीबायोटिक्स नहीं लेने की चेतावनी दी है। IMA ने बताया है कि H1N1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार और ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अन्य लक्षणों में सिरदर्द, नाक बहना या बंद होना, मतली, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट, CSIR नेट तथा ICAR, AIEEPG और AICE PhD 2026 परीक्षा के अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया है कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए महिला सशक्तिकरण केवल चुनावी नारा है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध किया और सदन में इसके पारित होने में बाधा डाली। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की कांग्रेस शासित सरकारों में महिला मंत्रियों की अनुपस्थिति को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया। आकाशवाणी कोलकाता ने आज प्रसारण के 100वें वर्ष में प्रवेश किया है। आकाशवाणी कोलकाता की शताब्दी यात्रा का ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: आकाशवाणी कलकत्ता ने आज अपना शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है, जो बंगाल में प्रसारण की इतिहास का एक महत्वपूर्ण पर्व है। केंद्र ने 26 अगस्त 1927 को अपना पहले बंगाल प्रसारण शुरू किया था। पिछले 100 वर्षों में आकाशवाणी कलकत्ता बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। समाचार, संगीत, साहित्य, नाटक, शिक्षा और जनसेवा कार्यक्रम के माध्यम से इसने कई पीढ़ियों के श्रोताओं को जोड़ा और ज्ञान चर्चा को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसार के अधीन ये केंद्र आज आधुनिक माध्यमों के जरिए श्रोताओं तक पहुंचने के साथ साथ अपनी समृद्ध विरासत को भी संरक्षित कर रहा है। संदीपन दासगुप्ता के साथ अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मना रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: तिरुओणम के अवसर पर पारंपरिक पुष्प सज्जा ओण पुक्कलम से उत्सव की शुरुआत हुई। इसे पौराणिक राजा महाबली के स्वागत के लिए बनाया जाता है। फसल का ये प्रमुख पर्व सभी केरल वासियों द्वारा उत्सव के साथ मनाया जाता है। सबरीमाला, अरनमुला और गुरुवायूर सहित राज्य के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पारंपरिक केरल भोज ओण साध्या भी तिरुओणम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। आज राज्य भर में आधिकारिक आयोजनों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेल आयोजित किए जाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी समाचार के पूर्व समाचार वाचक पंचदेव पांडे का आज निधन हो गया। उन्होंने 1963 में आकाशवाणी वाराणसी से उद्घोषक के रूप में अपने सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1983 से 1997 तक आकाशवाणी दिल्ली में समाचार वाचक के रूप में अपनी सेवाएं दी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं

0: उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शनिवार तक तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने अगले सप्ताह देश में बारिश कम होने की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में हुई बारिश के बाद महानदी का जलस्तर बढ़ने से उड़ीसा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उड़ीसा में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के बाद कटक के मुंडली में लगभग 6,70,000 क्यूसेक पानी पहुंचा, जिससे महानदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। बाढ़ का पानी आरड़ी, सुंदरपुर, नंदापुर और उलाग पंचायत को प्रभावित कर रहा है। 6 जिलों में 1,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। अधिकारी नदियों के जलस्तर और संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। IMD ने आज उड़ीसा के लिए बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उधर उत्तरी नेपाल में आज सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने सीमावर्ती बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है और निचले इलाकों के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ सुबह तिब्बत की दिशा से आती हुई भोटे कोशी नदी में उमड़ी। नेपाल की सेना ने एक बयान में कहा कि पानी के अचानक बढ़ने से रसुवा जिले के तिरुमुरे और पास के सियाफुरुबेसी इलाके में भारी तबाही हुई है। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT और नेटफ्लिक्स ने कहानी कहने वालों की अगली पीढ़ी को समर्थन देने के लिए 100 भारतीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को 6 व्यावसायिक कार्यक्रमों में 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनमें 1 वर्षीय 2 डिप्लोमा कार्यक्रम और 6 माह के 4 प्रमाण पत्र कार्यक्रम शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव और IICT बोर्ड के अध्यक्ष चंचल कुमार ने कहा कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वर्ष अगस्त में नेटफ्लिक्स के सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस के साथ हुई बैठक के बाद की गई है। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुद ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। इस दौरान प्रशिक्षित जंपरों ने शून्य से नीचे करीब 15 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 185 रन बना लिए हैं। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर दिया जोर। ओणम का त्योहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

श्रोताओं, एक गीत आप सुन रहे थे फिल्म आन मिलो सजना से। सुमधुर आवाज थी लता मंगेशकर की, गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस मधुर से गीत को पसंद करने वाले श्रोता थे घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। इसी गीत को सुनना चाहा था पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने। इसी गीत को पसंद किया था दतरेंगी छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा ने, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी ने, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू ने। तो आप सभी ने इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुना कार्यक्रम का ये गीत। और अब अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं जिसे हमने लिया है फिल्म आनंद से, और आवाज़ है मुकेश की, शब्द रचना है गुलजार की और संगीत है शैल चौधरी का।

अगली पेशकश फिल्म धरती से, सुमधुर आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। हसरत जयपुरी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने। पसंद करने वाले श्रोता हैं कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। इसी गीत को पसंद किया है सिंगपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म गीत से। स्वर हैं महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर के। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और इस गीत को संगीत में बनाया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत को पसंद किया है आप सभी श्रोताओं ने। सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश चौहान, शिव प्रकाश चौहान और वेद प्रकाश चौहान ने। अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, एलपी, रोहित, लल्लूराम, पूरन, रोहित, छोटू, गुड्डन और इनका समस्त परिवार। आप सभी की पसंद पर सुनते ये प्यारा सा गीत।

हीर रांझा, आइए अब हम आपको सुनाते हैं इस फिल्म का गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ में शब्द रचना है कैफी आजमी की और संगीत है मदन मोहन का। ये गीत पसंद किया है आप सभी ने। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा जैस्मीन और प्रयागराज भट्ट ने इसी गीत को सुनने वाले श्रोता हैं ग्राम खकल तहसील कोच जिला जालौन से दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अंशराज सिंह गुर्जर और इनका पूरा परिवार। आइए सुनवाते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

बिजली, इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। शब्द रचना है मजरूह की और संगीत में बनाया है इस गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनना चाहा है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका और नूपुर ने।

0: इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों के युवाओं की भागीदारी रहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भिंड जिले के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की चौथी विनिर्माण इकाई का शुभारंभ कर रहे हैं। 450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित इस इकाई के जरिए 2000 से अधिक नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। ई श्रम पोर्टल की शुरुआत के आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय लीडरों से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मौजूद कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा ई के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। हालांकि IMA ने यह भी कहा है कि अधिकतर संक्रमण हल्के हुआ करते हैं और अपने आप ठीक हो जाया करते हैं, इसलिए ज़्यादा घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। और प्रदेश में अगले 2-3 दिन भोपाल, उज्जैन, सागर, ग्वालियर और चंबल संभागों में तेज बारिश होने का दौर रहने की संभावना है। मौसम केंद्र भोपाल ने आज भिंड, दतिया और सागर जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन EIR एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी भोपाल है। श्रोताओं, अब हम आपको बता दें आज सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 5:02 पर आप सुनेगा युवाओं का कार्यक्रम युवाणी, योगदान रहेगा आकाशवाणी ग्वालियर का। फिल्म संगीत आप सुनेगा 5:33 पर शाम 6:30 और 8:15 पर। शाम 6:00 आप सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। शाम 7:21 पर ग्रामीण श्रोता सुनेंगे ग्राम सभा कार्यक्रम। रात 8:00 कार्यक्रम सुर्खियों में। रात्रि 9:30 कार्यक्रम चर्चा का विषय है। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात 10:00 आप सुनेगा नाटक जेब कतरा। इस नाटक के लेखक हैं सादत हसन मंटो और प्रस्तुतकर्ता हैं राकेश ढोंडियाल। रात 10:30 आप सुनिएगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज आप सुनेंगे श्रुति अधिकारी का संतूर वादन। राग होगा

बसंत मुखर्जी। श्रोताओं, ये थे आज संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रम। ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:02 हो चुके हैं। मीडियम वेव पर अब ये सभा संपन्न होती है। शाम 5:02 पर इसी मीटर पर हम पुनः उपस्थित होंगे। इसी बीच हमारा प्रसारण डीटीएच के ऑडियो चैनल पर जारी रहेगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत। योगदान है आकाशवाणी ग्वालियर का।

इसी लोक भजन के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। योगदान था आकाशवाणी ग्वालियर का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। प्रस्तुति है आकाशवाणी ग्वालियर की। लोक संगीत में आज कलाकार हैं अर्जुन धर्माधिकारी।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम, योगदान था आकाशवाणी ग्वालियर का। लीजिए अब प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म सिंग इज किंग का ये बहुत प्यारा संगीत। आवाजें हैं राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की, शब्द रचना है मयूरपुरी की और संगीत है प्रीतम का।

श्रोताओं भी बहुत प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं फिल्म जब भी मीट का। स्वर है मोहित चौहान के, गीत लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत है प्रीतम का। श्रोताओं फिल्म सिंह इज किंग का गीत हम आपको इस गीत के बाद सुनाते हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सिंह इज किंग से, आवाज़ें राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की। गीत रचना है मयूरपुरी की और संगीत है प्रीतम का।

आइए अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म हम दिल दे चुके सनम का ये बहुत प्यारा संगीत, जिसे गाया है उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों ने। महबूब के लिखे गीत को संगीत में बनाया है इस्माइल दरबार ने।

अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ में आप सुनते हैं फिल्म तेजाब का गीत। ये शब्द रचना है जावेद की और संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म खलनायक से। स्वर हैं अलका याग्निक और साथियों के, शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भिंड जिले के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की चौथी विनिर्माण इकाई का शुभारंभ किया। 450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित इस इकाई से 2000 से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में देशभर के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों के युवाओं की भागीदारी रहेगी। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT और नेटफ्लिक्स ने कहानी कहने वालों की अगली पीढ़ी को समर्थन देने के उद्देश्य से 100 भारतीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को 6 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ई श्रम पोर्टल की शुरुआत के आज 5 साल पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। हालांकि IMA ने यह भी कहा है कि अधिकतर संक्रमण हल्के हुआ करते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। और प्रदेश में अगले 2 दिन भोपाल, उज्जैन, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग में तेज बारिश का दौर रहने की संभावना है। मौसम केंद्र भोपाल ने आज भिंड, दतिया और सागर जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम कहकशां।

दोस्तों अभी आप गुलकारा आशा भोसले की आवाज़ में गज़ल समाअत फरमा रहे थे और कलाम था नासिर काज़मी का। गज़ल सुनते हुए हम आवाज़ और अल्फाज के ज़रिए एक दुनिया में दाखिल होते हैं, जबकि रंगमंच हमें इसी दुनिया को अपनी आँखों के सामने जीते हुए देखने का मौका देता है। यही रंगमंच की खूबी है, वो कहानी सिर्फ सुनाता नहीं बल्कि उसे हमारे सामने बखूबपज़ीर कर देता है। किसी फनकार का स्टेज पर आना, उसका एक जुमला कहना, उसकी चाल, उसका ठहराव, यहाँ तक कि उसका खामोश रहना भी एक मानी पैदा करता है। भोपाल की रंगमंची रिवायात को समझने के लिए भारत भवन का जिक्र लाजिम हो जाता है। 13 फरवरी 1982 को भारत भवन का इफ्ताह हुआ और इसे इस अंदाज में तरक्की दी गई कि मुख्तलिफ फनून यानी रंगमंच, मौसिकी, शायरी और बसरी फनून एक दूसरे के करीब आ सके। भारत भवन की यही खूबी थी कि यहाँ फन को अलग अलग खानों में बांटने की बजाय उनके दरमियान मुकालमा पैदा करने की कोशिश की गई। इसी माहौल में रंगमंडल ने भोपाल के रंगमंच को एक नई सम्त दी। रंगमंडल मध्य प्रदेश की पहली सरकारी इमदाद याफ्ता थिएटर के तौर पर सामने आया और इसके जरिए फनकारों को मुसलसल तरबियत, तजर्बे और मुख्तलिफ रंगमंची तकनीकों से रोशनास करने का मौका मिला। बीवी कारंत ने लोक रंग रिवायात को जदीद रंगमंची तजर्बात से जोड़ने की कोशिश की। उनकी दिलचस्पी सिर्फ स्टेज की तकनीक में नहीं थी बल्कि इस बात में भी थी कि रंगमंची अपनी मिट्टी की आवाज को किस तरह अपने अंदर जगह देता है। यही वजह है कि लोक धुनें, मकामी बोलियां और लोक अदाकारी के अंदाज जदीद रंगमंची पेशकश का हिस्सा बने। इस तरह भोपाल के स्टेज पर जदीदियत और रिवायत एक दूसरे के मुख्तलिफ नहीं बल्कि एक दूसरे के माविन बनकर सामने आए। सामेन, इस मौजू पर हम और बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम सुनेंगे एक गजल गुलकारा आशा भोसले की खूबसूरत आवाज में, और कलाम है शहजाद जालंधरी का। समाप्त कीजिए।

दोस्तों, अभी आप गुलकारा आशा भोसले की आवाज़ में गज़ल समात फरमा रहे थे और कलाम था शहजाद जालंधरी का। रंगमंची दुनिया की तरफ हम वापस आते हैं और बात करते हैं इस दुनिया के स्टेज, रोशनी और पर्दे जितने अहम हैं उतनी ही अहम वो मिट्टी है जिससे फनकार अपनी जुबान, अपना अंदाज और अपनी कहानी हासिल करता है। अगर रंगमंच बाहर से लाई गई तकनीकों का नाम होता तो शायद हर शहर का रंगमंच एक जैसा दिखाई देता, लेकिन असल रंगमंच वो है जो अपने समाज की आवाज पहचानता है। भोपाल का ये सकाफती मरकज सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसकी बाजगश्त दुनिया भर में सुनी गई। रंगमंडल के कैनवास को बड़ा करने के लिए बैनुल अक्वामी सतह के मायानाज थिएटर डायरेक्टर्स को मदु किया गया। जब भारत भवन कायम हुआ तो दुनिया के अजीम तरीन डायरेक्टर पीटर ब्रूक ने यहाँ 4 दिन का वर्कशॉप मुनाकिद किया। जर्मनी के मशहूर डायरेक्टर फ्रिट्स बेनेविट्स ने रंगमंडल के साथ कसरत से काम किया। मध्य प्रदेश की लोक रंग रिवायत में माच, नाचा और पंडवानी जैसे अंदाज अपनी अलग शनाख्त रखते हैं। इन्हीं लोक रिवायत से रंगमंच को अपनी जमीन, अपनी लय और अपनी जुबान हासिल होती है। हबीब तनवीर का रंगमंच भी इस बड़े सवाल से जुड़ता है कि जिस समाज की कहानी स्टेज पर बयान की जा रही है उसकी अपनी जुबान और उसकी अपनी अदाकारी को स्टेज पर कितनी जगह मिलनी चाहिए। सामीन इस ख्याल को कुछ अशार के साथ महसूस करते हैं और सुनते हैं इस प्रोग्राम की अगली पेशकश गुलकारा फरीदा खानम की आवाज में। समाप्त कीजिए।

दोस्तों अभी आप गुलुकारा फरीदा खानम की आवाज में गजल समाअत फरमा रहे थे। सामईन, जब हम रंगमंच और रिवायत की बात करते हैं तो भोपाल का लोकरंग मेला हमारे सामने उभरता है, जो महज एक त्योहार नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सकाफती रूह का जश्न है। हर साल यूमी जमहूरिया से शुरू होने वाला ये 5 रोजा मेला मध्य प्रदेश के महकमाए सकाफत और ट्राइबल म्यूजियम मिलकर मुनाकिद करते हैं। गुज़िश्ता 20 सालों से ये मेला हमारे देही और कबायली विरसे की तरवीज कर रहा है। ये मेला साबित करता है कि रिवायते जमूद का नाम नहीं बल्कि पानी की तरह बहती हुई नई नस्लों के दिलों को सैराब करती है। शहर के सकाफती मराकज के दरमियान ये ताल्लुक सिर्फ प्रोग्रामों का नहीं बल्कि फिक्र और तजर्बे के तबादले का भी है। एक जगह से निकलने वाली आवाज दूसरी जगह तक पहुंचती है और फिर कोई नया फनकार, नया शायर या नया रंगकार इसे अपने अंदाज में आगे बढ़ाता है। इस सिलसिले में उर्दू की अपनी खास अहमियत है। भोपाल की तारीख में उर्दू अदब, शायरी, मुशायरे और महफिलों की पुरानी रिवायत रही है, इसलिए यहाँ के सकाफती मंजरनामे को सिर्फ रंगमंच के जरिए समझना भी मुकम्मल तस्वीर नहीं देता। रंगमंच, शायरी, मौसिकी और लोक फनून जब एक ही शहर की फिजा में सांस लेते हैं तब ही इस शहर की सकाफती शनाख्त पूरी तरह सामने आती है। और शायद इसीलिए भोपाल में रंगमंच को सिर्फ एक फन नहीं बल्कि मुख्तलिफ आवाजों के दरमियान एक पुल की तरह भी देखा जा सकता है। समय इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश गुलकार विनोद सहगल की आवाज में समाप्त कीजिए।

दोस्तों, अभी आप गुलकार विनोद सहगल की आवाज़ में गज़ल समात फरमा रहे थे। भोपाल की सकाफती शनाख्त किसी एक दौर या जुबान की मोहताज नहीं, इसमें उर्दू अदब की नज़ाकत, हिंदी की रवानी और मालवा की तारीख, लोक थिएटर की सौंधी खुशबू रची बसी है। यहाँ रंगमंच रिवायत को नया स्टेज देता है और रिवायत रंगमंच को अपनी जमीन। जब कोई नौजवान स्टेज पर आकर भोपाल की किसी मकामी बोली में मुकालमा अदा करता है तो समझे रिवायत अपने नए सफर पर निकल चुकी है। जिंदा तहजीब की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि वो माजी की महज कोई बेजान याद न बनकर रह जाए, बल्कि हर नए दौर में एक नई आवाज हासिल करती रहे। इसी के साथ आज का हमारा ये खूबसूरत यादगार सफर अपने अख्तिताम पर पहुंचता है। आज आपने हमारे इस खुसूसी पड़ाव में सुना रंगमंच और रिवायत, भोपाल के सकाफती मराकज। इस सफर के दौरान आपको झीलों के खूबसूरत शहर भोपाल की उन लाजवाब आवाजों की झलक जरूर मिली होगी, जो कभी स्टेज से, कभी जादुई शायरी से, तो कभी मौसीकी के सुरों से और कभी लोक रिवायत की खूबसूरत ताने बाने से इस शहर की सच्ची शनाख्त को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। अब वक्त हुआ है आपसे रुख्सत लेने का, अपनी मिट्टी की खुशबू, अपने फन और अपने लाजवाब रिवायतों से अपना रिश्ता हमेशा कायम रखें। इसी दिली तमन्ना के साथ अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए मौजू, नई आवाज और नई दास्तान के सफर में। हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय और तजावीज हमें जरूर अरसाल करें, क्योंकि आपकी आवाज कहकशा की रोशनी है। हमारा पता नोट फरमाइए, उर्दू प्रोग्राम कहकशा, मार्फत स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462002। उर्दू प्रोग्राम कहकशा को बरोज मंगल रात 9:30 बजे सुनना ना भूलें। अब अपनी दोस्त शीरिन खान को दीजिए इजाजत। आदा।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम कहकशा, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय के अंतर्गत जमुनिया धारावाहिक का 8वां भाग।

0: अभी तक आप सुन चुके हैं कि जमुनिया अपने पति रतन के साथ मेहनत से कमा खा रही थी। रतन मेहनती था और ईमानदार भी। गांव के दीवान से मिलकर करण यानी रतन के भाई ने 10,000 रुपए का कर्ज दिलाया, जिसे कागजों में छल पूर्वक 25,000 बना दिया गया। जब रतन को ये बात मालूम हुई, वो स्तब्ध हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। बाद में करण ने अपनी भाभी जमुनिया को घर से निकाल दिया, उसकी दुधमुही बच्ची के साथ। उन्हें पास के गांव के झुल्लन बाबा ने आश्रय दिया, जहां बांस के डलिए और पंखे बनाना सीखकर जमुनिया गुजर बसर करने लगी। यहीं उसने पढ़ने की इच्छा जताई। गुरुजी ने उसे शिक्षा देना शुरू किया, अक्षर अंक के साथ वाक्य बनाना और जोड़ना घटाना भी सिखाया, और बताते रहे भारत के इतिहास और आज के भारत की गाथा। अब आगे
1: अरे वाह, आज तो बहुत सारे डलिया पंखे बन रहे हैं। हाथ थोड़ा जल्दी चले जाते हैं, हो सकता है बिक जाए।
2: हाँ, एक काम करो बिटिया।
1: जी।
2: हाथ आज मैं चला जाता हूँ, हैं? ये सामान भी बेच आऊंगा और कुछ बांस भी लेता आऊंगा। आज तुम और चिरैया घर पर रहो, पढ़ो पढ़ाओ, डलिया पंखे बनाओ।
1: मैं भी साथ चलती हूँ बाबा, तुमको अकेले परेशानी होगी।
2: अरे बिटिया, काहे की परेशानी है? कुछ मुझे भी करने दिया कर, नहीं तो अला लिया जाएगी मेरे को।
1: तो फिर ठीक है, आज ज्ञान का नया पाठ पढ़ेंगे।
3: मैं चलूं बाबा हाट में?
2: है? चल, अच्छा आजा आजा आजा, चल थोड़ा तू भी घूम आएगी।

0: ये क्या सुन रहे थे गुरुजी?
1: अरे बस जरा रेडियो पर शास्त्रीय संगीत सुन रहा था।
0: ये क्या होता है?
1: अरे भाई, वो जैसे अपने गांव में तुम लोग गाते बजाते हो ना, उसे लोक संगीत कहते हैं।
0: अच्छा,
1: उसी प्रकार संगीत की लंबी साधना और उसे स्थायी रूप देने के लिए शास्त्रीय संगीत होता है।
0: कठिन काम होगा, है ना?
1: देखो जमुनिया, ये पढ़ाई लिखाई ज्ञान ध्यान की बातें बहुत गहरी हैं। इसे सीखने के लिए पूरा एक जीवन भी कम पड़ता है। अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, यहीं से रास्ता खुलता है।
0: ठीक है गुरुजी, एक ही दिन में सब कुछ सीखना होने वाला नहीं है। आज क्या पढ़ेंगे गुरुजी?
1: भाई आज तुम बहुत ज़रा जल्दी आ गई हो ना, लगता है घर का काम धाम सब निपटा कर आई हो यहाँ पर हैं
0: जी।
1: और मैं अभी बाहर से आया हूँ, थोड़ा सा ज़रा आराम करूँगा।
0: तो फिर मैं वापस चली जाऊँ?
1: अरे नहीं नहीं नहीं भाई, ये मैंने थोड़ी कहा कि तुम वापस चली जाओ हैं। तुम ज़रा यहीं पर आराम से बैठो, मैं अभी आता हूँ और तुम वो पिछले पाठों का अभ्यास करो तब तक है, फिर बाद में तुम्हें आराम से पढ़ाऊंगा।
0: ठीक है गुरुजी। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, राम घर चल, कमल लोटा ला, सच सच कह। इतनी हड़बड़ी मत मचा जमुनिया, पहले अपना नाम दिखना सीख, फिर दूसरे का नाम पढ़ना, हाँ फिर हिसाब किताब। ये जाने क्या तो शास्त्रीय गीत है, अपना तो कजरी होरी गारी यही भला है। ओ गुरुजी आ गए।
1: हाँ भाई जमुनिया, सुना भाई क्या कर रही हो? अब मैंने तो आराम कर लिया, थकान जाती रही सारी। चलो अब आगे पढ़ते हैं
0: जी।
1: लाओ जरा देखें क्या क्या लिखा है तुमने। भाई वाह वाह जमुनिया वाह, अरे ये क्या लिखा है तुमने?
0: अपना नाम लिख रहे थे गुरुजी।
1: अरे पर इसमें मात्राएं तो सारी गायब हैं
0: जी।
1: ये तुमने जम नहीं लिखा है। चलो तुम्हारा नाम सही सही लिख देता हूँ मैं, अभ्यास करके लिखना सीखो
0: जी।
1: देखो ये है जा जा माँ
0: जी,
1: माँ पर छोटे ऊ की मात्रा है, और ये ना है
0: जी,
1: ना पर छोटे छोटे ई की मात्रा, नी, और ये आ आ की मात्रा, और या। हाँ देखो अब ये सब मिलकर बन गया जमुनिया, समझी कुछ?
0: बिल्कुल सही गुरुजी, कल लिख कर आऊंगी 100 बार।
1: अच्छा 100 कितना होता है?
0: हम भूले नहीं है गुरुजी, 10 बार 10 मिलकर 100 होते हैं।
1: शाबाश, चलो तो भाई आज तुम्हें एक दूसरा नाटक सुनवाते हैं
0: जी।
1: उससे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि अगर आज देश के गांव की हालत खराब है तो कहीं तक हो, उसकी नींव उस खुदगर्ज और जालिम अंग्रेजी साम्राज्य में ही है। अंग्रेजों को हराने की हमने कई कोशिशें की, पर हर बार हम कभी हमारी आपसी फूट तो कभी उनकी चालाकी और ताकत से हार जाते थे। हमारी खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी,

0: पूरी खेती होने के बावजूद भी हमारे किसान भूखों मरने लगे।
1: बाप रे,
0: बहुत जुल्म किए उन्होंने।
2: दूसरे के लिए कपड़ा नहीं बनाएंगे वाले।
3: हम तुमको उस लायक नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी उंगली ही तोड़ेगा। Yes, get that. Yes. हम तुमको एक बार फिर बोलता है, तुम लोग सिर्फ हमारा वास्ते काम करने का और किसी का वास्ते नहीं।
2: काम दोगे तो हम दूसरों को कपड़ा तो भेजेंगे वाले।
3: काम हम तुमको ठीक समझेगा वही देगा, जो इनकार करेगा उसका यही हाल करेगा हम। ए, इसका कपड़ा जला दो। ओके, यू सी टू इट, आई ब्रेक योर करघा, ब्लडी करघा, आई ब्रेक इट। यस, गो।
2: करेंगे क्या बेटा, अपने भाग को रोएंगे और क्या। अभी ये पालने के लिए कहीं मजूरी करेंगे, अब तक बुनकर थे, हम मजूर कहलाएंगे, मजूर कहलाएंगे।

0: देखा बेटा, ऐसे जुल्म और ज्यादतियों के दौर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए, आम इंसान को उसका हक दिलाने के उद्देश्य से 1885 में कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ।
1: गुरुजी, काहे का जन्म हुआ?
0: अरे भाई, भारत के लोगों ने एक पार्टी बनाई, कांग्रेस।
1: अच्छा अच्छा, समझ गई, चुनाव वाली है ना?
0: चलो अच्छा अच्छा, यही समझ लो, फिर बाद में समझाऊंगा, तब बात और साफ हो जाएगी। तो हमारी लड़ाई अलग अलग तरीके से चलती रही, कहीं जुल्म का मुकाबला बंदूक से करने वाले क्रांतिकारी थे, तो कहीं अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाले गांधी जी और उनके अनुयायी। आखिर सैकड़ों सालों के बाद, सैकड़ों साल गुलाम रहने के बाद, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया।
1: ओह गुरुजी, आपने तो गांधी जी के साथ क्या कहा, उनके क्या?
0: वो अनुयायी।
1: अच्छा, इसका मतलब?
0: हाँ, अरे इसका मतलब है उनके साथ काम करने वाले, उनको अपना नेता मानने वाले।
1: अच्छा,
0: तो तुम्हें अपने आजाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आवाज सुनवाते हैं?
1: जी जी।
2: कितने बरस हुए कि हमने किस्मत से एक बाजी लगाई थी, एक इकरार किया था, प्रतिज्ञा की थी, अब वक्त आया कि हम उसको पूरा करें।

0: अरे बाबा, तुम लोगों ने तो बड़ी देर लगा दी।
1: जमुनिया, अरे देख तो इधर,
0: क्या?
1: आज हम सारी डलियां और पंखा बेचकर आए हैं।
0: अरे वाह।
1: हाँ, तुम्हारे लिए चाक लाए हैं, चाक
0: अच्छा,
1: और थोड़ी सी रबड़ी भी बेटा, सब मिलकर चाय का बदल लेंगे, हैं?
0: जीप चटोर हो तुम भी बाबा। हाँ
1: अरे कुछ भी कहो, पर रबड़ी तो रबड़ी है बेटा।
2: सच्ची माई, बहुत ही बढ़िया है। हलवाई ने तो थोड़ी सी वैसे ही मुझे दे दी खाली।
0: अच्छा अच्छा, चलो हाथ मुंह धो लो, गरम गरम रोटियां बना रही हूँ, खा लो।
2: काहू माई, ये बार बार हाथ धोने को कहती हो?
0: ताकि हाथ की गंदगी धुल जाए, साफ हो जाए और तुम बीमार ना पड़ो, है ना?
1: चिरैया बेटा, समझी?
2: हाँ, समझ गई।
1: तुम्हारी माई बड़ी ज्ञानी हो गई है। हाँ।
0: बाबा, आज हमने जवाहरलाल नेहरू की आवाज सुनी, समझ में उतना तो नहीं आया पर अच्छा बहुत लगा।
1: कहाँ सुन लिया रे चाचा नेहरू की आवाज? पता है बेटा,
0: क्या
1: बच्चे उनको चाचा कहते थे। हाँ, वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे
0: बाबा।
1: हाँ?
0: वो गुरुजी ने रेडियो पर आज भी उन्होंने एक नाटक सुनवाया।
1: अच्छा,
0: बड़े जालिम थे ये अंग्रेज।
1: हाँ बेटा, बहुत ही बेरहम थे वो लोग। चल अब रोटी सेक बेटा।
0: अभी लो बाबा। गुरुजी प्रणाम।
3: प्रसन्न रहो बेटा, अब तुम्हारा उच्चारण भी ठीक हो रहा है, अच्छा लग रहा है तुम्हें।
0: क्या ठीक हो गया गुरुजी?
3: अरे भाई, जिस तरह शब्द को बोलना चाहिए वैसे ही बोल रही हो तुम। शब्द को बोलना ही उसका उच्चारण होता है।
0: ओह।
3: शब्द और अंक ज्ञान के साथ साथ जोड़ना घटाना भी करती रहो और शब्दों को मिलाकर वाक्य भी बनाओ। ये काम घर पर भी कर सकती हो तुम। यहां तुम्हें अपने देश की आजादी की कहानी सुनाऊंगा
0: जी,
3: अपने देश के बारे में बताऊंगा।
0: बहुत अच्छा गुरुजी।
3: तो बिटिया
0: जी,
3: कहीं एक तरफ आजादी की खुशी थी, कहीं देश अपने मुल्क के बंटवारे से जूझ रहा था। देश की एक बड़ी आबादी गांव में रहती थी। वे भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन की समस्याओं से ग्रस्त थी। एक मंजिल तो मिल गई थी, पर अभी कई मंजिलें पाना बाकी था। सच्ची आजादी पाने के लिए, देश को सुदृढ़ बनाने के लिए और मुल्क को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे देश के नेताओं ने बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में 26 जनवरी 1950 को भारत को एक नया संविधान दिया। इसमें हमारे देश के विकास के हर पहलू की बुनियाद है।
0: गुरुजी, देश का बंटवारा क्यों हुआ, किसने किया?
3: अब ये बात मैं तुम्हें कभी विस्तार से बताऊंगा
0: जी।
3: अभी तो ये समझ लो कि अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति पर चल रहे थे और जाते जाते हिंदुस्तान पाकिस्तान बना गए, ताकि हम आपस में लड़ते रहें और आगे ना बढ़ें।
0: जाते जाते भी उन्होंने आपसी फूट का बीज बो दिया, है ना?
3: हाँ बेटा, अब तुम्हें हम एक गाना सुनवाते हैं
0: जी। गुरुजी।

0: कैसा लगा बेटा?
1: अब बहुत अच्छा लगा गुरुजी।
0: पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो बता देना
1: जी।
0: कहानी पढ़ी है, धीरे से कहानी को सुनना पड़ेगा
1: जी,
0: तब समझ में आएगी
1: जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप सुनाइए, मैं नहीं थकने वाली। हाँ आप थक जाए तो बता दीजिएगा, ठीक है?
2: अरे थोड़ी सांस लेने दो बेचारी को। बेटी ये गुरुजी पढ़ाने के मामले में एक बार शुरू हो गए ना तो फिर थकने का नाम नहीं लेते। लो बिटिया पानी पी लो।
1: सच्ची गुरुजी?
0: अरे भाई तुम भी किसकी बातों में लग गई।
2: लो भाई हम तो चले, आप दोनों पढ़ो पढ़ाओ
1: जी।
0: हाँ तो आगे शुरू करें जमनिया
1: जी। गुरुजी
0: तो एक बार देश गणतंत्र बना तो फिर देश के विकास की योजनाएं एक के पीछे एक चल पड़ी। हर योजना देश को कुछ नया कुछ बेहतर देती रही, चाहे वो नेहरू जी हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री, चाहे इंदिरा गांधी। आजादी के शुरू के वर्षों में देश ने गजब की तरक्की की।
1: अरे वाह!
0: बड़े बड़े बांध बने, खेतों में सिंचाई के लिए पानी लाया गया, नहरें बनी, घर घर बिजली पहुंची, फैक्ट्री कारखाने बड़े बड़े उद्योग बने।
1: अच्छा,
0: आम आदमी की जरूरत की सभी चीजें अपने देश में ही बनने लगी। देश ने तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में भी दुनिया में बड़ा नाम कमाया। रेडियो टेलीविजन ये सब देश के कोने कोने में पहुंचने लगे। पर यह विकास बड़ी आसानी से हमारी झोली में नहीं आया, इसमें कई मुश्किलें सामने आई।
1: वो तो होता ही है, अच्छे काम में मुश्किलें तो होती हैं। क्या मुश्किलें आई गुरुजी?
0: देश में भयानक अकाल भी पड़ा। सूखा पड़ने से खेतों में अनाज नहीं था, लोग भूखों मरने लगे। तभी अपनी सूझबूझ से खेती पर ध्यान देते हुए हरित क्रांति आई। देश के अकाल को हमारे किसानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। खेत खलिहान लहलहा उठे, जो कदम चल चुके थे अब वो रुकने वाले नहीं थे। अब हमें खाने के लिए किसी की ओर हाथ नहीं फैलाना था। ये एक खुशहाल दौर था।
1: वाह गुरुजी, अब बात धीरे धीरे समझ में आ रही है। उसी नेह में जिनके पास जमीन नहीं है बंजर जमीन दी खेती करने के लिए। ये भी सोचा होगा सरकार ने, है ना?
0: सरकार ने तो अच्छा ही सोचा था बेटा। खैर चलो छोड़ो, मैं सोचता हूं आज के लिए बस इतना ही काफी है, हैं? क्यों?
1: ठीक है गुरुजी, फिर कल।
0: हाँ हाँ ठीक है।
1: प्रणाम गुरुजी।
0: प्रणाम प्रणाम, खुश रहो बेटिया।

0: ले चिरैया ले, अब देख तेरी माँ आ गई।
1: हाँ आज तो माई जल्दी आ गई।
2: पर आज बहुत सारा पढ़ाया गुरुजी ने।
1: अच्छा माई, क्या क्या पढ़ाया गुरुजी ने?
0: अरे तू नहीं पूछेगी तो भी वो बताएगी। पढ़ के आती है फिर हमें पढ़ाने लगती है।
2: चलो नहीं बताती, ठीक?
0: लगता है बिटिया रूठ गई।
2: तुम भी ना बाबा। आज उन्होंने बताया देश कैसे आजाद हुआ, आजादी के बाद कैसे देश की तरक्की

0: तरक्की हुई। शुरू में तो हालत बहुत खराब थी।
1: हाँ बिटिया, चल अब खाना खाते हैं, फिर तुम कहानी सुनाना हमें।
0: चलो बाबा, ठीक है, पहले खाना ही खाते हैं।
1: हाँ चल।

0: आज दिन भर डलिया और पंखे ही बनाएंगे।
1: ए ले, मैं भी कुछ मदद करता हूं। आज हाट भी नहीं है, चिड़िया नहीं दिखाई दे रही है। अभी तक सो रही है क्या वो?
0: अरे हाँ, देखो तो पापा अंदर।
1: देखता हूँ बेटा। अरे चिड़िया बिटिया, आज इतनी देर तक कैसे सो रही है? उठो उठो बेटा उठो। अरे देखो तो कितना दिन निकल आया है।
2: नहीं, हमको नहीं उठना पापा।
1: उठो बेटा उठो, दातुन करके कुछ खा लो बेटा।
2: सिर पर रहा है पापा।
1: हैं? अरे दिखा तो मेरे को। हैं? अरे देह गरम है इसकी तो, माथा भी गरम है। अरे अरे बुखार लग रहा है इसको।
0: का हुआ बाबा, किसको बुखार है?
1: अरे बिटिया चिरैया को।
0: देखूं तो हाँ, लगता तो है बुखार है। मैं सिर दबा देती हूँ। हाँ बाबा,
1: हाँ
0: तुम देखो कोई दवाई मिल जाए तो।
1: हाँ ठीक है, मैं वैद्य जी के पास जाता हूँ।
0: जी
1: राम राम वैद्य जी।
3: अरे अरे झुल्लन, अरे राम राम भाई, आओ आओ आओ, इधर कैसे आए?
1: अरे वैद्य जी, प्यासा ही कुएं के पास जाता है। हमारी चिरैया बिटिया को बुखार आ गया है, सिर भी बहुत दुख रहा है उसका। कोनू अच्छा। दवा हो तो दे।
3: हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, तुम जरा बैठो।
1: अच्छा
3: बैठो, ये लो ये लो, ये चार पुड़िया हैं। हाँ इन्हें उबाल कर एक एक पुड़िया गुड़ मिलाकर छान कर पिला देना।
1: अच्छा
3: समझ गए, ये काढ़ा है, काढ़ा बहुत असरदार होता है। हाँ
1: वैद्य जी, कितने पैसे दे दूं?
3: अरे भाई देखो, ये काढ़ा तो मैं यहीं के पौधे तोड़कर बनाता हूँ। हाँ इस तो इसके तो पैसे लगते नहीं। हाँ कभी मन हो तो एक आध डलिए है पंखा दे जाना।
1: जी क्यों नहीं जी।
3: अच्छा अभी तो जाओ, जल्दी से जाकर उबालो, अच्छे से उबालना। हाँ
1: हाँ
3: 10-15 मिनट।
1: हाँ
3: फिर गुड़ मिलाना।
1: अच्छा
3: हल्का गरम गरम पिला देना।
1: हाँ
3: ईश्वर ने चाहा तो बिटिया जल्दी ठीक हो जाएगी।
1: हाँ
3: सुबह शाम 2 बार पिलाना।
1: हाँ हाँ बेटे जी, बड़ी कृपा है आपकी।
3: अरे
1: हाँ।
3: कृपा तो ऊपर वाले की है भाई, मेहनत हमारी है।
1: वो तो बेटे जी है ये। प्रणाम करता हूँ।
3: चलो प्रणाम प्रणाम।
1: चल रहा हूँ।

0: नमस्कार, मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। 5 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: इस घंटे की खास खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेपाल में मूसलाधार बारिश और ग्लेशियर फटने से बिहार में उत्पन्न बाढ़ के खतरे आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की है। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास के रेलवे अंडरपास में जल भराव के दौरान बैरिकेड्स हटाकर स्कूल वैन निकालने और विद्यार्थियों की जान जोखिम में डालने की घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि मध्य प्रदेश की विद्युत कंपनियों में दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर संविदा पदों पर दी गई नियुक्तियों को नियमित करने की प्रक्रिया के तहत 43 अनुकंपा संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति प्रदान की गई है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। हालांकि IMA का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के हुआ करते हैं और अपने आप में ठीक हो जाया करते हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। और ई श्रम पोर्टल के शुभारंभ के आज 5 साल पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए अब सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति है।

दोस्तों नमस्कार, मैं आपकी दोस्त रागिनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके और मेरे अपने कार्यक्रम युववाणी में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आज महिला समानता दिवस पर आप सभी महिला मित्रों को महिला समानता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, तो कुछ महिला समानता

दिवस की बात करते हैं। महिला समानता दिवस हर साल 26 अगस्त को मनाया जाता है। महिलाओं के अधिकार, सम्मान और समानता के लिए महिला समानता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य यह याद दिलाना है कि समाज की प्रगति तभी संभव है जब महिलाएं और पुरुष दोनों को बराबरी के अवसर मिलें। शिक्षा, सुरक्षा, नेतृत्व, नौकरी, निर्णय लेने के अधिकार में कोई भेदभाव ना हो। घर से लेकर कार्यालय तक महिलाओं को निर्णय लेने की आज़ादी मिलना चाहिए। जब महिलाएं भी कमाएंगी तब देश की इकोनॉमी मजबूत होगी। पढ़ी लिखी और स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज बना सकती है। कानून के साथ साथ सोच बदलने से ही हम महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराध को कम कर सकेंगे। भारत भूमि पर हमेशा से शक्ति की पूजा होती रही है और आगे भी हमेशा होती रहेगी। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे पढ़ाई हो, खेलकूद हो, विज्ञान, अंतरिक्ष, सेना, राजनीति, प्रशासन, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और महिलाओं के आगे बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि वह पुरुषों से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। महिला समानता का अर्थ है अवसरों की बराबरी, पुरुषों को बराबर का योगदान देना। इसलिए आज महिला समानता दिवस से हम और आप मिलकर कोशिश करेंगे कि किसी भी लड़की की शिक्षा को बीच में नहीं रुकने देंगे, काम के स्थान पर बराबर वेतन और सुरक्षित माहौल देंगे, बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण घर के काम को भी काम की इज्जत देंगे और महिलाओं के खिलाफ हो रही गलत बातों पर आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि चुप रहना भी एक तरह से गलत को समर्थन देना होता है। महिला समानता दिवस सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, यह हमें हर दिन याद दिलाता है कि जब तक महिलाओं को बराबरी नहीं मिलेगी तब तक विकास अधूरा रहेगा। महिलाओं की प्रगति देश की प्रगति है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सब इसी के साथ सुनते हैं एक गीत।

दोस्तों, अब हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तापमान हर साल बढ़ रहा है। 2024 और 2025 सबसे गर्म साल रहे हैं। बाढ़, सूखा, हीट वेव, जंगल में आग, यह सभी जलवायु परिवर्तन के संकेत हैं। IPCC की रिपोर्ट कहती है कि अगर अभी हमने एक्शन नहीं लिया तो 2050 तक धरती 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा गर्म हो जाएगी और इसका सबसे ज़्यादा असर हम युवाओं पर पड़ेगा, क्योंकि यह सदी हमारी है। इसलिए आज हम युवाओं को आगे आना होगा। हम युवाओं के पास तीन चीज़ें हैं, समय, शक्ति और सोच। इन तीन चीज़ों से हम धरती बचा सकते हैं। हमारे सामने जलवायु परिवर्तन के कारण कई समस्याएं हैं, जैसे पानी की कमी, ग्राउंड वाटर का स्तर तेज़ी से नीचे जा रहा है, हर दिन लाखों टन कचरा नदियों, समुद्रों और ज़मीन में जा रहा है। 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक होगा। फैक्ट्री, गाड़ी, AC, कारखानों से निकलने वाला धुआं हवा को जहरीला बना रहा है। ऐसी और भी कई समस्याएं जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे सामने हैं। इन समस्याओं का समाधान भी हम युवाओं के हाथ में ही है। जैसे पानी की कमी के लिए हम लोकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। छत पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाएं, अर्थात घर की छत से पाइप के थ्रू पानी को बोरवेल या टैंक तक पहुँचाएँ। 1000 स्क्वायर फीट छत से एक साल में 50,000 लीटर पानी जमा हो सकता है। इसके अलावा खुले मैदान या स्कूल कॉलेज में खुले मैदानों में गड्ढा खोदें, उसमें पत्थर, रेत, मिट्टी भर दें। इससे बारिश का पानी सीधे ज़मीन में जाएगा। अपने आसपास के लोगों को यह सभी उपाय करने के लिए प्रेरित करना तथा पानी का दुरुपयोग करने से रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है। इन सभी उपायों से ग्राउंड वाटर का लेवल ऊपर आएगा, बाढ़ आना कम होगी और गर्मी में पानी की दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल को फॉलो करके कचरा बनना कम कर सकते हैं और जो कचरा है उसे पुनः उपयोग करके दोबारा काम में ले सकते हैं। इसकी शुरुआत हम अपने घर से ही कर सकते हैं, जैसे 5R यानी रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल रोट को फॉलो करना प्रारंभ करें। जैसे रिफ्यूज में फ्री का प्लास्टिक जैसे पॉलिथिन, पैम्पलेट्स आदि लेने से मना करें। रिड्यूस में कम चीज़ें खरीदें, अर्थात ज़रूरी हो उतना ही लें। रीयूज, कांच की बोतल, कपड़े का बैग, ऐसी वस्तुओं का उपयोग दोबारा करें। रिसाइकल, कागज़ और प्लास्टिक को अलग अलग करके कबाड़े वाले को रिसाइकलिंग के लिए दें। रोट, किचन वेस्ट से खाद बनाएं। इन सभी उपायों से हम कचरा कम कर सकते हैं, क्योंकि कचरा कम तो लैंडफिल कम, मीथेन गैस कम बनेगी और शहर साफ होंगे। इसी के साथ हमें प्लास्टिक डिपेंडेंसी भी कम करनी होगी। इसके लिए हमें एक प्लास्टिक फ्री किट का ट्रेंड बनाना होगा। प्लास्टिक फ्री किट अर्थात जिसमें प्लास्टिक का कोई भी सामान ना हो। कपड़े का बैग, स्टील की बोतल, बैम्बू का स्ट्रॉ, स्टील का टिफ़िन आदि सभी वस्तुएं उसमें प्लास्टिक फ्री हों। लोकल दुकानदारों से प्लास्टिक की जगह कपड़े या कागज़ का बैग देने के लिए कहें। किसी फंक्शन में प्लास्टिक की प्लेटों का यूज़ ना करें, ना ही किसी भी प्रकार के डिस्पोजल्स का यूज़ करें। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग कम करें। यह याद रखें कि प्लास्टिक को यूज़ करने में हमें 5 मिनट लगते हैं, पर उसी प्लास्टिक को गलने में 500 साल लगते हैं। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करें, साइकिल का यूज़ करें,

पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का यूज़ करें, कम दूरी की जगह पर पैदल ही चलकर जाएं, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण कदम ये होगा कि सभी लोग एक पेड़ ज़रूर लगाएं और उसे एक साल तक पालें। इसी के साथ साथ और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें करना चाहिए, जैसे कि डेली 10 मिनट एसी कम चलाएं, हफ्ते में एक दिन नो प्लास्टिक डे ज़रूर मनाएं, जितना ज़रूरी हो उतना ही बिजली तथा पानी का उपयोग करें, लोकल और सीजनल चीज़ें खाएं। यह जलवायु परिवर्तन हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें जगाने के लिए है कि अभी भी हमारे पास समय है इसे सुधारने का। चलिए इस जलवायु परिवर्तन को युवा शक्ति से मौका बनाते हैं, क्योंकि भविष्य हमारा है और फैसला भी हमारा ही होगा। ना हम धरती पर परमानेंट हैं, ना धरती परमानेंट हमारी है। हम यहाँ किराएदार हैं और हम सिर्फ अगले किराएदार के लिए घर साफ करके जा रही हैं। दोस्तों, हमने बात की जलवायु परिवर्तन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।

इसी के साथ दोस्तों, आज ईद मिलाद उन नबी भी है जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। यह दिन इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को आता है। इस दिन कई जगहों पर जुलूस निकाले जाते हैं, विशेष दुआएं व मिलाद की महफिलें सजती हैं और हमारे मुस्लिम भाई बहन उन्हें याद करते हैं और उनके बताए हुए नेक रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। तो हमारे सभी दोस्तों को ईद मिलाद उन नवी मुबारक हो। चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं यह गीत।

दोस्तों, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का, तो मुझे यानी अपनी दोस्त रागिनी को दीजिए इजाज़त। हम कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य विषयों और गीतों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। नंबर

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं नूरानी सिस्टर्स और विशाल ददलानी की आवाज़ में सुल्तान फिल्म का बहुत ही प्यारा सा नगमा। विशाल ददलानी ने इस गीत को साथ दिया है गाने में और इरशाद कामिल के बोल हैं विशाल शेखर का संगीत। आइए सुनते हैं सुल्तान फिल्म का ये गीत।

आइए अब सुनते हैं नदीम श्रवण के संगीत से सजा हुआ गीत। आनंद बख्शी के बोल है, फिल्म का नाम है परदेस और आवाज़ कुमार सानू की।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं प्रेम रतन धन पायो फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं मोहम्मद इरफान, दर्शन रावल और पलक मुछाल की। बोल हैं इरशाद कामिल के और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
4: अरे क्या बात है, आज तो तुम बड़ो ही नोनो गीत गा रही हो। और जो तो वही गीत है जाकी हम फरमाइश की चिट्ठी लिखकर भेजा था थे और हमारी पसंद को लोक गीत हमारी जिज्जी हमें लोक माधुरी में सुनवा देती।
5: हाँ खूब ही सही चीज ना तुमने, जो वही लोक गीत है और आज हम जी को जासे गा रहे कि आज हमारा मन बहुत ही उल्लास में है।
4: काय ऐसो का होगा जिज्जी,
5: अपना जो पसंदीदा कार्यक्रम लोक माधुरी को हम सभी सुन सकते हैं हर सोमवार शाम 7:21 से 8 के बीच।
4: जिज्जी जाके लाने अपने को चिट्ठी कैसे भेजनी होगी?
5: अरे चिट्ठी विट्ठी छोड़ो, अब हम हो गए डिजिटल, सो अब हम लिख के भेजेंगे अपनी फरमाइश व्हाट्सएप पे।
4: तो जीजी जाको व्हाट्सएप नंबर का है?
5: डायरी तनक खोलो और जल्दी से लिख लो 9425702768। तो याद भाव कि नहीं, तनक बताओ तो जल्दी से
4: 9425702768।
5: तो आप अपनी पसंद को लोकगीत के बोल।
6: पेश है इस घंटे की खास खबरें। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में आयोजित कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के 36वें वार्षिक सम्मेलन में आज कहा कि कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्र में नई दिशा तय करने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में ये सम्मेलन महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भिंड जिले के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की चौथी विनिर्माण इकाई का शुभारंभ किया। 450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित इस इकाई से 2000 से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों के युवाओं की भागीदारी रहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल पवित्र नगरी ओंकारेश्वर स्थित एकात्म धाम में भव्य पंचायतन मंदिर के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। यह कार्यक्रम सुबह 6 मानधाता पर्वत पर आयोजित होगा, जिसमें देश भर के पूज्य संत धर्माचार्य और विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। रक्षाबंधन, बलराम जयंती और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्कूल, उच्च शिक्षा, संस्कृति, कृषि विकास और अन्य विभागों सहित कमिश्नर और कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। और मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के भिंड, दतिया, राजगढ़, ग्वालियर, रीवा, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, शाम के 6 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय मार्कंडेय, ममता मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता की कोई उम्र नहीं होती, ना ही सीमा होती है, बस जहाँ मन और विचार मिले वहाँ हो जाती है।
3: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
3: और अगला संदेश हमें मिला है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। टेलीविजन की कहानी सुनने की बहुत ही अभिलाषा थी, ये अभिलाषा उमंग कार्यक्रम ने पूरी कर दी है। टेलीविजन की कहानी नाटक के रूप में उमंग कार्यक्रम में सुनकर बहुत ही खुशी प्राप्त हुई। उमंग कार्यक्रम की समस्त टीम बधाई का पात्र है, बहुत बहुत बधाई।
3: और अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। श्रृंखला ये भी जानिए में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है।
3: श्रोताओ, क्या आपने कभी ऐसी रात की कल्पना की है जब आसमान में तारे गिने ना जा सकें, जब आकाश गंगा किसी दूधिया नदी की तरह स्तर के ऊपर बहती हुई दिखाई दे और जब ऐसा लगे मानो धरती और आकाश के बीच की दूरी ही समाप्त हो गई हो। विमलेश जी, क्या ऐसी जगह है भी?
2: जी अजीत जी, सच्चाई तो ये है कि महानगरों की भागम भाग और व्यस्त जीवन में शायद हमने आकाश की ओर देखना ही छोड़ दिया है या भूल गए हैं, और यदि आकाश को देखना भी चाहें तो प्रदूषण के कारण धूल और धुआं छोड़कर कुछ और दिखाई ही नहीं देता।
3: तो इसीलिए उमंग कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आप सभी श्रोताओं को लेकर चल रहे हैं भारत के एक ऐसे अनोखे गांव में जहां दिन में हिमालय की विराट मनमोहक सुंदरता मन मोह लेती है, रात होते ही पूरा आकाश मानो चमकते हुए तारों से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो आकाश में हीरे ही हीरे जड़े हों।
2: जी, इस अद्भुत स्थान का नाम है हनले, जो लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। लोग कहते हैं यदि रात में आकाश की सुंदरता के दर्शन करने हो तो हनले गांव से बेहतर कोई और स्थान हो ही नहीं सकता।
3: जी हाँ श्रोताओ, हनले एक छोटा सा गाँव है
2: जी।
3: लेकिन इसकी पहचान पूरी दुनिया में है। यहाँ ना शोर है, ना ऊंची ऊंची इमारतें और न शहरों जैसा प्रकाश प्रदूषण। यही कारण है कि रात का आकाश यहाँ इतना स्वच्छ दिखाई पड़ता है कि

0: हजारों लाखों तारे एक साथ चमकते हुए नजर आते हैं।
1: जी।
0: आकाश गंगा भी इतनी स्पष्ट दिखाई देती है कि लगता है मानो किसी चित्रकार ने नीले कैनवस पर दूध की एक चमकती धारा उकेर दी हो।
1: इसी अद्भुत प्राकृतिक वातावरण के कारण हनले गांव को सरकार द्वारा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया है। इसका उद्देश्य केवल पर्यटन बढ़ाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रात के प्राकृतिक आकाश को सुरक्षित रखना भी है।
0: लेकिन एक बात समझ में नहीं आई विमलेश जी कि डार्क स्काई क्यों कहा जाता है? मेरा मतलब डार्क स्काई रिजर्व का क्या मतलब है?
1: अजी जी, ये बहुत ही वैज्ञानिक और रोचक प्रश्न है। यदि हम अपने महानगरों को देखें या गांवों को भी देखें तो आकाश में प्रकाश प्रदूषण बहुत अधिक है, यानी शहरों और गांवों में बिजली की कृत्रिम रोशनी का अंश आकाश में जरूर होता है। करोड़ों बल्ब जल रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, शहर रोशनी से चकाचौंध हैं। इसीलिए हमारे ऊपर जो आकाश है वो प्राकृतिक रूप से अब डार्क नहीं रहा।
0: जी हाँ, आपने बहुत सही बताया। लद्दाख की पहाड़ियाँ, विशेषकर हनले गांव के आसपास का आकाश इतना स्वच्छ और कृत्रिम रोशनी से वंचित है कि वो डार्क है।
1: जी।
0: लाखों करोड़ों तारे, आकाशगंगा और बहुत ही खगोलीय घटनाएं, ग्रहों की गति इत्यादि नंगी आंखों से भी स्पष्ट दिखाई देती हैं।
1: और अजीत जी, यही कारण है कि हनले में स्थित है भारतीय खगोलीय वेधशाला, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रमुख वेधशालाओं में से एक है। यहाँ विशाल दूरबीनों की सहायता से वैज्ञानिक ग्रहों, तारों, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों का अध्ययन करते हैं।
0: जी हाँ, कितना रोचक और प्रेरणादायक है ये जानना कि जब देश के अधिकांश लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं तब हनले की पहाड़ियों पर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के नए रहस्यों की खोज में जुटे रहते हैं।
1: जी अजीत जी, एक बात और साझा करना चाहती हूँ। हनले केवल विज्ञान का केंद्र ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति का भी घर है। यहाँ स्थित लगभग 400 वर्ष पुराना हनले मठ बौद्ध संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
0: जी, आपने बिल्कुल सही बताया। पहाड़ की चोटी पर स्थित ये मठ लगता है दूर से ही यात्रियों का स्वागत कर रहा है। यहाँ की प्रार्थनाएं, रंग बिरंगे प्रार्थना ध्वज और शांत वातावरण मन को गहरे सुकून से भर देते हैं।
1: श्रोताओं, जैसा कि हमने बताया, हनले का प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्भुत है। दूर दूर तक फैले भूरे शुष्क पहाड़, नीला आकाश, ठंडी हवाएं और विशाल मैदान इस स्थान को किसी दूसरी नई दुनिया जैसा बना देते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओं, यदि जीव जगत की बात करें तो आसपास के क्षेत्र में तिब्बती जंगली गधे, हिमालयी मामोर, याक और अनेक दुर्लभ पक्षी भी देखे जा सकते हैं।
1: जी,
0: इसीलिए तो इस जगह को प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों का स्वर्ग कहा जाता है।
1: बता दें, यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। लेह से लगभग 260 किलोमीटर की यात्रा ऊंचे पहाड़ों और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरती है, लेकिन जो यात्री इस कठिन सफर को पूरा करते हैं वे कहते हैं, हनले पहुंचने के बाद हमें लगता है कि हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। क्यों जी जी, अब समापन किया जाए?
0: जी हाँ बिल्कुल। एक बात लेकिन जरूर कहना चाहूंगा कि शहरों की भागदौड़ में हम अक्सर ऊपर देखना भूल जाते हैं।
1: जी,
0: हम चमकती रोशनियों के बीच में रहते हैं लेकिन असली चमक तो उस आकाश में है जिसे हमारे पूर्वज हर रात निहारा करते थे।
1: जी।
0: हनले हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की सबसे सुंदर कलाकृति हमारे सिर के ठीक ऊपर फैली हुई है, बस उसे देखने के लिए थोड़ी शांति, थोड़ा अंधेरा और थोड़ा समय चाहिए।
1: श्रोताओ, अगली बार जब आप भारत के किसी अनोखे स्थान की यात्रा की योजना बनाएं तो हनले को अवश्य याद रखें। शायद वहां पहुंचकर आपको केवल तारों का संसार ही नहीं बल्कि अपने मन के भीतर की शांति भी मिल जाए।
0: तो इसी सुंदर विचार के साथ आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। लेकिन सबसे पहले आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
1: और यदि आपको एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए। पहली वेबसाइट है एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ और दूसरी है एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आप इन विकल्पों पर जाकर अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम अरावली की कहानी।
1: एनसीईआरटी की कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी देता है। और बताता है कि उत्तर भारत को मरुभूमि बनने से बचाने में इसकी कितनी अहम भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें।
5: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
5: आह, क्या बात है
6: मैम।
5: हाँ बेटी,
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
5: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
5: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहां कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियां होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
6: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
5: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
5: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
5: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
5: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
3: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
4: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
5: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
7: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
5: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
3: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
5: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
4: जी मैम,
6: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
2: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
5: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
7: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
5: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
3: सॉइल सोइल एरोजन।
5: बिल्कुल ठीक, अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो राजस्थान में ही हैं।
2: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है।
5: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बच्चों जानना चाहोगे ना?
3: हाँ, जी मैम।
6: यस मैम।
5: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
6: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
5: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है, अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
7: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
5: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं, बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
2: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
5: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
2: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
5: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
2: ओह,
5: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
3: जी मैम।
2: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
3: बहुत अच्छी लगी।
2: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। तो डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
3: धन्यवाद सर।
6: धन्यवाद मैम।
0: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
2: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
0: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो श्रोताओं, अभी हमने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा दीक्षा।
1: आइए सुनते हैं एक और कहानी। शीर्षक है सुखो माजरी गांव की कहानी।
2: नव भारत वयस्क साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा बताया गया है कि कैसे सुखो माजरी गांव के लोगों ने वहां की बंजर भूमि को हरा भरा बना दिया और सूखे की समस्या से छुटकारा पाया।
1: एक गांव था सुखो माजरी, जो काफी हरा भरा था। चारों तरफ पेड़ पौधे और प्रकृति की सुंदरता थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके आसपास के जंगल धीरे धीरे काट दिए गए। गांव वालों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जंगल कटने के कारण यहां जल स्तर घटने लगा। कुओं और तालाबों का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा और नदियों का पानी मटमैला हो गया। गांव में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई और लोग पानी की कमी से जूझने लगे।
3: माँ, पानी दोना बहुत प्यास लगी है।
4: बेटा, घर में पीने के लिए पानी नहीं है। अपने बाबू को बोलो ना, कहीं से पीने का पानी ले आए। अजी, सुनते हो?
5: हाँ, बोलो, क्या हुआ?
4: घर में एक बूंद पानी नहीं है, ना तो खाना पकाने के लिए है और ना ही पीने के लिए।
5: अच्छा ठीक है, करता हूँ मैं कुछ, लाता हूँ।
1: गांव वाले पानी के लिए परेशान थे, किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। परंतु सन 1970 में कुछ ऐसा हुआ कि सुखो माजरी गांव पूरा बदल गया। लेकिन वो कैसे, आइए जानते हैं। हुआ ऐसा कि गांव के ही एक व्यक्ति झुनुआ को एक उपाय सूझा। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा,
5: गांव वालों, अगर आप सभी अपने इस खूबसूरत गांव को बचाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो।
6: जी हाँ।
5: हम सभी गांव वालों पर जल और जंगल की मुसीबत आई है, इसका हमें डटकर मुकाबला करना होगा। सभी को मिलजुल कर काम करना होगा।
7: हाँ हाँ, आप उपाय तो बताइए।
6: हाँ, उपाय बताइए।
5: तो सुनिए, सबसे पहले हम सबको एक ग्राम सभा बनानी होगी।
8: ग्राम सभा?
7: ठीक है।
8: हाँ, ठीक है।
5: समझे? और हर किसी को अपना पूरा योगदान देना होगा।
6: हाँ, हम तैयार हैं। ठीक है।
5: बच्चों, तुम्हें जगह जगह पौधे लगाने हैं।
9: जी हम लगाएंगे, जरूर लगाएंगे।
10: और अपने गांव को हरा भरा बनाएंगे।
5: तो तय रहा कि बच्चे पौधे लगाएंगे और रामू, तुम अपने साथ मीना, बिरजू और भोला को ले लो और बारिश का पानी जमा करने का प्रबंध करो।
11: वो कैसे?
12: क्या गड्ढा बनाना है?
13: तालाब नदी में तो पानी गिरता ही है और इकट्ठा भी हो जाता है।
7: फिर इसकी क्या जरूरत है?
11: हाँ हाँ, मीना और भोला ने बिल्कुल ठीक कहा।
5: वो तो ठीक है, लेकिन हमें पानी इकट्ठा करने के नए तरीके अपनाने होंगे।
7: नया तरीका? कौन सा तरीका? बताओ।
13: हमें भी बताओ।
5: हमें एक बड़ा सा सिंचाई का टैंक बनाना होगा।
7: सिंचाई टैंक?
5: ताकि हम पानी वहाँ इकट्ठा कर सकें। उसके चारों तरफ पेड़ पौधे भी लगाने होंगे ताकि हरियाली बढ़े। इससे पानी की कमी काफी हद तक दूर हो सकेगी।
12: अच्छा, सुझाव तो बड़ा अच्छा है।
1: तो साथियों, सुखो माजरी गांव में ग्राम सभा बनाई गई और सबने मिलजुल कर जल और जंगल की समस्या से निपटने के लिए काम करना शुरू किया और सभी गांव वाले अपने अपने काम में लग गए। सभी ने खूब मेहनत की, मिलजुल कर काम किया, गड्ढा खोदकर सिंचाई टैंक बनाया, गांव में जगह जगह पेड़ पौधे लगाए गए। सभी गांव वालों की मेहनत और कड़े परिश्रम से सुखो माजरी गांव अब फिर से हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखने लगी। जल स्तर में भी सुधार हुआ और पेड़ों के लगने से वर्षा भी खूब होने लगी। कुओं और तालाबों में भी पानी रहने लगा। कुछ ही समय में सुखो माजरी गांव हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। तो दोस्तों, जो सुखो माजरी गांव में हुआ वह किसी भी गांव में हो सकता है। आप भी पेड़ पौधे लगाएं, पानी जमा करने के उपाय सोचें और पर्यावरण संरक्षण के बारे में अपने आसपास के लोगों से चर्चा करें। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुखो माजरी गांव की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर उषा शर्मा, तकनीकी समन्वय बटीलैन लिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, परामर्श अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओ, कैसे लगे आपको हमारे आज के कार्यक्रम और हमारी आज की जानकारी, जरूर लिखिएगा। तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम
1: चेतना,
0: जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

जी आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, शाम के 6:30 हुए हैं। एक बार फिर हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत लेकर। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फना फिल्म का गीत सोनू निगम, सुनिधि चौहान, आमिर और काजोल की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है प्रसून जोशी ने और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

सोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

नितिन मुकेश, अलका याग्निक, शब्बीर कुमार और साथियों की आवाज़ में आइए सुनते हैं जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत से सजाया है और फिल्म का नाम है तेजाब।

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं नुसरत बद्र का लिखा हुआ गीत। तर्ज बनाई है स्माइल दरबार ने। फिल्म का नाम है देवदास और खूबसूरत आवाज़ श्रेया घोषाल की।

1942 अ लव स्टोरी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज़ में। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार आर डी बर्मन।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: अरे क्या बात है, आज तो तुम बड़ो ही नोनो गीत गा रही हो। और जो तो वही गीत है जाके हम फरमाइश की चिट्ठी लिख कर भेजा था और हमारी पसंद को लोक गीत हमारी जिज्जी हमें लोक माधुरी में सुनवा देती।
3: हाँ खूब ही सही चीज ना तुमने, जो वही लोक गीत है। और आज हम जी को जासे गा रहे कि आज हमारा मन बहुत ही उल्लास में है।
2: काय ऐसो का होगा जिज्जी?
3: अपना जो पसंदीदा कार्यक्रम लोक माधुरी को हम सभी सुन सकते हैं हर सोमवार शाम 7:21 से 8 बजे के बीच।
2: जिज्जी जाके लाने अपने को चिट्ठी कैसे भेजनी होगी?
3: अरे चिट्ठी बिट्टी छोड़ो, अब हम हो गए डिजिटल, सो अब हम लिख के भेजेंगे अपनी फरमाइश व्हाट्सएप पे।
2: तो जीजी जाको व्हाट्सएप नंबर का है?
3: डायरी तनक खोलो और जल्दी से लिख लो 9425702768। तो याद भाओ कि नहीं, तनक बताओ तो जल्दी से
2: 9425702768।
3: तो आप अपनी पसंद को लोकगीत के बोल और कलाकार को नाम हमें जा नंबर पे व्हाट्सएप करो, को आपकी पसंद को लोकगीत लोक माधुरी कार्यक्रम में जरूर ही सुनवाए।
2: तो सुनना न भूलें हर सोमवार शाम को 7:21 से 8 बजे के बीच लोक माधुरी।
4: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
5: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
4: छीन सकती है खुशियाँ हमारी, इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
5: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
4: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
5: और उसको पिएं छान कर उबाल कर,
4: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
5: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
6: पानी रे पानी,
4: आओ मिलकर करें प्रयास,
5: शुद्ध पानी हो सबके पास।
7: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।

0: नेपाल तिब्बत सीमा के पास रसुआ क्षेत्र में आज सुबह भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 384 पर्यटक लापता हैं। इनमें 105 भारतीय शामिल हैं। लापता लोगों में 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक हैं। इनमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड के नागरिक भी शामिल हैं। ये शुरुआती आंकड़े हैं और अभी इनका सत्यापन किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। बाढ़ के कारण अब तक 22 लोगों के मारे जाने की खबर है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इसमें पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लोग हेल्पलाइन नंबर 9779851316807 और 9779701075000 पर संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने बताया कि वह बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस कठिन समय में भारत के लोगों की संवेदनाएं नेपाल के लोगों के साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने से बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गंडक नदी से लगे 6 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिला अधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा और वैशाली के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। गंडक नदी में पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम गोपालगंज और बेतिया में तैनात की गई है। साथ ही एक अन्य टीम को मुजफ्फरपुर में तैयार रखा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
1: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को तैनात किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंप दिए। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि यह महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय चिकित्सा संघ ने इन्फ्लुएंजा H1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। संघ ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त बना ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले हमारी आज की सांध्यकालीन सभा के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही पलों में 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें होगी भेंटवार्ता। विषय रहेगा कृषि यंत्रीकरण में उपयोगी कस्टम हायरिंग सेंटर। जानकारी देंगे डॉक्टर रमाकांत तिवारी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। रात्रि 8:00 कार्यक्रम सुर्खियों में फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं 8:15 पर। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम रात्रि 9:30 पर हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सआदत हसन मिंटो का लिखा नाटक जेब कतरा हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10:00। प्रस्तुत करता होंगे राकेश ढांडियाल। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनेगा श्रुति अधिकारी का संतूर वादन, राग ग्रह का बसंत मुखारी। समय रात्रि 10:30। और अब बारी है कल के कार्यक्रमों की। आकाशवाणी भोपाल से 7:20 पर प्रस्तुत करेंगे दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, वतन का राग। ये प्रायोजित कार्यक्रम होगा 8:30 पर। 9:02 पर सुनेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 9:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे अंजनी चटर्जी की गाये चंद भजन। कामिनी ये नाटक आप सुनेगा 9:30 पर। लेखक होंगे हाशिम सादिक और प्रस्तुतकर्ता चितेंद्र स्वरूप राजन। जिले की चिट्ठी का प्रसारण होगा हर रोज की तरह 10:00। 10:05 पर पेश करेंगे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में 11:00 सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दिन में 12:00, 2:30 पर और रात्रि 10:00। संग्रहालय से इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनिएगा धारावाहिक जमुनिया का नवा भाग। समय 12:30। दिन में 1:00 होगा महिला कार्यक्रम। 1:30 पर सुनेगा लोक संगीत का कार्यक्रम। 1:45 पर पेश करेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम और शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति होंगे। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं शाम 5:33 पर, 6:30 पर, रात्रि 8:15 पर और 9:30 पर। शाम 6:00 होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। शाम 7:30 पर प्रसारित करेंगे कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें आप सुनेंगे OB आधारित कार्यक्रम उद्यानिकी फसलों में किसानों एवं शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार के अवसर। प्रतिभागी होंगे श्री राजकुमार सगर, श्री LC भागोरिया और श्याम सिंह कुशवाहा। रात्रि 8:00 कार्यक्रम सुर्खियों में और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनेगा विदुषी गंगूबाई हंगल का ख्याल गायन, राग होगा शुद्ध कल्याण। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाश

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भिंड जिले के औद्योगिक क्षेत्र में एक विनिर्माण इकाई का शुभारंभ किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव से देश और राजनीतिक दलों का चुनाव खर्च बचेगा। और मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों के युवाओं की भागीदारी रहेगी। ये संवाद खेल, युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का एक बड़ा अवसर मिलेगा। ये संवाद खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा सहित 5 विषयों पर केंद्रित होगा। खेलो इंडिया संवाद का उद्देश्य युवाओं को देश की खेल यात्रा से जोड़ना, उनकी आकांक्षाओं को साझा करना और एक सशक्त युवा नेतृत्व वाले विकसित भारत के लिए विचार प्रस्तुत करना है। इस अवसर पर कल इंदौर में भी खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भिंड जिले के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की विनिर्माण इकाई का शुभारंभ किया। 450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित इस इकाई से 2000 से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 महीने से भी कम समय में मध्यप्रदेश में तीसरी बड़ी औद्योगिक इकाई की स्थापना हुई है। पहले गुना और शिवपुरी और अब मालनपुर में एशिया की सबसे बड़ी साबुन फैक्ट्री का शुभारंभ हुआ है।
3: कि 2 महीने से भी कम समय में हमारे ये तीसरा यूनिट है, गुना सीमेंट प्लांट 1500 करोड़ का, फिर हमारा दूसरा प्लांट शिवपुरी में लगभग 3500 करोड़ का, जो रक्षा उत्पाद से जुड़ा हुआ था। आज की जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री में भी पूरे एशिया की सबसे बड़ी साबुन फैक्ट्री। इस उत्पादन की अगर बात करें तो प्रति मिनट 4000 साबुन की टिकियां यहाँ बनाई जाएगी।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल पवित्र नगरी ओंकारेश्वर स्थित एकात्म धाम में भव्य पंचायतन मंदिर के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। ये कार्यक्रम सुबह 6 बजे मानधाता पर्वत पर आयोजित होगा, जिसमें देशभर के पूज्य संत, धर्माचार्य और विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। यहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और संत समाज तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा 45 पवित्र शिलाओं का पूजन कर मंदिर निर्माण का शुभारंभ किया जाएगा। पंचायतन मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित समन्वयवादी परंपरा को साकार करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। मंदिर के केंद्र में भगवान शिव का मुख्य देवालय होगा, जबकि चारों दिशाओं में भगवान विष्णु, भगवान सूर्य, भगवान गणेश और भगवती शक्ति के उप देवालय स्थापित किए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि मध्यप्रदेश की विद्युत कंपनियों में दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर संविदा पदों पर दी गई नियुक्तियों को नियमित करने की कार्यवाही की गई है। इस प्रक्रिया के तहत मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने 43 अनुकंपा संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति प्रदान की है। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
2: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में आयोजित कृषि विश्वविद्यालयों के 36वें वार्षिक सम्मेलन में आज कहा कि हम गांवों को खेती के हिसाब से इनोवेशन का सेंटर बना सकते हैं।
5: अब अगर हम 100 की सीमा में आ जाते तो हमारे आनंद का ठिकाना नहीं रहता। ये हमको कोशिश करनी पड़ेगी, हमारे यूनिवर्सिटी स्टेट की हो, सेंट्रल हो, हमारे संस्थान कैसे दुनिया में सम्मान के साथ अपना स्थान बनाए। रैंकिंग ग्रेडिंग हम दुनिया के हिसाब से भी करें, लेकिन विद इन जो हमारी यूनिवर्सिटी है 86, उनमें से सबसे अच्छी कौन, नंबर वन कौन, नंबर टू कौन, नंबर थ्री कौन, कुछ पैरामीटर्स बना के हमको रैंकिंग करनी चाहिए और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए कि आगे कौन निकलता है।
2: वहीं एक राष्ट्र एक चुनाव पर प्रेस से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे देश और राजनीतिक दलों का चुनावी खर्च बचेगा, साथ ही आचार संहिता के कारण विकास कार्यों में आने वाली रुकावटें भी कम होंगी।
6: मैं यही प्रार्थना करूंगा अंत में कि एक राष्ट्र एक चुनाव, इसका हम संकल्प है, इसके लिए प्रचार करें, जनमानस बनाएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे और वातावरण ऐसा बन जाएगा कि कोई राजनीतिक दल इसका विरोध करने का साहस ना कर पाए।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास के रेलवे अंडरपास में जलभराव के कारण बैरिकेड्स हटाकर स्कूल वैन निकालने और विद्यार्थियों की जान जोखिम में डालने की घटना को अत्यंत गंभीरता के साथ लिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के मद्देनजर जिला और पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लापरवाह मैजिक चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, साथ ही स्कूल संचालक के विरुद्ध भी वैधानिक प्रकरण दर्ज किया गया है। रक्षाबंधन, बलराम जयंती और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्कूल, उच्च शिक्षा, संस्कृति, कृषि विकास और अन्य विभागों सहित कमिश्नर और कलेक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र अनुसार रक्षाबंधन पर्व 28 अगस्त को छात्रों के लिए स्कूलों में प्रकृति की रक्षा के लिए कहानी तथा पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जबकि बलराम जयंती 2 सितंबर के अवसर पर बलराम कृषि महोत्सव के तहत कृषि संबंधित पारंपरिक कला रूपों की विशेष प्रस्तुतियों के साथ साथ आधुनिक कृषि उपकरण एवं बीज और प्राकृतिक खेती केंद्रित प्रदर्शनी तथा सहसंवाद जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसी क्रम में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर को प्रदेश भर में भव्य स्तर पर मनाई जाएगी और इस अवसर पर प्रत्येक जिले में कृष्ण मंदिरों, मठों और देवालयों का विशेष श्रृंगार, सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान और मठ की सज्जा प्रतियोगिता जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। नई फसल और प्रकृति के प्रति आभार का पर्व ओणम आज उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह भारत की समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओणम के अवसर पर देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन्नबी आज प्रदेश में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए गए। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में अगले 2 दिन भोपाल, उज्जैन, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग में तेज बारिश का दौर रहने की संभावना है। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के भिंड, दतिया, राजगढ़, ग्वालियर, रीवा, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम, सागर और रीवा संभागों के जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में आयोजित बैठक में रीवा शहर की बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवी ने आज जिला जेल में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। आगरमालवा जिला जेल में रक्षाबंधन पर्व पर बंदियों की बहनों को राखी बांधने के लिए प्रत्यक्ष मुलाकात की विशेष सुविधा रहेगी। मंडला जिले के ग्राम चाबी में स्व सहायता समूह की बैठक में महिलाओं को वित्तीय साक्षरता और साइबर सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी गई। और त्योहारों के मद्देनजर नर्मदापुरम जिले में दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग का अभियान निरंतर जारी है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। अभी इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हम मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैया बहन का विवेक भैया की दो ही हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार पहुँचे। भैया रो देखो कात नहीं है, आँखें जो हैं इनसे कोनो कीमती रत्न नहीं है और इनसे बड़ो कोनो दान भी नहीं है। वैसे तो भैया हम तो जो ही कहें कि सब खूब लंबी जिंदगी जिए, खूब जीवन में मस्त रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन अपने बाद अगर अपनी आँखों से कोनो दूसरे दृष्टिहीन व्यक्ति का भैया रोशनी मिलत है, दुनिया देखवे के लाने मिलत है, तो इसे बड़ो कोनो दान नहीं हो सकत है। और अपने देश में 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा भैया मनाया जाता है, ताकि अपन ये सब भैया बहन का ये बात के लाने जागरूक करे जा सके कि अगर अपन नेत्रदान करते हैं तो देखो भैया अपनी जी आँखें अपने ना होवे के बाद भी अमर हो जाती हैं और दूसरे भी भैया बहन जिनने की दुनिया को नहीं देख पाओ है वे दुनिया का देखते हैं। तो भैया अपन का बिल्कुल जवाब ठान लेने हैं कि अपनी आँखें जो भैया बहन ने दान कर सकें वे ई के लाने आगे आए। और संकल्प ने भैया कि अपनी आँखों से दूसरे भैया बहन का रोशनी मिले और भी दुनिया का देखवें। और संगे संगे भैया अपन एक बात और करें कि देखो मौसम जौन है वो तो भैया बस कार्य को है, तनक भी अगर अपन चूक गए हैं, तनक भी अगर अपन ने ध्यान नहीं रखे तो भैया फिर रोग रहा है। तो ई मौसम में ऐसे होते हैं कदम नहीं है जी, देखो भैया सर्दी है, जुकाम है, बुखार हो रहा, तो भैया अपन खां बिल्कुल ध्यान रखना है कि मौसम के हिसाब से अपना रहन सहन और खान पान रखना है। ऐसा नहीं भैया कि पानी बरस रहा है अपन बिना छाता के निकल भगे। अरे जब घर से निकले तो भैया छाता लेके चलें, अपनी मतलब ऐसी भैया अपन को जो नहीं कि अपन गीले कपड़ा पहने फिर रहे हैं, उसे तो भैया और तमाम तरह के रोग राय हो जाते हैं। ई मौसम में खुजली हो वो देखा था अपन, अगर तनक अपन ने ध्यान नहीं रखे तो खुजली भई, सर्दी भई, जुखाम भई। और संगे संगे खान पान ज़्यादा तेल मिर्चा इसे बनी चीज़ें भैया नहीं खाने हैं, क्योंकि जो शरीर की पाचन शक्ति है वह कमज़ोर हो जाते हैं। और कहते नहीं है कि भैया अगर पाचन शक्ति ठीक नहीं है और पेट सही नहीं है तो पेट और दिमाग भैया 100 होते, अगर पेट सही नहीं है तो फिर इंसान को समझ लो जो दिमाग है भैया। कहते नहीं है कि मूड ठीक नहीं है वो भैया ठीक नहीं रहते, तो अपने पेट सही रखने हैं, अपने बिल्कुल स्वस्थ विचार रखने हैं और शरीर को भैया स्वस्थ रखने हैं। कहते भी हैं कि देखो पहला सुख जौन है दुनिया में वो का है, निरोगी काया। अगर काया निरोग है, अपन स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं, तो समझो जीवन में मस्त हैं। तो सबसे पहलो काम अपना स्वास्थ्य और ऊ के लाने ध्यान रखना है कि अपन का जितना हो सके अपने ई शरीर से काम लेने हैं, इसे मेहनत कराने का तो नहीं है कि जितना अपन ई शरीर से काम ले हैं जो शरीर भैया अपना उतना स्वस्थ रहते हैं। और अगर अपन ने ये आलसी बना दो तो एक तो अपने काम भैया देर से होते हैं और संगे संगे का है जो शरीर भी अपन का तकलीफ देने लगे थे। तो व्यायाम अपन का जरूर करने हैं, कम से कम रोज 30 मिनट को तो भैया अपन को नियम बना लेने हैं कि अपन का पैदल चलने ही चलने हैं, जितना हो सके भैया उतनी अपन का साइकिल से चलने हैं, या जितने पैदल जाए से काम हो सके उतने पैदल जाएं अपन। जहाँ अपन का लगाते कि भैया अपन का गाड़ी की आवश्यकता है उतने अपन जा सकते हैं, लेकिन जितने अपन को लग रहा हो कि पैदल जाए से काम हो सकत तो एक दूसरे शरीर स्वस्थ है और संगे संगे पैसा रुपया की बचत होते हो भैया। पर्यावरण को प्रदूषण जौन है वो तो देखो भैया, तमाम अपन जो देख नहीं रहे शहरन में भैया देखो तो अपन जात हैं कैसी घबराहट सी कई बार होने लगत है, हैं काहे काहे को प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। जो गाड़ी हैं अब हर आदमी भैया जो चाहत के बस तत्काल पहुंच जावे, ठीक है भैया अपन को तत्काल पहुंचने हैं, जितने ज़रूरी होते तो पहुंचने हैं, लेकिन जितने अपन जानते हैं कि थोड़ा सा समय लग सकत है तो उतने भैया अपन आराम से पैदल जाएँ हैं। और अब ऐसे है भैया कि बदकाव तो देखो अपना होती रहना है, कार्यक्रम की अपन शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत अपन करते हैं चंद्रभूषण पाठक भैया के गाए ई लोकगीत से।

तो भैया रो, अब अपन ने सुने चंद्रभूषण पाठक से जन्मदहियो विधाता बुंदेलखंड में, और बिल्कुल साँची बात है भैया, अपनी धरती अपनी जन्मभूमि की अच्छी लगत भैया, और उससे जुड़ी जो यादें होती हैं वे तो बस कौन भी रहे इंसान दुनिया में, लेकिन वे यादें भैया कभी मिटती नहीं है। और वे भी यादें कहाँ की हैं, बुंदेलखंड की, एक एक जांगा की, कितनी नौनी बातें बताई उनने। और भैया देखो, आज एक और बड़ी नौनी बात है, आज है मिलाद उल नबी, है ना। अपन को पता है कि दुनिया भर के संगे संगे अपने भी देश में आज ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार मनाया जा रहा है, जो अपने इस्लाम धर्म को मानने वाले भैया बहन रहे हैं उनके लाने आज बेहद ख़ास और गौरवशाली दिन है। उनके पैगंबर हजरत इस्लाम हज़रत मोहम्मद के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं भैया, और जन्मदिन को भी हो गए हैं, जब अपने घर में इतनी हालफुल होते हो भैया, आज जन्मदिन तो उनके पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब को है, तो बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है भैया, और बड़ा श्रद्धा और सम्मान के साथ आज का दिन मनाया जाता है भैया। ये नबी दिवस, मौलिद मोहम्मद का जन्मदिन या पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के रूप में भी जाना जाता है, और आज के दिन बड़े हालफुल से अपने जो मुस्लिम भाई बहन रहे हैं वे लोग पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म और उनकी शिक्षाओं को याद करते हैं, उन पर चर्चा करते हैं, जश्न मनाते हैं, प्रार्थना सभाएं चलती हैं, पदयात्रा और जुलूस निकाले जाते हैं, और मोहम्मद साहब के जी

0: अभी है।
1: mmsky.mp.gov.in पर जाएं, सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
4: और भैया यारो, देखो आज है बुधवार को दिन, और आज के दिन अपन सुने थे आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से फ़ोन पे मौसम की जानकारी एवं कृषि सामायिक सलाहें। तो अपन सुना और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर हरवेन सिंह।
5: ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से डॉक्टर हरविंद सिंह का सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, हमेशा की तरह मैं सबसे पहले आपको मौसम के बारे में जानकारी दूंगा, साथ ही संभावित मौसम में कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। तो किसान भाई, सबसे पहले आप पिछले सप्ताह के मौसम के बारे में जानिए। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना स्थित मौसम बेताला की गणना के आधार पर पिछले सप्ताह में मुख्यतः मध्यम से घने बादल रहे तथा हवा लगभग 5.9 से 6.9 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण दिशा से बही तथा अधिकतम तापमान 30 से 32 और न्यूनतम तापमान 26 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है, एवं अपेक्षित आर्द्रता सुबह 78 से 89 और शाम को 61 से 72% के बीच दर्ज की गई। आगामी 5 दिन का मौसम पूर्वानुमानित इस प्रकार से है। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना को मध्यमकालिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र भोपाल से प्राप्त जानकारी के आधार पर आगामी 5 दिनों में घने बादल रहेंगे तथा वर्षा होने का अनुमान है तथा हवा लगभग 10 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम दक्षिण व पश्चिम उत्तर दिशा से बहने की संभावना है तथा अधिकतम तापमान 30.7 से 31.4 और न्यूनतम तापमान 25.7 से 26.1 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहने की संभावना है। अपेक्षित आर्द्रता सुबह 91 शाम को 78 से 80% के बीच रहने का भी अनुमान है। किसान भाइयों, संभावित मौसम को देखते हुए जो आपको कृषि कार्य करने की सलाह दी जाती है इस प्रकार से है। किसान भाई, संभावित मौसम में लगभग वर्षा रोजाना होने की संभावना आगामी 5 दिन तक, लेकिन हल्की फुल्की वर्षा और स्क्रैट यानी कहीं कहीं होने की संभावना है। तो इस तरह के मौसम को देखते हुए, संभावित मौसम को देखते हुए, वर्षा के अनुमान को देखते हुए, एक तरह फसलों और सब्जियों में खरपतवार नियंत्रण और नेत्रहीन की मात्रा को मौसम जब साफ आपको दिखे तभी तभी दें। फसलों की बात करें तो ओल्ड मूंग की बात करें तो ओल्ड मूंग इस समय इनिशियल फ्लॉडिंग यानी फूल लगने की अवस्था में है, फूल स्टार्ट हो गया है और उस समय पक्की धब्बारोपी संभावना हो सकती है। शपथ निगरानी देते हैं और दिखाई देने पर मैन को जब 1 किलोग्राम दबा पर कहकर 500 से 600 पानी घोल बनाकर जैसे ही आपको मौसम साफ दिखे कि 2-4 घंटे यानी 8-9 घंटे साफ रह सकता है, यदि संभावना दिखे तब उसका छिड़काव है। काफी किसान भाई, तिल की बात करें तो संभावित मौसम में तिल में पत्ती धब्बा और काली जंजीरों की संभावना हो सकती है, तो दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु मैन को जब 1 किलोग्राम दबा पर कहकर 500 से 600 पानी घोल बनाकर मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। साथ ही साथ अरहर की बात करें तो अरहर इस समय वृद्धि अवस्था में है तो अरहर में खरपतवार नियंत्रण ऋतु खरपतवार नाशी वजह खाएपर इमेजा मास्क 70 ग्राम दवा 500 लीटर पानी में घोल बनाकर 20 से 25 दिन की अवस्था पर मौसम साफ होने पर इसका छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई, धान की बात करें तो संभावित मौसम में धान अभी इस समय वृद्धि अवस्था में है यानी तल्ले निकलने की अवस्था में है और इस समय उसकी नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता है, तो आप जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको धान में जब पानी कम मात्रा में भरा हो उस समय आप नाइट्रोजन की मात्रा को दें। साथ ही किसान भाई, सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन की फसल में इस समय चक्रवर्ती

0: प्रेमी जो प्रतीक की संभावना हो सकती है क्योंकि इस समय ये फलन अवस्था में हम फूल आने की अवस्था में है और सर दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु प्राइय 500 ml दवा 500 ml पानी गुनगुनाकर प्रति एक्टर मौसम साफ होने पर इसका छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई सब्जियों की बात करें तो इस समय जो आपने नव रोपण सब्जियां लगाई है तो उनमें जैसे ही आपको मौका मिले आपका जो फील है तंगी कर बता आने पर उसका निराई आने का कार्य करें साथ ही उसमें उनकी मात्रा को भी दें और साथ ही उसमें जो भी आपकी बीमारी दिखाई दे रही है उसका उपचार करें। साथ ही किसान भिंडी की बात करें तो इसमें फलन अवस्था में है तो इस समय भिंडी में कई जल चीज की संभावना हो सकती है अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु गाय में गाय 750 ml दवा पानी में घोल बनाकर 10 दिन के अंतराल से 2-3 छिड़काव करें। साथ ही किसान भाइयों मिर्च और टमाटर की बात करें तो इसमें चूड़ा मुर्गा रोग की संभावना हो सकती है दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु कायम राज्य 25 WG 100 ग्राम दवा 500 ml पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टर छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई संभावित मौसम को देखते हुए जो आपके नवरोपित फल वृक्ष है उनमें जल निकास की व्यवस्था रखें और जो आपने पहले पौधे लगाए हुए हैं अगर उनमें का पौधा कहीं से नष्ट हो गया हो तो उसकी जगह नए पौधे लगाने के लिए मौसम अनुकूल है। साथ ही किसानों पशुपालन की बात करें तो संभावित मौसम को देखते हुए पशुओं की नाद वो पशुपाला की नियमित सफाई करें और प्रतिदिन पशुपाला की सफाई के बाद 5 ml फिनाइल प्रति लीटर पानी के साथ घोल बनकर बनाकर और छिड़काव करें। साथ ही किसानों संभावित मौसम में पशुओं में संक्रामक रोग होने की संभावना हो सकती है अतः संक्रामक रोगों से बचाव हेतु दूषित चारा दाना पशुओं को न खिलाएं। साथ ही किसान भाइयों इस समय पशुओं में अधिक मात्रा में हरा चारा खिलाने से अपरा रोग की संभावना रहती है अतः अपरा रोग की रोकथाम के लिए टिम्फाल या ब्लोटोशिल दवा प्रति पशु प्रतिदिन के हिसाब से 2-4 ml दवा उसको खिलाएं। इसके साथ आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुलाना से मैं डॉक्टर अरविंद जी।
1: तो भैया रो अभी अपन ने सुने आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से फ़ोन पे मौसम की जानकारी एवं कृषि सामयिक सलाह और जानकारी देते डॉक्टर हरविंद सिंह और निश्चित बात है भैया जो उनने सलाह दी हैं वे बड़ी उपयोगी हैं और समय के हिसाब से हैं। सो भैया अपन का उनकी सलाह मानने और अपनों खेती किसानी के काम को वही के हिसाब से करने हैं। और भैया अपन देखो एक बात और कर रहे हैं कि देखो बरसात का मौसम है और ई मौसम में क्या होते कई जगह पर पानी गंदो हो जाते हैं जल भराव होने लगते हैं और मच्छरन को प्रकोप भी भैया बढ़ जाते हैं। ऐसे में संक्रमण फैलने को खतरा जो है काफ़ी अधिक होते हैं। इसे ई मौसम में खान पान और साफ सफाई के संगे संगे पीवे के पानी पे विशेष ध्यान देवो बहुत ज़रूरी है और कतनी भैया कि दूषित पानी जो होते गंदो पानी जो होते वो कई बीमारियों की वजह बन सकते इसे हमें बिल्कुल भी ये नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और बारिश के मौसम में साफ पानी पीवो बहुत ही ज़रूरी है। दूषित पानी से भैया तमाम तरह की बीमारी रोग राय हो जाते हैं। अब अपन देखा कि बारिश के दौरान पानी में क्या होते हैं बैक्टीरिया वायरस और परजीवी आसानी से मिल जाते हैं जिसे भैया डायरिया हैज़ा टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए जैसी बीमारियों का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। दूषित पानी जो होते भैया उसे पेट में संक्रमण गैस उल्टी दस्त जैसी समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। साफ पानी से क्या होते पाचन तंत्र जो अपना होते बिल्कुल बेहतर रहते हैं। संक्रमित पानी अगर है गंदो पानी है तो उसे शरीर की रोग प्रतिरोधक जो अपनी क्षमता होते ऊपर असर पड़ते है। स्वच्छ पानी जो होते उसे शरीर एक तो अपने में नमी बनी रहते है और जो अपना इम्यून सिस्टम नहीं होते प्रतिरोधक क्षमता भावी भैया बहुत अच्छी हो जाती है बड़ी बेहतर तरीका से वो काम करते हैं। और बरसात के मौसम में एक बात और हो जाती है कि लोग पानी कम पीने लगते नहीं है पानी पीवे लेकिन शरीर को तो पर्याप्त पानी की ज़रूरत होती है तो साफ पानी जो है वो अगर अपन पियते हैं तो उसे फिर शरीर में पानी की कमी नहीं हो पाते है। तो अपन का चाहना है कि साफ पानी पिए और खुद पिए परिवार को पिलाए और अपने सब भैया बहन का जो बात बताने हैं कि जल ही जीवन है और जल है तो भैया कल है और साफ सुथरा जल जो है वो जीवन के लाने बहुत ज़रूरी है। अब कार्यक्रम कहाँ बना आगे बढ़ाएं उसे पहले सुनत ये संदेश।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: और भैया रो देखो, गन्ना की जो फसल है तो उसमें कौन से सामयिक कार्य होते हैं और कैसे अपन और अच्छी गन्ना की फसल ले हुए, तो बड़ी उम्दा जानकारी अपने लगा है कि गन्ना की फसल में सामयिक कार्य जानकारी दे रहे लोकिन सिंह यादव और उनसे बतकाव कर रहे अपने सोहन सिंह भैया, तो अपन सुनेंगे भेंट वार्ता।
1: किसान भाइयों, गन्ना की फसल लगी हुई है। गन्ना की फसलों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए क्या-क्या सामयिक कार्य करने चाहिए, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं श्री लोकेन्द्र सिंह जादौन। जादौन साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जादौन साहब, हमारे जो किसान भाई हैं, इस समय क्या-क्या कृषि क्रियाएं करें जिससे उनका उत्पादन बढ़े, क्योंकि अपने चंबल संभाग में सामान्यतः गन्ने का जो औसत उत्पादन है उससे कम ही रहता है। इसके पीछे प्रमुख रूप से क्या क्या कारण रहते हैं?
2: गन्ने का उत्पादन कम होने के कई कारण हैं, जिसमें मुख्य है उर्वरक का जो है संतुलित उपयोग। संतुलित उपयोग के लिए अपन को सबसे प्रथम पहला कार्य है मिट्टी की जांच कराना। अपने मिट्टी की जांच करा के अपन संतुलित उर्वरक NPK का उपयोग करते हैं। और गन्ने में जो है अपन शुरू में आधार खाद के रूप में 12/32/16 250 किलोग्राम प्रति हेक्टर के मान से देना है। बुवाई के 30 दिन बाद जो है अपन को प्रथम यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करना है, दूसरा 90 दिन बाद करना है यूरिया का टॉप ड्रेसिंग, और बुवाई के 150 दिन बाद तीसरा जो है टॉप ड्रेसिंग करना है। और यूरिया की मात्रा संतुलित रूप में देने से अपना जो है गन्ने का जो है उत्पादन बढ़ता है। और कभी कभी हमारे किसान भाई कम उर्वरक जो है देने से फसल की जो है बढ़वार कम होती है और जो है पैदावार कम होती है। इस समय जो है हमारे किसान भाई प्रति हेक्टर के क्षेत्र के गन्ना में जो है 80 किलोग्राम नाइट्रोजन नीम लेपित यूरिया के रूप में जो है वो डालें और उन्हें अच्छे जो है परिणाम जो है इसके मिलेंगे। पुरानी जो गठान होती हैं और उसके माध्यम से ही अपने नई गठाने जो है यूरिया का जो है लेती हैं। इससे 3-4 भाग जो है नाइट्रोजन दूसरे हरे भाग को सोख लेती हैं। गन्ना नाइट्रोजन की अपेक्षा पोटास को तीव्र गति से जो है शोषित करता है। गन्ना बोने के 90 दिन बाद भी नाइट्रोजन जो है अपन टॉप ड्रेसिंग में देते हैं। गन्ना बोने के लिए 100 दिन नाइट्रोजन का शोषण करता है और इसके बाद नाइट्रोजन का शोषण काफ़ी कम हो जाता है। अभी समय है किसान भाई नाइट्रोजन का जो है उपयोग करें।
1: 90 दिन की फसल होती है जब तक हमारे किसान भाई जो उसमें यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं।
2: जी
1: सामान्यतः हमारे किसान भाई यूरिया का ही प्रयोग करते हैं,
2: जी
1: जबकि उनको संतुलित मात्रा में पोटाश भी प्रयोग करनी चाहिए,
2: जी जी
1: जिससे उनकी जो फसल है उसकी बढ़वार अच्छी हो।
2: के आधार खाद के रूप में अपन जो है NPK DAP ये देते हैं, तो फास्फेट सुपर फास्फेट और पोटाश की पूरी डोज जो है बुवाई से पूर्व ही खेत की तैयारी के समय हमारे किसान भाई को डालना चाहिए अच्छे उत्पादन के लिए। और इसके बाद अपन को नत्रजन देना, अधिक नत्रजन भी नहीं देना चाहिए। अधिक नत्रजन से भी हमारे किसान भाइयों की फसल ज़्यादा ग्रोथ करने से फसल गिर जाती है। गिरे हुए गन्ने में जो है उत्पादन कम होता है। शक्कर और गुड़ की क्वालिटी भी जो है अच्छी नहीं बैठती है, इसलिए संतुलित खाद ही किसान भाइयों को उपयोग करना चाहिए।
1: यूरिया खाद प्रयोग करते हैं तो यूरिया से उसका रंग तो हरा रहता है और रंग हरा होने से जो कीट हैं वो भी आकर्षित होते हैं।
2: हाँ, ज़्यादा यूरिया ये इसलिए अपन संतुलित उर्वरक की बात कर रहे हैं कि ज़्यादा नाइट्रोजन देने से ग्रोथ होगी। ग्रोथ होगी तो कीड़ों का जो आकर्षण भी बढ़ेगा और ग्रोथ ज़्यादा होने से वो गिरेगा भी। गिर जाएगा तो आपके कीट व्याधि जो है उसमें ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। और बीज को लगाते समय बीज उपचार का विशेष ध्यान रखना चाहिए हमारे किसान भाइयों को, जिससे उसमें सड़न रोग वगैरह या तो फंजीसाइड के जितने भी रोग हैं उनका बचाव हमारे किसान भाई बीज उपचार से कर सकते।
1: यानी जब भी फसल बोएं तो उनको जो फफूंदनाशक दवाएं आती हैं
2: जी
1: उनसे उपचारित करके
2: बीज
1: वो।
2: उपचार जी
1: कभी कभी हमारे किसान भाइयों को ये रहता है कि हम बहुत बड़े क्षेत्रफल में फसल उगा रहे हैं, कहाँ तक जो है बीज उपचार करें?
2: बीज उपचार बड़े क्षेत्रफल में है तो उसमें क्या है, गन्ने में तो गठान माने काट के टुकड़े बनाए जाते हैं, जिसमें एक टुकड़े में 2 से 3 आँखें रहती हैं और उनको एक कढ़ाई में जो घोल बना लेते हैं और उन टुकड़ों को उसमें जो है डाल देते हैं, बीज उपचार करके बाहर निकालते हैं और जैसे जैसे अपने लगाते जाते हैं गठानों को उसमें नाली में, उस तरह से जो है हमारे किसान भाई जो है इसका उपयोग करें, पर वो बहुत ज़रूरी आवश्यक है, बीज उपचार अवश्य करें।
1: जादव साहब, हमारे किसान भाई रासायनिक खादों के साथ साथ जैविक खाद भी प्रयोग कर सकते हैं?
2: हमारे किसान भाई अभी इस समय जो है फसल आपके PSB के फास्फेट खाद का 20 से 30% भाग जो है उपयोग होता है, 20 से 30% के बाद वो सुसुप्ता अवस्था में फास्फेट खाद पड़ा रहता है, उसके लिए वो जो है सड़ी गोबर की खाद में 4 से 5 kg जो है PSB को डाल के और नालियों के बीच में अभी हमारे किसान भाई उसे जो है डाल दें PSB को और गुड़ाई कर देंगे, तो जितना अपना जो है फास्फेट मृत अवस्था में पड़ा है वो क्रियाशील अवस्था में हो जाएगा और अपने गन्ने की फसल को जो है अधिक से अधिक जो फास्फेट उपलब्ध हो जाएगा। तो इस समय ये समय भी है क्योंकि हमारे यहाँ अभी रेंस जो है लेट हुई है, दूसरा ये स्नेहा जो बोनी होती है वसंतकालीन, उसमें अभी ये कार्य अपन कर सकते हैं हमारे किसान भाई अच्छी तरीके से। सैलरी का अपने क्षेत्र में बायोगैस भी जो है विभाग द्वारा और अपने क्षेत्र में अपन लोगों ने लगाए हैं, तो वो 200 लीटर जो है सैलरी आप उस नाली में डालें और उसमें भी आप जो है अपना ये PSB एजेटो वेक्टर का उपयोग करें 4 से 5 किलो, तो किसान भाइयों को जो पड़ा हुआ मृत अवस्था का फास्फेट है वो उसका फसल में लाभ मिलेगा।
1: जादव साहब, गन्ना की फसल में निदाई और गुड़ाई का भी विशेष महत्व?
2: जी, बुवाई के 10 दिन बाद जो है पपड़ी तोड़कर हल्की गुड़ाई करें, फावड़े से हमारे किसान भाई करते हैं, आजकल साइकिल व्हील हो भी है तो नाली में आराम से उसकी परत को तोड़ के जो है चला सकते हैं, उसमें कल्ले उस समय फूटते हैं तो उसको एयर वगैरह हवा जो है मिलती है, अच्छा पौधे जो विकास करते हैं। खरपतवार रासायनिक नियंत्रण के लिए एट्राजिन 1.6 किलोग्राम 350 लीटर पानी में घोलकर अंकुरण के पूर्व छिड़काव कर सकते हैं खरपतवार जो है नियंत्रण के लिए। हमारे किसान भाई रासायनिक और अपने कृषि क्रियाएं करके भी नियंत्रण कर सकते हैं, गुड़ाई निदाई करके भी,
1: क्योंकि गन्ने के बारे में कहावत है कि 3 निराई और 13 गोड़।
2: गोड़ बहुत जरूरी
1: जब
2: है,
1: जब देखो गन्ना के पौड़
2: गोड़, जब पानी अपन देते हैं पानी के बाद हर बार अपन गुड़ाई कर देंगे तो उसमें फूट और उसमें अच्छी आएगी, गन्ने में जो कल्ले फूटते हैं वो बहुत अच्छे होंगे और अच्छा विकसित पौधा होगा, इसलिए अपन को हर पानी के बाद गोड़ और निदाई होती है तो बहुत अच्छे जो है उसके रिजल्ट मिलेंगे,
1: क्योंकि गुड़ाई होती रहती है तो जो नीदा हैं वो भी नहीं पनप पाते हैं।
2: जी,
1: कभी कभी इनमें कीटों की भी समस्या आ जाती है
2: कि जो भी अपन गन्ने के टुकड़े लगाते हैं तो एक तो बीज उपचार बहुत आवश्यक है और दूसरा जो है अपने पायरेला या फुंदका जो है कीड़ा ग्रब्स के नाम से होता है, इसके लिए अपन रासायनिक नियंत्रण में 600 जो है मिलीलीटर इंडोसल्फान भी है, 300 मिलीलीटर जो है मोनोक्रोटोफास है, 400 लीटर पानी में और 400 ml यदि वो नहीं लगाएं तो रोगर का भी उपयोग जो करके घोल तैयार करके प्रति एकड़ के मान से आप इसका स्प्रे करके भी कीट व्याधि का नियंत्रण कर सकते हैं।
1: जादव साहब, अंत में हमारे किसान भाइयों को गन्ना की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए और क्या सलाह देना चाहेंगे?
2: अच्छे उत्पादन के लिए जो गुरु हैं उनमें गन्ने की बुवाई उचित समय अक्टूबर नवम्बर में करें, क्षेत्र में उन्नत जो है जाति का चयन करें और उन्नत जातियों में जैसे COC 671, KG जो है 64, 86032, जवाहर जो है 86572 का चयन करें, गहरी नालियों में 2-3 फुट की दूरी पर रोग रहित, जैसा कि पूर्व में रोग रहित गर्म हवा से उपचारित करावें और गन्ने के टुकड़ों को बीटावैक्स या वाविस्टीन से आवश्यक रूप से उपचारित करें, जैसे पूर्व में भी अपनी बात हुई, और संतुलित मात्रा में उर्वरक का उपयोग करें। ये संतुलित मात्रा में उर्वरक का उपयोग तभी कर सकते हैं अपन अपने खेत की मिट्टी की जांच करा लें, जिसमें आपको क्लियर दिया होगा कि अपन जो है गन्ने की खेती लगाने जा रहे हैं तो एनपीके अब आधार खाद के रूप में इतना देना है, टॉप ड्रेसिंग में यूरिया अपन को इतना इतना देना है, जिसमें अपन को किसी तरह की कोई हान न, अपन ज़्यादा उर्वरक उपयोग करेंगे, हमारे किसान भाई की जेब का पैसा भी जो है कम खर्च होगा या जो नियम अनुसार होगा वो होगा। और पौध संरक्षण के लिए एकीकृत पौध संरक्षण उपायों का उपयोग करें, खरपतवार नियंत्रण भी करें।
1: जादव साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसान भाइयों को गन्ना की फसल में क्या क्या सामयिक कार्य करें जिससे उत्पादन अधिक मिले, इस विषय पर जानकारी दी, इसके लिए आपको धन्यवाद।
0: तो भैया रो, अभी अपन ने सुनी जब भेंट वार्ता गन्ना की फसल में सामयिक कार्य, जानकारी दे रहे थे लोकिन सिंह जादव और उनसे बतकाव कर रहे थे सोहन सिंह भैया, और देखो उनने सारी बातें जादव साहब से पूछ ली। अब बस अपन का चाहना है कि अपनी जो गन्ना की फसल है उसमें अपन कैसे बढ़िया अच्छे काम करें और ये सलाह मान के अपन अच्छी से अच्छी गन्ना की फसल ले। और भैया एक बात और कहें अपन कि जब अपन कोनो भी काम धाम करते हैं, चाहे दुकानदारी हुए, चाहे खेती किसानी को हुए, चाहे नौकरी करत हुए भैया, तो सबसे ज़्यादा वो काम में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है बचत। जो भी अपनी कमाई है उसमें बचत को बहुत बड़ा महत्व है। बचत से कहो भैया कि जो भविष्य की अनिश्चितताएं होती हैं उसे एक तो सुरक्षा मिलत है, आर्थिक तनाव कम करत है, और जब भी कोई संकट को समय है तो वो बेरा जो कर्ज लेने पर थे या जो उधार लेवे की एक समस्या आते है भैया उसे बचाते है। नियमित बचत से व्यक्ति आत्मनिर्भर बनत है और जीवन के बड़े लक्षण को भैया आसानी से पूरा कर लेते हैं। एक तो मानसिक शांति होते है, आपके पास जब पैसा बैंक में है या पास में पैसा रखो है तो भविष्य की चिंता भैया कम हो जाते हैं और मानसिक सुकून इंसान खराते है। बच्चन की पढ़ाई के लाने, शादी के लाने, घर खरीदे हुए के लाने, बड़े कामन के लाने भैया अपने पास हर समय पैसे रुपये इकट्ठे रहते हैं। और बचत करवे की आदत हमें फिजूल खर्ची से भैया बचाते हैं और भविष्य की मजबूती है ना, भविष्य में जब भी अपन का आवश्यकता है या आत्मनिर्भर जीवन जब अपन का जीने हैं भैया वो खिलाने भैया शुरुआती बचत करवो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बचत करके भी भैया अपन का पैसे रुपया कहाँ रखने हैं, अपने बैंक में या डाकघर में रखने हैं। वो तो कहावत है भैया पैसा भी अपना सुरक्षित है और संगे संगे अपन का ऊपर ब्याज तो मिलते ही मिलते हैं। तो बचत की भैया आज खुद डालने हैं, अपने घर की बहुन बेटियन का समझाने हैं और संगे संगे अपने बाल गोपाल जोन हैं उन्हें ही भैया जब बात बिल्कुल गठिया लेने हैं कि बचत कोनो चीज़ की होवे, चाहे पैसे रुपया की होए, चाहे पानी की होए, चाहे बिजली की होए, चाहे भैया डीजल पेट्रोल की होवे, हैं चाहे ईंधन की होवे भैया, इनकी बचत ही इनकी बढ़त है। तो बचत का अपन का बढ़त बनाना है और जीवन का बढ़िया खुशहाल जीवन जीना है, स्वस्थ रहने हैं, मस्त रहने हैं और व्यस्त रहने हैं। अब भत्काव करे को मन तो भैया बहुत है लेकिन घड़ी कह रही है कि 8 बजियाँ हैं, ब्यारू की बिरियाँ हैं, सो भैया आज्ञा दो अपने भैया विवेक का, फिर अपन गाँव मिले, फिर भत्काव हुई है, बहुत सारी बातें हुई हैं, जानकारी हुई है, मनोरंजन हुई है, तो अब विदा लेते हैं भैया। जय जवान जय किसान।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रगति, सुशासन और बुनियादी ढांचे के क्रियान्वयन में हो रहे बदलावों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुपमा रोहतगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 53वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 6 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा शामिल थी। कुल मिलाकर 30,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली ये परियोजनाएं रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्रों से जुड़ी हैं और 9 राज्यों में चल रही हैं। आकाशवाणी सुर्खियों में कार्यक्रम में आज हम इस बैठक के महत्व, नागरिकों के लिए इसकी प्रासंगिकता और इससे जुड़े अन्य मुद्दों को समझेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्ते।
1: प्रफुल्ल जी, कल की बैठक में चर्चा जिन विषयों पर, जिन मुद्दों पर हुई, उन पर बात करने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रगति प्लेटफॉर्म असल में है क्या और इसका क्या महत्व है।
2: एक अनूठा प्रयास है कि जो भी विकास की परियोजनाएं बनती है, बहुत बार ऐसा होता है कि विकास की परियोजनाएं बनती तो जरूर है, लेकिन उसका यदि ठीक से रिव्यू नहीं हुआ, उसका फॉलोअप नहीं हुआ, तो बहुत बार योजना अच्छी होने के बाद भी उसका प्रत्यक्ष परिणाम नहीं दिखता है। इसलिए प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ये प्लेटफॉर्म, आईसीटी बेस्ड प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मार्च 2015 में इसको लॉन्च किया था। ये मल्टी मॉडल सिस्टम है, एक साथ बहुत सारे चीजों को आप दिखा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में भी जा सकते हैं। और खास करके जो डिलेड प्रोजेक्ट्स थे उस समय के, उसमें बहुत सारा उसको फास्ट ट्रैक करने के लिए इसका उपयोग किया गया और उसी का नतीजा है कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स, डैम से रिलेटेड, रोड से रिलेटेड, जो लिंगरिंग वन थे अनेक वर्षों से, दशकों से, उनको इस माध्यम से। तो ये बेसिकली डिजिटल डेटा मैनेजमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, इन सब का एक तरीके से इंटीग्रेशन है। इसमें स्टेट के सेक्रेटरी, यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के संबंधित अधिकारी, ये सब उसमें जुड़ सकते हैं। तो समन्वय की एक भूमिका और समय समय पर विकास की परियोजनाओं को एक तरीके से एड्रेस करने के लिए प्रगति, प्रोग्रेस, जिसको अंग्रेजी में इस एब्रिविएशन को ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो उस प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म, इस रूप में हम इसको देख सकते हैं।
1: इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को लागू करने में अक्सर एक आम शिकायत उनके पूरा होने में देरी की रही है, और जब हम प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो कभी कभी उनमें गुणवत्ता से समझौता हो जाता है। और शायद यही वजह है कि कल जो बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि रफ्तार और गुणवत्ता दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। इसे आप कैसे देखते हैं?
2: हमने सरदार सरोवर डैम से लेकर बहुत सारी परियोजनाओं में देखा, प्रधानमंत्री जी का अपना खुद का इसमें अनुभव है, कि अनेक कारणों से इस तरीके का डिले हो जाता है और वो डिले उस योजना के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने में देरी होती है। केवल उतना नहीं, उसकी कॉस्ट भी मल्टीफोल्ड बढ़ जाती है और वो अल्टीमेटली तो लोगों पर, क्योंकि सरकार उस योजना के लिए पैसे जो खर्च करती है वो तो टैक्स कलेक्शन से ही आते हैं। और जब हमको ये दिखता है कि कोई योजना जो एक्स अमाउंट में हो रही थी, उसके सडनली 3x या कभी कभी तो 10x तक उसका कॉस्टिंग बढ़ जाता है, क्योंकि वो इतनी डिले हो जाती है, तो मुझे लगता है कि ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, प्लानिंग के समय ही उसके आगे के जो सीढ़ियां है उनको निश्चित करना, उसके गुणवत्ता के भी मानक निश्चित करना, तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी, उसका स्पीड और उसके गुणवत्ता के आधार पर जो पैमाने हैं, उसके पैरामीटर्स हैं, उन दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए भी प्रगति प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत उपयुक्त साबित होता है इसी कारण से।
1: समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं हैं उनको अलग अलग हिस्सों या पैकेजेस की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि एकीकृत इकाई के तौर पर देखना चाहिए और उसी तरह से उनकी निगरानी की जानी चाहिए, उनकी समीक्षा की जानी चाहिए। ये क्यों जरूरी है?
2: देखिए, बहुत सारी योजनाएं बनते हुए क्लियरेंसेस के इश्यूज होते हैं और उसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज का भी रोल होता है। मतलब योजना रेलवे की है लेकिन उसमें एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का भी क्लियरेंस है, कभी NHAI का भी, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का भी आता है। यदि हम इस सारी योजना को प्लानिंग के स्टेज पर ही इंटीग्रेटेड अप्रोच में एकात्म दृष्टि से देखें तो क्या होगा? दो चीजें होंगी। एक, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट जो है, आर्थिक और जो तकनीकी दोनों विषयों पर, उस फिजिबिलिटी को हम इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन से वर्कआउट कर पाएंगे। दूसरा, जैसे हम बहुत बार देखते हैं कि मान लीजिए रोड का काम हो गया और रोड का काम होने के बाद ध्यान में आता है अरे यहाँ से तो बाद में कोई मेजर अंडरग्राउंड केबलिंग का काम होना था या ड्रेनेज का काम होना था, फिर वो रोड जो है वो उसका नुकसान होता है। यदि इंटीग्रेटेड अप्रोच से प्लानिंग रही और उसका एग्जीक्यूशन रहा तो अपने आप ही उसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है और लोगों को उसका, उस योजना का पूरा लाभ भी मिल सकता है। तो एक तरफ टेक्निकल इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का एस्पेक्ट है, दूसरा इसकी टाइम पर डिलीवरी और उस योजना के संपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए ये एकात्म दृष्टि बहुत आवश्यक है।
1: हम जब इस एकीकृत इकाई की देखने की बात करते हैं तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं होती हैं उनके लिए जब एकीकृत पहल अपनाते हैं तो उसके लिए अलग अलग मंत्रालयों का, विभागों का और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल होना भी चाहिए। ये तालमेल कितना जरूरी और कितना चुनौतीपूर्ण होता है?
2: मुश्किल जरूर होता है और इसके अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे एक तो स्वाभाविक रूप से लोगों को दिखता है वो राजनीतिक कारण होता है, किसी राज्य स्तर पर किसी एक की सरकार है दूसरी तरफ दूसरी, लेकिन समान राजनीतिक दल की सरकार होने के बाद भी या केंद्र सरकार के भी विभिन्न, मुझे शुरू में याद है जब फास्ट ट्रैक पर रेलवे के प्रोजेक्ट बनाने की बात हुई थी तो उसमें बहुत सारे जमीन के मामले जो है वो एनवायरमेंट के विषय में फंस जाते थे
1: जी,
2: और वो क्लियरेंस मिलते मिलते देर हो जाती थी, इसमें रेलवे की कॉस्ट बढ़ जाती थी। ये दूसरा विषय होता है। तीसरा, हर डिपार्टमेंट का अपना एक वर्क कल्चर और एक अपनी काम करने की पद्धति विकसित होती है, उसके बारे में वो प्रेसिडेंस के आधार पर चलता है। गवर्नमेंट की अपनी एक मेमोरी होती है, वो डिपार्टमेंट की मेमोरी होती है, उसमें वो बहुत बड़ा बदलाव करना नहीं चाहते क्योंकि उसमें नियमों में और इसमें भी कहीं उनको बदलाव करने पड़ते हैं। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण कारण होता है। चौथा कारण ये होता है कि अभी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो इस प्रोसेस में इंटरवीन करते हैं, तो कभी एनवायरमेंट के नाम पर, कभी सोशल जस्टिस के नाम पर, कभी और अनेक विषयों के नाम पर। एक्टिविज्म जब शुरू होता है या लीगल प्रोसेसेस में उसमें हस्तक्षेप किया जाता है तो ये समन्वय और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो लीगलिटीज भी फिर इंटर डिपार्टमेंटल कॉम्प्लेक्सिटीज को बढ़ा देती है। तो इस कारण से ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन है और ये जो एकीकृत अप्रोच है किसी भी परियोजना के प्लानिंग में ही उसको इंटीग्रेटेड अप्रोच में देखने का, उसके कारण मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारा विषय सेक्रेटरीज के लेवल पर वहीं पे एड्रेस हो जाता है और उसको फिर एक्चुअल एग्जीक्यूशन के लेवल पर बहुत सारे वो विषय स्मूदनिंग वे में हैंडल हो सकते हैं जो पहले शायद प्लानिंग के लेवल पर नहीं आते थे, एग्जीक्यूशन के लेवल पर आ जाते थे।
1: जी, अभी हम बात कर रहे थे, आपने जैसा कहा कि जब भी ये परियोजनाएं बनती हैं या जब ये लागू होती हैं तो देरी होने की वजह से इसकी जो कीमत होती है, इसकी जो लागत होती है वो काफी बढ़ जाती है, जिसका असर होता है वो अंतिम उपयोगकर्ता यानी कि हम एंड यूजर जिनको कहते हैं, आम आदमी, व्यवसायों और आखिरकार अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। तो इससे निपटने के लिए प्रगति प्लेटफॉर्म की कितनी अहम भूमिका है?
2: बहुत बड़ी भूमिका है। कल की बैठक में प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि हमको एंड टू एंड अप्रोच इसमें लेना चाहिए और जो क्रिटिकल गैप्स है उनको फिलअप करने के लिए हमको कमीशनिंग के समय और डिलीवरी के समय हम किन उद्देश्यों से इस प्रोजेक्ट को शुरू करना चाह रहे हैं और वो प्रोजेक्ट, वो उद्देश्य हम सफलतापूर्वक लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं या नहीं। तो गुणवत्ता का एक पैरामीटर तो ये भी है ना कि जिनके लिए बना रहे हैं उन तक वो योजना पहुंच रही है नहीं, या उसके कारण उनका, जैसे ईज ऑफ लिविंग की बात आजकल आती है, तो उनका सही में उसके कारण जीवन मान जो है वो सहज हो रहा है या नहीं। मुझे लगता है कि प्रगति जैसे टेक्नोलॉजी, मल्टी मॉडल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, इंटर डिपार्टमेंटल डायलॉग का उपयोग करते हुए इन योजनाओं के बारे में पहले नियोजन और फिर कार्यान्वयन होना, उसका एक तरीके से अनुवर्तन होना, फॉलो अप होना, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि प्रगति प्लेटफॉर्म ने सहज की है और उसका निश्चित इस संदर्भ में उपयोग है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात और कही इस बैठक में कि उन्होंने कहा कि बड़े परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की प्लानिंग करते वक्त ढांचागत सेवाओं यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के लिए कॉमन यूटिलिटी कॉरिडोर की संभावना तलाशनी चाहिए। तो ये यूटिलिटी कॉरिडोर जिनकी बात प्रधानमंत्री कर रहे थे, वो लागत कम करने और लागू करने में, जो भी परियोजनाएं हैं उनको लागू करने में आने वाली रुकावटों को दूर करने में क्या भूमिका निभा सकते हैं और कितने जरूरी हैं?
2: बिल्कुल जरूरी है। देखिए, अभी जैसे मान लीजिए कि फ्राइट कॉरिडोर बन रहा है और रेलवे ने इस पर बहुत बड़ा प्रगति की है, तो क्या ऐसी संभावना ही नहीं हो सकती कि जहां पे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के लिए भी उस कॉरिडोर का कुछ ना कुछ, क्योंकि बहुत सारे संसाधन है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक केवल रेलवे के माध्यम से नहीं पहुंचाए जाते, तो कॉस्ट जो किसी भी चीज की जो बढ़ती है वो ट्रांसपोर्टेशन के कारण बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ती है। हम कॉरिडोर्स क्रिएट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के लिए, यहाँ पे भी संभव हो तो हम इसमें ना केवल कॉस्ट इफेक्टिव इन सारे ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी को कर पाएंगे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी बहुत ज्यादा फिजिबल हो जाएंगे, तीसरा हम बहुत सारे संसाधनों का कॉमन यूटिलाइजेशन अलग अलग मिनिस्ट्रीज के प्रोजेक्ट्स में कर पाएंगे, और उसके कारण जो कम स्थान पर अधिक यूटिलाइजेशन उस प्रोजेक्ट का हो सकता है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि एविएशन सेक्टर के लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर में कुछ फैसिलिटी, अभी तो मैं केवल कार्गो के संदर्भ में बोल रहा हूँ, रेलवे के लिए अलग है लेकिन वो है एक ही स्थान से,
1: बिल्कुल,
2: तो वो अलग अलग अलग अलग जगह पर क्यों हो, फिर वो कॉमन हो सकती है, उसमें स्पेस शेयरिंग हो सकता है, प्राइवेट इंडस्ट्री वैसे करती है तो ये गवर्नमेंट इसमें भी हो सकता है।
1: डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्री स्टैक और कृषि डेटा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के इस्तेमाल पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। किसानों के लिए ये कितना जरूरी देखते हैं आप?
2: जी, बहुत महत्वपूर्ण कदम है एग्री स्टैक के माध्यम से। एक बार किसान इसमें इस पोर्टल पर रजिस्टर हो जाएगा तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सारा ही एग्रीकल्चर डेटा, कि किस तरीके की फसल आने की संभावना है, किस तरीके की उसको रिटर्न मिलने की संभावना है, उसकी सरकार खरीद करेगी तो उसके लिए उसको क्या मिलने की संभावना है, ये तीनों चीजों का इंटीग्रेशन ही एग्री स्टैक के माध्यम से संभव होगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी जो दिक्कत ग्राउंड पर अभी आ रही है, क्योंकि भारत का किसान इस तकनीक के बारे में बहुत ज्यादा उसको ट्रेन नहीं किया गया है, तो अभी कुछ स्थानों पर इसका, जिसको हम कह सकते हैं कि ओरिएंटेशन या प्रशिक्षण, तो मुझे लगता है कि डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन में ये जो किसानों के अलग अलग कोऑपरेटिव्स बने हैं, संगठन बने हैं, इस प्रशिक्षण योजना में उपयोग होता है, तो एग्री स्टैक ये लॉन्ग टर्म में हमारी फूड सिक्योरिटी और उसके साथ साथ हमारा जो असेसमेंट है सारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, उसके प्रोसेसिंग का, उसके परचेसिंग का, इसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा।
1: प्रगति, हम जैसे बात कर रहे थे इसको शुरू हुए एक दशक से ज्यादा हो चुका है, तो भारत में गवर्नेंस को ज्यादा बेहतर बनाने और जवाबदेह बनाने में अब तक ये किस तरह की भूमिका निभा चुका और आगे आप इसके लिए क्या देखते हैं, आने वाले सालों में ये कितनी और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है?
2: देखिए, हम पिछले 10-12 साल में खास करके प्रगति का ये आने के बाद जिस तरीके का हम सारा ये देख रहे हैं कि कितने गति से प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स तो बिफोर टाइम डिलीवर हुए हैं। प्रधानमंत्री अपने खास करके राजनीतिक भाषणों में हमेशा कहते हैं कि जिसका हम भूमि पूजन करते हैं उसी का फीता हम ही काटते हैं, तो ये एक सेंटेंस ये दिखाता है कि इसके कारण प्रोजेक्ट डिलीवरी की कितनी एफिशिएंसी बढ़ गई है। लेकिन इसके साथ साथ जो कॉस्ट एस्केलेशन होता था उसमें कटौती हुई है, इंटर डिपार्टमेंटल इंटीग्रेशन इसमें बढ़ा है, और सबसे महत्वपूर्ण इस सारे काम में टेक्नोलॉजी का यूज इंटीग्रेशन में वो बढ़ा है, और मुझे लगता है इसके कारण ईज ऑफ लिविंग में एक बहुत बड़ा अंतर आया है। हमने एंड टू एंड डिलीवरी में बहुत बड़ी छलांग लगाई है, हमारी बहुत सारी कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की इसके कारण घटी है, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट गवर्नेंस के डिलीवरी के संबंध में हमने प्राप्त किया है।
1: प्रफुल्ल केतकर जी, आपने आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में भाग लिया और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे प्रगति, सुशासन और बुनियादी ढांचे के क्रियान्वयन में हो रहे बदलावों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए परख फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोल हैं और सुरों में पिरोया है सलिल चौधरी ने।

पगला कहीं का। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बोल है हसरत जयपुरी की और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

आशा भोसले की खूबसूरत आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म तीसरी कसम का ये नगमा। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था और संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन ने।

आपके रेडियो सेट पर आ रहा है फिल्म कारवां का बहुत ही प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। मजरूर ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

संगीतकार ओपी नैयर के संगीत से सजावा गीत अब हम आपके लिए लेकर आए हैं। बोल हैं साहिर के, फिल्म का नाम है नया दौर और आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की।

बम्बई का बाबू। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। मजरू ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है एसडी बर्मन ने।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में गाए बम्बई का बाबू फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम अपने श्रोताओं को एक सूचना दे दें। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 1163 के अंतर्गत भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा और किलोल पार्क चौराहा और इन चौराहों के मध्य आने वाले समस्त स्थानों पर किसी भी प्रकार के हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। ये प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी 2 माह यानी 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इसलिए आम नागरिकों से अपील है कि उक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करें और कानून व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने में पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करें। सूचना समाप्त हुई।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा तथा धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851316807 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 9779901075000। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल साधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर अपेक्षाकृत कम है, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संभावित जल प्रवाह को देखते हुए वाल्मीकि नगर बराज से 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़े जाने की संभावना है। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
3: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: आपदा मोचन बल के कमांडेंट हितेंद्र पाल सिंह कंडारी ने बताया कि बिहार में 9 टीमें तैनात हैं और कई अन्य टीमें अलर्ट पर हैं।
4: मानसून के सीजन में हमारी कुछ टीमें पहले से ही प्रिपरेशन थी। अभी जो संभावना जताई जा रही है कि फ्लड का पानी जो नेपाल में है वो इंडिया में एंटर करेगा, तो उसके बाद यहाँ पे भी फ्लड की सिचुएशन बन सकती है, उसके मद्देनजर हमारी टीमों को वहाँ पे भेजा गया है।
0: इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल में अचानक बाढ़ के कारण दोनों जिलों में गंडक और नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया और 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे के समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्यस्ततम रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2,500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंपे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है।
5: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया।
6: इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
0: मुंबई पुलिस ने एमपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के 3 अधिकारियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने सभी 6 आरोपियों को बुधवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति कल रायपुर में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करेगी। इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है। मेघालय सरकार ने स्कूली बच्चों में बुनियादी पठन कौशल को बेहतर बनाने और सीखने की कमियों को दूर करने के लिए सीएम इंपैक्ट रीड एंड राइज मेघालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा 7 वर्ष की आयु तक पढ़ना और लिखना सीख सके। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। चिकित्सा संघ ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलम वासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है।
7: तिरुओणम के अवसर पर केरलम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। ओणम पर्यटन सप्ताह के अंतर्गत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी हैं। जिला मुख्यालयों के साथ साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केरलम का सबसे बड़ा फसल उत्सव ओणम अब समापन की ओर है। तिरुअनंतपुरम से स्मृति एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केरलम मंडल में लगभग 4,40,000 पेंशन भोगियों को आज अगस्त 2026 की पेंशन उनके खातों में भेज दी। सामान्य तौर पर पेंशन का वितरण महीने की अंतिम तिथि को होता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी भी आज उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कश्मीर घाटी में इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और दरगाहों में हजारों श्रद्धालु जुटे और विशेष नमाज अदा की।
8: ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पूरी घाटी में हजारों की तादाद में अकीदतमंद मस्जिदों और दरगाहों में जमा हुए और खसूसी नमाजों और मजहबी मजलिसों में शामिल हुए। सबसे बड़ी मजलिस श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में हुई, जहां पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास निशानी को लोगों के सामने नुमाया किया गया और उनकी जिंदगी पर रोशनी डाली गई। ऐसी ही मजलिसें घाटी के दीगर इलाकों में भी हुई, जहां पर लोगों ने जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं की। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इशफाक शाह।
0: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा आज धार्मिक और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संचालित की गई। इसके साथ ही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा के समापन की औपचारिक शुरुआत हो गई। यात्रा समापन रक्षाबंधन के दिन होगा। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पत्रा देवी हुतात्मा स्मारक राष्ट्रीय एकता, साहस और बलिदान का प्रतीक है, जिसने गोवा की मुक्ति में योगदान दिया था। श्री सिंह ने स्मारक के उद्घाटन समारोह में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग गोवा आए और इसकी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त ले ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में वीर चोटरानी और विलवन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। चोटरानी ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनी को और विलवन सेंथिल कुमार ने मलेशिया के एन यो एनजी को हराया। अब सेमीफाइनल में ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने होंगे। मुंबई में एशियाई जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप में मयंक चक्रवर्ती ने ओपन और प्रतीति बोरदोलोई ने लड़कियों के वर्ग का खिताब जीत लिया है। ओपन वर्ग का कांस्य पदक भारत के ही दक्ष ने हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है परिचर्चा, भारत चीन संबंध, सीमा समाधान, शांति और स्थिरता पर विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: हिमालय की ऊंचाइयों पर खींची एक ऐसी रेखा जिसे दोनों देश अपने अपने नक्शों में अलग अलग तरह से देखते हैं, एक ऐसी सीमा जो सिर्फ भूगोल का सवाल नहीं है बल्कि सुरक्षा का सवाल है, संप्रभुता का सवाल है, विश्वास का सवाल है और शायद एशिया की भविष्य की राजनीति का भी सवाल है। भारत और चीन, दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश, दो प्राचीन सभ्यताएं, दो उभरती हुई वैश्विक शक्तियां, लेकिन इनके रिश्तों का सबसे संवेदनशील बिंदु है सीमा। साल 2020 के बाद पूर्वी लद्दाख में पैदा हुआ तनाव, गलवान की हिंसक झड़प, भारी सैन्य तैनाती और कई वर्षों तक चला गतिरोध, इन सब ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि भारत और चीन के बीच सीमा पर शांति केवल सीमा तक सीमित मुद्दा नहीं है। सीमा पर तनाव बढ़ता है

0: असर व्यापार पर पड़ता है, कूटनीति पर पड़ता है, राजनीतिक विश्वास पर पड़ता है और पूरे द्विपक्षीय संबंधों की दिशा बदल जाती है। अक्टूबर 2024 में देपसांग और डेमचौक सहित 2020 के फ्रिक्शन पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट और पेट्रोलिंग व्यवस्था को लेकर समझौते के बाद दोनों देशों के बीच बीजिंग में हुई भारत चीन विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में उभरी है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई इस मुलाकात का केंद्रीय बिंदु यही रहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता ही द्विपक्षीय संबंधों के विकास का मुख्य आधार है। आज की चर्चा में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या 25वें दौर की ये बातचीत सीमा विवाद के स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस आधार तैयार कर पाई है या फिर ये प्रक्रिया केवल विश्वास की बहाली तक ही सीमित है। इस गंभीर और रणनीतिक मुद्दे पर गहन विश्लेषण के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार सेवानिवृत्त और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष वी पंत। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल अशोक कुमार, आपके साथ शुरुआत करते हैं। देपसांग और डेमचौक जैसे फ्रिक्शन पॉइंट से पेट्रोलिंग और बफर जोन की व्यवस्था के संदर्भ में डोभाल और वांग यी की वार्ता को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या हम केवल टैक्टिकल डिसएंगेजमेंट यानी रणनीतिक रूप से पीछे हटने की स्थिति में हैं या स्ट्रैटेजिक डीएक्सलेशन यानी सेनाओं की वापसी की दिशा में कोई वास्तविक प्रगति हो रही है? क्या लगता है आपको?
1: मेरे ख्याल से अगर आप इसका घटनाक्रम ध्यान से देखें तो अक्टूबर 24 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके पहले ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी और उसी मुलाकात के तहत एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन दोनों कंट्रीज के लोगों को, डिसीजन मेकर्स को दिया गया कि हमें इस मुद्दे को सुलझाना है। और उसके बाद पिछले जो 24वें मीटिंग हुई थी एसआर रिप्रेजेंटेटिव्स की, उसमें तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम पहले जो अर्ली हार्वेस्ट वाले ऑप्शंस हैं उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो मुद्दों पर जहाँ पर ज्यादा विवाद है उसकी तरफ बढ़ेंगे। आपको पता ही होगा कि सिक्किम का इलाका और हिमाचल प्रदेश का इलाका और उत्तराखंड इलाका, ये तीन जगह ऐसे हैं जहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है भारत और चीन के अप्रोच में। इतना ही नहीं, यहाँ पर जहाँ विवाद है भी उस पर भी भारत अपने क्लेम के मुताबिक उन जगहों पर उसकी मौजूदगी है, जबकि चाइना का सिर्फ क्लेम है। और केवल उत्तराखंड में बाराहोती का मामला ऐसा है जहां पर उसमें ग्रेजिंग के दौरान में अक्सर हड़ताल आता है और फिर उसके बाद में वापस चला जाता है। इसके पहले दोनों देशों ने अपने नक्शे भी एक्सचेंज किए थे, दोनों को मिलाकर के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर के मिडिल सेक्टर माना जाता है, उसके नक्शे एक्सचेंज हुए थे और दोनों ने अपनी पोजीशन डिलिनिएट की थी। तो वहां पर एकदम से क्लैरिटी है कि हम क्या क्लेम कर रहे हैं और चाइना क्या क्लेम कर रहा है, और गैप बहुत थोड़ा है जो रिजॉल्व किया जा सकता है। पहली बातचीत में हम वहां तक पहुंच चुके हैं। उस बातचीत के बाद में बाकी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, और इस बार चूंकि 12-13 सितंबर को इंडिया में ब्रिक्स की समिट होने वाली है, तो काफी कयास लगाए जा रहे थे कि इस 25वीं मीटिंग में कोई बड़ा निर्णय सामने आएगा जिससे इस दिशा में एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन में कुछ सुनने को मिलेगा। लेकिन जब बातचीत खत्म हुई कल बीजिंग में, तो वहां पर ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। इनफैक्ट इतना ही नहीं, जो पहले लो हैंगिंग फ्रूट की बात हो रही थी उसको रिजॉल्व करने की, उसका भी जिक्र ना तो चाइनीज के स्टेटमेंट में आया ना भारतीय स्टेटमेंट में आया। मोटे तौर पर यह कहा गया कि 24वीं मुलाकात के बाद में दोनों देशों के बीच में प्रगति हुई है। ये चीज तो स्पष्ट नहीं है कि प्रगति किस किस फील्ड में हुई है, लेकिन पूरा टोन आप देखेंगे उस भाषा का, जो बातचीत के जो अंश बाहर सामने आए हैं, उसे लगा है कि दोनों देशों में एक आंतरिक इच्छा है कि इस मामले को स्ट्रेटजिक लेवल पर सुलझाया जाए। भारत ने ये चीज स्पष्ट मेंटेन किया है कि जब तक सीमाओं पर शांति नहीं रहती है, ये चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे कूटनीतिक क्षेत्र हो या और भी कोई रिलेशनशिप का क्षेत्र हो, उसमें रिलेशंस स्टेबल नहीं हो पाएंगे। और इसलिए उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम्स में जब WMCC की मीट होगी तो शायद इस दिशा में और प्रगति हो। मेरा मानना यह है

0: और गंभीर संकट रहा। 2024 में डिसएंगेजमेंट अरेंजमेंट्स की बात हुई, 2025 में डी एक्सकेलेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट और अर्ली हार्वेस्ट जैसे विचारों पर संस्थागत चर्चा हुई। इस वर्ष यानी 2026 में बाउंड्री डिलिमिटेशन, राजनीतिक समाधान की दिशा में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बातचीत। क्या यह कहना सही होगा कि भारत चीन संबंध अब क्राइसिस मैनेजमेंट, स्टेबिलाइजेशन, पॉसिबल रेजोल्यूशन की तीन स्तरीय प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, या जैसा कि अभी जनरल अशोक बता रहे थे कि रेजोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल करना अभी जल्दीबाजी होगी? क्या कहेंगे आप?
1: मुझे भी ऐसा लगता है कि रेजोल्यूशन तो भी कुछ दूर दिख रहा, रेजोल्यूशन नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जो क्राइसिस में ये संबंध थे और जो बॉर्डर इश्यूज जिस तरह से सेंटर स्टेज पर आ गए थे 2020 के बाद, उसके बाद ये सतत प्रयास मुझे लग रहा है भारत की तरफ से और चीन की तरफ से कि कैसे डीएस्केलेशन हो और उससे ज्यादा एक पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस दोनों साइड्स में बने, क्योंकि संबंध जो भारत ने एक अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया था कि जब तक बाउंड्री में एलएसी में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी नहीं होगी, तब तक ये मानना कि भारत और चीन के संबंध एक नॉर्मल दो देशों के जैसे संबंध होते हैं उस तरह से हो जाएंगे, वो नहीं हो पाएगा। भारत ने लगातार इस बात पर जोर दिया था 2020 के बाद और लगातार इस बात पर भारत अड़ा रहा कि जब तक हम बॉर्डर पर एक नॉर्मल सी नहीं देखेंगे, तब तक जो ब्रॉडर रिलेशनशिप है ये नॉर्मल नहीं है। तो मुझे लगता है उसको देखते हुए स्टेबलाइजेशन बॉर्डर पर हो गया है, उसको देखते हुए एक कॉन्फिडेंस दोनों देशों से निकल कर आ रहा है कि दोनों देश ये चाहते हैं और टॉप लीडरशिप दोनों देशों की चाहती है, जो मुद्दे हैं खासकर बॉर्डर का जो मुद्दा है उसको पॉजिटिवली डील किया जाए। लेकिन रेजोल्यूशन अभी भी काफी दूर नजर आता है, क्योंकि रेजोल्यूशन के लिए कुछ जो प्रीरिक्विजिट्स हैं वो होने पड़ेंगे। एक तो दोनों देशों को स्ट्रेटेजिकली वो रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजिकली कंपैटिबल होने पड़ेंगे। देखिए, अगर हम चीन की विदेश नीति को इस समय समझें, जैसा दुनिया में बहुत बदलाव आ रहा है और अमेरिका जिस तरह से अपने पार्टनर्स और एलाइज के साथ डील कर रहा है, उसको देखते हुए कहीं पर चीन को ऐसा लगता है कि अगर वो एक रिस्पॉन्सिबल पावर के तौर पर खड़ा नजर आएगा तो उसके संबंध अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ बेहतर हो पाएंगे। तो चीन ये दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है कि वो उस तरह का एक एग्रेसिव प्लेयर नहीं है जिस तरह का वो कुछ सालों पहले नजर आता था, एटलीस्ट पॉलिसी वाइज। तो उसको देखते हुए वो ये चाहेगा कि भारत भी कुछ कदम बढ़ाए और भारत और चीन के बीच में कुछ सामंजस्य बने जो एक स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में ला पाए। अब सवाल यहाँ पर ये होगा कि क्या ये चीन की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है या ये टैक्टिकल एडजस्टमेंट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को देखते हुए, और उस टैक्टिकल एडजस्टमेंट पर भारत कितना विश्वास कर सकता है, क्योंकि भारत के साथ और भारत चीन संबंधों में एक बात जो लगातार होती रही है कि ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल मिसिंग रहा है। भारत क्यों और किन मुद्दों को लेकर चीन के ऊपर ट्रस्ट करे, ये बहुत बड़ा विषय है भारत चीन संबंधों में, और अभी तक मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियां पैदा नहीं हुई हैं जहां पर भारत की तरफ से ये 100% कहा जा सके कि हम चीन को एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं। तो मुझे लगता है जो ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का 25th राउंड हुआ है टॉक्स का, ये उसी दिशा में संकेत दे रहा है कि दोनों देश ये चाहते हैं कि बॉर्डर पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहे, और इसी बात को कमेंट भी किया दोनों इंटरलॉक्यूटर्स ने, रॉन्गी ने और अजीत डोवल ने, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इस बात के लिए एक दूसरे की तारीफ और प्रशंसा की कि दोनों देश कमिटेड हैं इस समय कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहे। यहां तक तो हम पहुंच गए हैं और ये मुझे लगता है पॉजिटिव डेवलपमेंट है पीपल टू पीपल टाइज के पर्सपेक्टिव से, लेकिन क्या ये हमको एक लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन की तरफ ले जा रहा है, मुझे लगता है ये कहना भी जल्दबाजी।
0: जी हाँ, बिल्कुल जल्दीबाजी होगा ये कहना। मेजर जनरल, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, अगर हम थोड़ी बात सीमा प्रबंधन की करें तो एलएसी की अस्पष्टता और विभिन्न अवधारणाओं के कारण अक्सर लोकल फ्लैश पॉइंट्स बनते हैं। इस बातचीत में बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर जो सहमति बनी है, क्या वो 1993, 1996 और 2013 के द्विपक्षीय समझौतों के ढांचे को पुनर्जीवित कर पाएगी, या आपको लगता है कि एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की आवश्यकता है?
2: हमारे पास में 1993, 1996, 2005 और 2013 में जो एग्रीमेंट्स हुए थे और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स डिसाइड हुए थे, उन्होंने बहुत हद तक दोनों तरफ की सेनाओं को ग्राउंड पर भी आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करने से बहुत हद तक रोका है। 2020 के

0: गलवान क्लैश में, हालांकि ये बहुत दुखद घटना हुई है, बावजूद इसके दोनों तरफ से किसी ने भी आर्म्स का, शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया है। हम लोगों ने तो रायट कंट्रोल इक्विपमेंट होता है उसका भी इस्तेमाल नहीं किया था, चीन ने उनका इस्तेमाल किया, पहले से तैयार हुए लेजर्स का इस्तेमाल किया और इस तरह से हमको वहां पर थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन मोटे तौर पर जहां पर भी चाइनीज ट्रांसग्रेशन होता है या दोनों तरफ के पेट्रोलों में क्लैश होता है, मोटे तौर पर वो चीज ग्राउंड पर एग्जिस्ट करती है, धक्का मुक्की होती है, पुश होता है, बट फायरिंग के जैसे केसेस जो सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल कर दें वो अभी तक सीमित रहा है। लेकिन गलवान वाला जो क्लैश था उसने इन आत्मविश्वास के पॉइंट पर एक नया मेजरमेंट लाने की कोशिश की है और हमको जरूरत है कि हम अपने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं और जो बॉर्डर पे क्लैश होते हैं उनको हैंडल करने के तरीकों में और पॉजिटिव डेवलपमेंट लाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो लोकल लेवल पे क्लैश होते हैं, अगर वहां पर कोई भी लोकल कमांडर बहुत मैच्योर नहीं है और अपने देश द्वारा किए गए एग्रीमेंट्स को फुल्ली ऑनर नहीं करता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को नहीं मानता है और इनएडवर्टेंटली या थोड़े से उग्रवादिता की वजह से गोली चल जाती है, तो जाहिर है दूसरा भी उसका रिस्पॉन्ड करेगा और वह मामला काफी तूल पकड़ सकता है। कभी कभी वो मामला टैक्टिकल लेवल से बढ़ करके स्ट्रेटजिक एंगेजमेंट के लेवल तक जा सकता है, तो इसलिए अब जरूरत है कि हम इस चीज पर और संजीदगी से काम करें और उस संजीदगी को ग्राउंड पर उतारने का मेरी समझ से सबसे बढ़िया मॉडल यह है कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिलिनिएट करें। बॉर्डर का जो रिजोल्यूशन है वो तो लॉन्ग टर्म इशू है, उसके अपने बहुत ढेर सारे चैलेंजेस हैं, बट मेरा मानना यह है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अगर दोनों देशों में पॉलिटिकल विल हो तो उसको डिलिनिएट करना और ग्राउंड में आइडेंटिफाई करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं। लेकिन मुझे लगता है मौजूदा समय में दोनों देश के सबसे पावरफुल लीडर्स हिस्ट्री में एक साथ हैं, शी जिनपिंग का चाइना में कंट्रोल एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की इंडिया में लोकप्रियता और जो पॉलिटिकल पावर है, अगर दोनों में एक पॉलिटिकल विल हो तो मेरे ख्याल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिलिनिएट करके, डिमार्केट करके आगे बढ़ना कोई असंभव सी चीज नहीं लगती। मुझे लगता है कि ये किया जा सकता है, कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे दोनों देशों में विश्वास की कमी है और इसका जीता जागता उदाहरण आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉन्च किया था, उसमें चीन का कोई लेना देना नहीं था, बावजूद इसके चीन ने पूरा सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड करना, सारा इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, वहां पर कमांड कंट्रोल सेंटर एस्टैब्लिश करना, हर तरह की मदद पाकिस्तान को की। और इस समय ये माना जा सकता है कि जो वेपन सिस्टम चीन में है वो पाकिस्तान को भी अवेलेबल होंगे, सबमरीन्स मिल रहे हैं, ढेर सारी चीजें हो रही हैं, और ऐसे में भारत का चीन के इंटेंशन पर विश्वास करना और भी मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी दोनों देश डेमोंस्ट्रेट नहीं करेंगे, तब तक इस मुद्दे पर पॉजिटिव सिग्नलिंग हो सकती है, पोस्टरिंग हो सकती है, लेकिन ग्राउंड पर हकीकी बदलाव होना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक छोटी सी मुझे आशा इसलिए दिखती है कि इस समय जो विश्व में बदलाव हो रहे हैं, जो ग्रुपिंग्स बन रही है डिफरेंट कंट्रीज की रीजनल सिक्योरिटी में, जो यूएस का अप्रोच चल रहा है और कभी कभी तो ब्रिक्स को नाटो के अगेंस्ट एक बुलवर्क भी माना जा रहा है, जिसमें रशिया, चाइना और इंडिया का एक साथ आना उसके विरोध में खड़ा हो सकता है, तो अगर एक इंटरनेशनल कंपल्शन हुआ और इस कंपल्शन को रशिया, चाइना और इंडिया तीनों के अपेक्स लीडर्स ने, यानी प्रेसिडेंट पुतिन, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने समझा, आपसी विश्वास को बढ़ाया और एकजुट हुए, जो उसका स्पाइरल बेनिफिट होगा वो आपसी संबंधों में भी होगा, वो रिश्ते को रिजॉल्व करेगा, इंडिया और चाइना के बढ़ते हुए रिश्ते इंडिया पाकिस्तान के बीच के डायलॉग को भी बेहतर कर सकते हैं, रशिया, चाइना और इंडिया के जो रिलेशनशिप में अगर बेहतरी हुई तो उससे भी इंडिया चाइना के रिश्ते को फर्दर इम्पिटस मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि मौजूदा समय में विश्वास की जो कमी है उस पर काम करना जरूरी है, साथ ही साथ एलएसी को डिलिनिएट करना, उस पर काम होना चाहिए, बॉर्डर रेजोल्यूशन वो तो थोड़ा सा बाद में ही रखना पड़ेगा।
1: प्रोफेसर पंत, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारत का स्पष्ट रुख

0: रहा है कि जब तक सीमा पर शांति नहीं तब तक अन्य द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं हो सकते। इसके विपरीत चीन व्यापार और कूटनीति को सीमा विवाद से अलग रखने की बात करता है। 25वें दौर की इस बातचीत के बाद आपको क्या लगता है कि भारत अपनी इस लिंकेज नीति पर अडिग रहने में सफल रहा है?
1: मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने ये तो कन्विंस चीन को कर दिया है कि जो संबंध है भारत चीन के, इनको टुकड़ों में नहीं देख सकते, इनको अलग अलग डिस्टिंक्ट एंटिटीज के तौर पर नहीं देखा जा सकता। तो मुझे लगता है उसी का मतलब एक तरह से इस बात पर अग्री करने लगा है कि दोनों साइड्स को पॉलिटिकल सेटलमेंट करना चाहिए और बाउंड्री का, और वो ही दूरगामी इंटरेस्ट है दोनों साइड्स के, वो पूरे कर सकता है। हमने ये भी सुना भारतीय एनएसए को, डोवल साहब को ये कहते हुए कि लॉन्ग टर्म की बात करें तो भारत और चीन दोनों पार्टनर्स हैं, और जो एक प्रिडिक्टेबल फॉरवर्ड लुकिंग इंडिया चाइना रिलेशनशिप है ये महत्वपूर्ण है दुनिया के लिए। और जिसका जिक्र अभी हुआ कि दुनिया बदल रही है, और उस बदलती हुई दुनिया में भारत और चीन अगर साथ काम करेंगे तो उससे बहुत कुछ बदल सकता है, और फेवरेबली जो बदल सकता है, क्योंकि दोनों का इंटेंट काफी हद तक ग्लोबली अगर हम देखें उसमें मिलता है कि हम दोनों देश ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, दोनों देश रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर की बात करते हैं। तो लगता है कि ये जो इम्पोर्टेंस है एक दूसरे के कमिटमेंट को देखें, और खासकर 2005 का जो अग्रीमेंट था पॉलिटिकल पैरामीटर्स का, गाइडिंग प्रिंसिपल्स का, जिससे कि फेयर रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल पैकेज सॉल्यूशन बनता, इसकी बात दोनों ने करी है। तो कहीं पर भारत अपनी इस बात से चीन को कन्विंस करने में सफल रहा है। पुराना जो ढर्रा है वो नहीं चल सकता कि हम बाउंड्री इशू है उस पर प्रोग्रेस ना दिखाएं, और दूसरी तरफ हम ट्रेड की और पीपल टू पीपल टाइज की और कल्चरल टाइज की, पोलिटिकल समिट्री की बात करें। तो मुझे लगता है वहां पर जरूर ये प्रोग्रेस हुई है, लेकिन वो प्रोग्रेस अभी भी आधी है, क्योंकि रिटोरिकली दोनों देश एक साथ भले ही हो लेकिन ऑन द ग्राउंड जो प्रपोजल्स हैं वो अभी भी अलग अलग तरीके से इवेल्युएट किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए बॉर्डर मैनेजमेंट की बात, इसीलिए क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन की बात बढ़ चढ़ कर इस बार हुई, क्योंकि अगर बॉर्डर मैनेजमेंट इंप्रूव होता है तो उससे परसेप्शन भी इंप्रूव होता है कि दोनों देश कमिटेड है लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन के लिए। लेकिन अगर बॉर्डर मैनेजमेंट वीक होता है, अगर वहां पर तनातनी बॉर्डर एरियाज पर चलती रहे और वो मीडिया कवर करता रहे, बार बार ये बताता रहे लोगों को कि कैसे सेनाएं हमारी आमने सामने खड़ी हैं, वो एक दूसरे के सामने लगातार आ रही हैं, तो उससे वो जो ऑलरेडी लो ट्रस्ट फैक्टर है, ऑलरेडी लो विश्वास है, वो और कम होता है। तो मुझे लगता है इस बात को एड्रेस करने की इस राउंड में जरूर कोशिश करी और एक बैलेंस आउटकम निकल कर आया। अब ये बैलेंस आउटकम क्या हमको एक सीरियस नेगोशिएटिंग स्ट्रेटेजी के तौर पर आगे ले जाने की क्षमता दोनों देश रखते हैं, ये मुझे लगता है आने वाला समय।
0: मेजर जनरल अशोक जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयारी पर थोड़ी बातचीत अगर की जाए तो चीन द्वारा एलएसी के पार थिएटर कमांड स्तर पर बुनियादी ढांचे जिनमें एयरलिफ्ट है, हेलीपैड्स है और कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार किया गया है। ऐसा नहीं है कि भारत ने जवाब नहीं दिया, भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपनी सीमाई कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया है, लेकिन एक रक्षा विश्लेषक के रूप में आपके अनुसार क्या सीमा पर यह ढांचागत संतुलन भारत को कूटनीतिक मेज पर अधिक बार्गेनिंग पावर यानी सौदा करने की शक्ति प्रदान कर रहा है? क्या लग रहा है आपको?
2: इसको अगर आप देखेंगे तो एक दोनों तरफ के टेरेन को देखना आपको बहुत आवश्यक है। जो चीन की तरफ का टेरेन है वो तिब्बतन प्लेट्यू है, और जबकि हमारे यहाँ बॉर्डर पे जाने के लिए हम ऊपर चढ़ाई करते करते जाते हैं। इसीलिए अगर आपको याद होगा कि गलवान क्लैश के बाद में, या जब अक्टूबर 24 के बाद में फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट का एग्रीमेंट हुआ था, तो फोर्सेस को पीछे ले जाने वाली सहमति अभी तक नहीं बन पाई है, क्योंकि जो चीन है उसका आर्गुमेंट था सेनाएं पीछे जाएं इक्वल डिस्टेंस में, जबकि अगर मान लो 20 किलोमीटर चीन की सेनाएं पीछे जाती हैं और 20 किलोमीटर हमारी पीछे जाते हैं तो उसको 20 किलोमीटर कवर करने के लिए 2 घंटे लगेंगे और हमको 2 दिन लग सकते हैं। और भारत का मानना यह था कि दोनों सेनाओं का विड्रॉल हो वो इक्वल रिस्पॉन्स टाइम के बेसिस हो, क्योंकि दोनों तरफ के टेरेन डिफरेंट है। तो एक तो वो रियलिटी होना जरूरी है, दूसरे क्या है कि चीन ने 2015 में थिएटर कमांड बनाया था, जो उसका वेस्टर्न थिएटर कमांड है, जो कंप्लीट चाइना बॉर्डर जो इंडिया को देखता है उसमें बनाया गया है। इसमें कुछ एक खामियां भी हैं, बट बावजूद इसके उसके ज्यादातर जो रिसोर्सेज हैं वो सिंगल कमांडर के तहत सेंटर्ड हैं। हमारे पास उस समय एक समय ऐसा था कि जिसमें हमारा जो चाइना का बॉर्डर है उसमें नॉर्दर्न कमांड भी शामिल था, वेस्टर्न कमांड भी शामिल था, सेंट्रल कमांड भी शामिल था, ईस्टर्न कमांड भी शामिल था, और उसके बाद में कुछ एडजस्टमेंट हुए जिससे थोड़ा सा वेस्टर्न कमांड को जो हिमाचल प्रदेश का इलाका था वहां से करके उसको सेंट्रल कमांड के अंदर लाया गया, बट अभी भी तीन कमांड्स में वो बाइफरकेटेड है। उसके अलावा उसमें एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एयरफोर्स एंड उनकी भी जिम्मेवारियां हैं। लेकिन अब जो थिएटर कमांड की बात इंडिया में चल रही है वहां पे कंप्लीट नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे एक सिंगल थिएटर होगा, वो भी फोर्सेस को ऑप्टिमाइज करेगा हमारे रिस्पांस मैकेनिज्म को बेहतर करने के लिए। दूसरा है कि हमने 2014 के बाद में पिछले 12 सालों में बॉर्डर्स में अभूतपूर्व सुधार किया है। अगर आप वहां पे जाएं तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप उसी इलाके में आ रहे हैं जहां पर उसकी स्थिति 2013-14 में हुआ करती थी। चाहे वो अरुणाचल का इलाका हो, चाहे लद्दाख का इलाका हो, टनल्स बन गई हैं, रोड्स बन गए हैं, रोड्स चौड़े हो गए हैं, लेटरल कनेक्टिविटी बढ़ गई है, एयरफील्ड्स आ गई एकदम फॉरवर्ड एरियाज में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया का भी बहुत जोर है। लेकिन यह है कि चूंकि हमने शुरुआत थोड़ी लेट की थी और इसलिए अभी हमको अपना फुल पोटेंशियल पाने के लिए और भी मिशन मोड में काम करना पड़ेगा। जोजीला का में सुरंग बन रही है, अभी जल्दी ऐसा होगा कि हमारा बॉर्डर का एरिया जो है और बॉर्डर के लोग जो हैं वो सब लैंड रूट से कनेक्टेड हो जाएंगे, कोई मौसम के मोहताज नहीं होंगे और फोर्सेस को भी इस बेहतर कनेक्टिविटी से एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूवमेंट करना इजी हो जाएगा। हमारा जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है फोर्सेस का, जैसे एयरफोर्स की लिफ्ट कैपेबिलिटी है, हम ओन एयरक्राफ्ट C-295 बना रहे हैं, जिससे क्या होगा कि अगर लॉन्गर डिस्टेंस में भी फोर्सेस को शिफ्ट करना पड़ा तो वो सब भी संभव हुआ। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट था जिसमें चीन को एडवांटेज मिला था, उसको गैप को खत्म करने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहा है। आपको याद होगा अगर आप वर्बैटिम पढ़ें, 2005 का जो एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, उसमें ये भी कहा गया था दोनों देशों के बीच में कि किसी फ्यूचर बॉर्डर सेटलमेंट में वहां की जो सेटल्ड पॉपुलेशन है हम उसका ध्यान जरूर रखेंगे। और इसलिए भारत के बहुत जरूरी है कि वाइब्रेंट विलेजेस के माध्यम से अपने फॉरवर्ड एरियाज में, क्लेम एरियाज में लोगों को बसाए। लेकिन लोग तभी बस सकते हैं जब वहां बुनियादी ढांचा, एजुकेशन की फैसिलिटीज, वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज और वहां पर उनके एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हो। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, सेना को, सबको एक साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। ऑलरेडी काफी काम हो रहा है, उसको और भी ज्यादा तीव्र दिशा देने की आवश्यकता है।
0: प्रोफेसर पंत आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि चीन की वर्तमान आर्थिक चुनौतियां, अमेरिका चीन की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता और इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की मजबूत स्थिति, इन वैश्विक कारकों ने क्या बीजिंग को भारत के साथ वार्ता के लिए आने पर प्रेरित किया है, और साथ ही साथ क्या ये चीन का एक टैक्टिकल एडजस्टमेंट है या फिर लॉन्ग टर्म रणनीतिक बदलाव की दिशा में उठाया गया कदम, क्या लगता है?
1: जो आपका दूसरा सवाल है कि ये टैक्टिकल एडजस्टमेंट है या स्ट्रेटेजिक रियलाइनमेंट है, मुझे लगता है इसका जवाब तो कुछ समय बाद ही मिल सकता है हमको, जब हमको ये समझ में आए कि ये एक क्लियर पता चले कि चीन क्या जो उसने पॉलिसी अप्रोच अभी लिया है, क्या इस पर वो अडिग रहेगा। क्योंकि चीन में हमने देखा है बहुत चेंजेस, बदलाव आते हैं और चीन की पॉलिसी से बदलाव आते हैं, और वो बदलाव ऐसे होते हैं कभी कभी कि वो जो, जैसा भारत ने कहा है कि जो अग्रीड होता है उसको वो ओवरटर्न कर देते हैं। और इसीलिए जब जो गलवान इतना बड़ा शॉक हुआ वो इसलिए हुआ कि ये तो एक अग्रीड था कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द बॉर्डर जो अग्रीमेंट भारत और चीन के बीच में था उसको ओवरटर्न करके वहां पर जो गलवान वाला एपिसोड हुआ, तो उससे ट्रस्ट में बहुत बड़ी कमी आई। अब देखना पड़ेगा लगातार आगे आने वाले समय में कि किस तरह से चीन बिहेव करता है, क्या चीन अपनी पॉलिसीज पर अडिग रहता है, क्या चीन भारत के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ाने में कुछ गुड फेथ नेगोशिएट करता है। लेकिन मेरे ख्याल से इसका जिक्र पहले भी हो चुका है, देखिए समस्याएं और भी हैं चीन के भारत संबंधों में, जैसा ऑपरेशन सिंदूर के समय में हुआ, चीन और पाकिस्तान के संबंध जिस तरह के हैं, चीन जिस तरह से इंडियन ओशन में प्रेजेंस अपनी बढ़ा रहा है, वो सारी जो समस्याएं हैं वो अपनी जगह बनी हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चीन अपनी कोई रणनीतिक जो उसकी समझ है भारत के बारे में, भारत के बढ़ते हुए जिसका आपने जिक्र किया, भारत का प्रभुत्व है, प्रभाव है दुनिया में, वो बढ़ रहा है और चीन के लिए बिल्कुल एक परेशानी का सबब होगा कि चीन जो अपना प्रभुत्व चाहता है इंडो पैसिफिक में, हिंद प्रशांत में, उसमें भारत जैसा देश अगर उसको चैलेंज करता है तो चीन काम दाम दंड भेद सब कुछ करके उसको कोशिश करेगा कि भारत एक सेकेंड

0: पावर के तौर पर ही खड़ा रहे। तो मुझे लगता है इसीलिए ये बात को मानना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि चीन दूरगामी पॉलिसी अप्रोच भारत के लिए ले रहा है और वो अपने संबंधों को इस कदर ठीक करना चाहता है भारत के साथ कि बॉर्डर इशू जो भारत चीन संबंधों के कोर में है उस पर वो उसको टारगेट करके उसको सॉल्व करे। तो मुझे लगता है कि जो बदलाव आ रहे हैं दुनिया भर में वो एक रोल प्ले कर रहे हैं। चीन के अंदर भी समस्याएं हैं, चीन बाहर से भी थोड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से टारगेट कर रहा है, और मुझे लगता है उसको देखते हुए चीन को भी लगता होगा कि एक अच्छा मौका है कि भारत के साथ ने संबंधों को सुधार कर ट्रस्ट डेफिसिट जो है भारत के साथ उसको कम किया जा सकता है। लेकिन क्या ये हो पाएगा चीन से, और क्या भारत चीन को इस नजरिए से और अपना नजरिया भारत बदल पाएगा पूरी तरह से, ये मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा आगे आने वाली जो पर।
1: श्रोताओं, शांति और समाधान में अंतर होता है। शांति का अर्थ है टकराव न होना, स्थिरता का अर्थ है टकराव की संभावना को कम करना, लेकिन समाधान का अर्थ होता है उस मूल समस्या को समाप्त करना जिससे टकराव बार बार जन्म ले सकता है। भारत और चीन के सामने आज शायद सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या वे सीमा विवाद को केवल मैनेज करेंगे, क्या वे इतिहास के इस लंबे अध्याय को धीरे धीरे समाधान की दिशा में लेकर आगे बढ़ाएंगे। इसका जवाब केवल बीजिंग या नई दिल्ली की एक बैठक में नहीं मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा सीमा पर ग्राउंड रियलिटी से, सैन्य तैनाती के फैसलों से, कूटनीतिक निरंतरता से, और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक इच्छा शक्ति से, क्योंकि दो परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देशों के बीच शांति केवल द्विपक्षीय हित नहीं है, ये एशिया की स्थिरता से जुड़ा प्रश्न है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एक सकारात्मक समाधान देखने को मिलेगा। मेजर जनरल अशोक कुमार जी और प्रोफेसर हर्ष वी पंत जी, चर्चा का विषय है कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए, आप दोनों का बहुत बहुत आभार।
2: जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे भारत चीन संबंध, सीमा समाधान, शांति और स्थिरता पर विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे नाटक जेब कतरा।
1: प्रस्तुत है नाटक जेब कतरा, लेखक सादत हसन मंटो, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल।

0: अरे भाई ऊपर क्यों चढ़े आते हो, सुझाई नहीं देता क्या?
1: अमा कुछ होश की दवा करो, मैं कहाँ ऊपर आ रहा हूँ?
2: क्यों धक्के देते हो? अरे कुछ इस औरत का तो लिहाज करो। देखो बेचारी पिस गई है।
3: अरे हाँ यार भैया, थोड़ी सी जगह बना दो ना।
4: अरे तो तुम ही हट जाओ ना, थोड़ी जगह बना दो, बेचारी का बटुआ गिर गया है। ठहरिए मैं उठा देता हूँ, ये लीजिए।
5: शुक्रिया।
0: अरे अब ये क्या हो रहा है, रास्ता साफ क्यों नहीं होता?
1: पता नहीं, कहते हैं आगे छकड़ा उलट गया है।
2: समझ नहीं आता इतने छोटे बाजारों में छकड़े आखिर ये चलने क्यों देते हैं?
3: अरे भाई साहब, या तो बाजार बड़े और चौड़े किए जाएं, या फिर इन छकड़ों का साइज है ना जो, इसको छोटा किया जाए।

0: बड़े गिरधारी, बाजार चौड़े किए जाएं या छक्के छोटे, हमारी गाड़ी तो ऐसे ही चलती रहेगी।
1: क्यों? पर दाद इस बात की दो कि किस सफाई से उस लौंडिया बटवा नीचे गिराया
0: और बंदे ने किस फुर्ती से उसका पेट चाक किया।
1: भाई क्या कहने हैं तुम्हारे, बस अब जरा इन सब्जों की बहार दिखला दो यार।
0: बड़े बेसब्रे हो, और अगर ना हुए तो?
1: अरे तो तुम काशी जेब कतरे नहीं किसी दफ्तर के मुंशी हो।
0: अमा ऐसा कभी हो सकता है कि काशी कोई आदमी ताके और उसके पास से माल ना निकले? लो देखो, ज्यादा नहीं है, 200 के नोट होंगे। लो तुम गिनो। ये कागज क्या है?
1: अरे खातवात होगा। अरे नहीं, लिफाफा है, अब वो तुम खोलो। लेकिन मैं तो कहता हूँ 5 पैसे का स्टैंप लगाकर डाक में डाल दो, क्या याद करेगी?
0: खोल के पढ़ लो तो क्या हर्ज है?
1: अरे ये नोट तुम्हारी जेब में गीले हुए या बटुए ही से ही निकले हैं? भाई मुफलिसी में आटा गीला तो सुना था, नोटों का गीला होना नहीं सुना था। अरे पूरे 200 हैं। मैंने कहा तुमने पहले से तो नहीं गिन लिए थे? अरे खत तो तुम बड़ी दिलचस्पी से पढ़ रहे हो। हाँ तो क्या लिखती है श्रीमती जी? इश्क मोहब्बत का किस्सा तो नहीं है? अरे मैं जो कहता हूँ ये चश्मा पहनने वाली औरतें, अरे हाँ हमारी गली में एक चश्मा पहनने वाली औरत थी, शक्ल और सूरत से बड़ी खामोश और सोच विचार करने वाली दिखाई देती थी। लेकिन अरे भाई कुछ हमें भी बताओ कि क्या लिखा है इस खत में।
0: गिरधारी बहुत बुरा हुआ।
1: अच्छा क्या हुआ है?
0: मैं कहता हूँ बहुत बुरा हुआ है। लो तुम खुद पढ़ लो।
1: अरे अब तू बताओ भी यार क्या लिखा है इस खत में।
0: लाओ ये नोट भी मेरे हवाले करो, मैं इन्हें वापस करना चाहता हूँ।
1: अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या करना चाहते हो, कहीं बहक तो नहीं गए?
0: उसको इन रुपयों की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमारा काम इनके बगैर चल सकता है गिरधारी, मगर उस पर तो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा।
1: जरा खत फिर से दिखाना मुझे, कहीं गीता का कोई श्लोक नहीं लिख दिया उसने? भाई अजीब बहरूपियो है यार।
0: अब वो कहीं मिल जाए, कहाँ जाऊं किधर जाऊं कुछ समझ में नहीं आता। मैंने बहुत बुरा किया है गिरधारी, उसको रुपयों की सख्त जरूरत थी, मुझे सदमा हुआ है, भगवान जानता है मुझे बहुत दुख हुआ है, वो औरत बहुत दुखी है, तुम नहीं जानते वो कितनी दुखी है।
1: अच्छा
0: मैं बड़ा अत्याचारी हूँ, अब मैं क्या करूँ?
1: कुछ मत करो, ये नोट मेरे हवाले कर दो और चिमटा हाथ में लेकर साधु बन जाओ।
0: नहीं गिरधारी नहीं, मैं यकायक बदल नहीं गया, मैं सिर्फ उस औरत के रुपए वापस करना चाहता हूँ, इसलिए कि वो बेहद दुखी है, मैं जाता हूं उसकी तलाश में।
1: अरे काशी, काशी, अरे काशी।

0: मैंने एक बेबस औरत को बहुत दुख पहुंचाया है। उसको ढूंढते ढूंढते मैं थक गया। मैं बड़ा जालिम हूं, मैं राक्षस हूं।
1: अरे देखो भैया, वो औरत डूब रही है, वो देखो देखो।
0: ये कौन गिरा? मैं इसे डूबने नहीं दूंगा।

0: तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे डूबने दिया होता।
1: शुक्र है तुम बच गई, मगर तुमने पानी में छलांग क्यों लगाई? तुम तो वही औरत हो। मैंने तुम्हें पा लिया, मैंने आखिर तुम्हें पा लिया। ये ले अपने रुपए, मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा था। आह, अगर तुम मुझे ना मिलती तो बहुत मुमकिन था कि मैंने भी तुम्हारी तरह खुदकुशी का इरादा कर लिया होता। तुम अब ठीक तो हो ना? चलो तुम्हें किसी डॉक्टर के पास ले चलूं।
0: तुम कौन हो?
1: मैं जेब कतरा हूं।
0: क्या?
1: तुम्हारे बटुए से ये 200 रुपए के नोट मैंने उड़ाए थे।
0: तुमने मेरे बटुए से नोट निकाले थे, पर अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे ढूंढते रहे, तुमने ये हाथ आया हुआ माल मुझे क्यों वापस देना चाहा?
1: नोटों के साथ एक खत भी तो था जो तुमने
0: तो वो खत तुमने पढ़ लिया? तुम भी मेरे राज से वाकिफ हो गए, अब एक की बजाय दो हो गए। मैं मर क्यों ना गई?
1: देखो देखो, मुझे तुम्हारे राज से कोई वास्ता नहीं है। खत पढ़कर मुझे बेहद अफसोस हुआ कि मैंने एक ऐसी औरत के रुपए निकाले हैं जो बेहद दुखी है। तुमने 200 रुपए किस मुश्किल से जमा किए होंगे। मैं अब तुमसे क्या कहूं कि मुझे कितनी शर्मिंदगी है। मुझे बहुत दुख हुआ है, मैं शर्मसार हूं, लेकिन अब मेरा बोझ कुछ हल्का हो गया है कि मैंने तुम्हें पा लिया है, बचा लिया है।
0: नहीं, मैं समझती हूँ जो कुछ मैंने किया ठीक था। मुझे मर जाना चाहिए था, जी कर भी तो मैं मरी रहती हूँ, फिर और जीने से क्या फायदा? मैं डरती हूँ।
1: किससे?
0: मैं डरती हूँ कि तुम भी उसकी तरह मेरे जीवन पर काले भूत की तरह छा जाओगे। तुम भी मेरे राज का सौदा करना शुरू कर दोगे। तुम जेब कतरना छोड़कर मेरा दिल कतरना शुरू कर दोगे। खत पढ़ने के बाद तुम क्या मुझको नहीं जानते?
1: मैं जेब कतरा जरूर हूं, लेकिन इंसान हूं। मुझे तुमसे पूरी पूरी हमदर्दी है, मुझे माफ कर दो। तुम बड़ी बहादुर औरत हो।
0: लेकिन इस बात को कितने आदमी जानते हैं? किसे मालूम है कि गर्ल्स स्कूल की एक टीचर एक कमजोर और जईफ औरत 4 बरस से एक राक्षस को अपना खून पिला रही है? इस जुर्म की सजा मैंने पाली है। मैंने उससे मोहब्बत की और माँ बन गई। मोहब्बत मिट गई मगर उसकी थकावट बाकी है। बच्ची मर गई मगर माँ अभी जिंदा है। ये दो लाशें हैं जिनको वो अपने सीने से लगाए कुछ दिन जीना चाहती थी, लेकिन इसकी कीमत वसूली गई इसलिए कि दुनिया व्यवहार पर चलती है। यहाँ दुख मुफ्त नहीं मिलते, रोग लगाओ और उसके साथ दाम दो, ये इस दुनिया का उसूल है। औरत की एक कमजोरी 4 मंजिला मकान के मुकाबले ज्यादा नफा बख्श है। अगर किसी व्यापारी मर्द के हाथ में आ जाए तो उससे माह बा माह किराया वसूल करता रहता है।
1: तुम उससे डरती क्यों हो? तुमने किसी की चोरी नहीं की, तुमने डाका नहीं डाला, तुम्हें किस बात का डर है?
0: मैंने चोरी नहीं की, मैंने डाका नहीं डाला, तभी तो मैं डरती हूँ। तुम दूसरों की जेब काटते हो और नहीं डरते। मैं अपनी जेब कटवाती हूँ इसलिए डरती हूँ।
1: तुम मुझे कोसे जा रही हो? परमात्मा के लिए अब जाने दो। मैं तुमसे कहता हूं, मैं सबका सब अच्छा हूं, सिर्फ एक मेरी उंगलियां बुरी हैं। मैं चाहता हूं कि ये भी अच्छी बन जाए, मगर
0: तुमने कभी इनको अच्छा बनाने की कोशिश नहीं की। अगर तुम कोशिश करो तो हो सकता है। तुम सचमुच अच्छा बनना चाहते हो?
1: हाँ, बशर्ते कि
0: मैं तुम्हें अच्छा बनाऊंगी। आज ही से मैं तुम्हें सुधारने का काम शुरू कर दूंगी, मगर तुम मुझसे वादा करो कि जो कुछ मैं कहूंगी तुम मान लोगे।
1: मैं वादा करता हूं।

0: क्या कर रहे थे?
1: अब कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं।
0: मैं सब कुछ देख चुकी हूँ, पर मैं पूछती हूँ कि ये हरकत क्या थी?
1: मैंने क्या किया है? मैं सारा दिन इस कमरे में बैठा तुम्हारी दी हुई किताबें पढ़ता रहता हूँ। मैंने एक कदम बाहर नहीं रखा, एक महीने से मैं कहीं बाहर नहीं गया। तुम्हारे सिवा किसी आदमी की शक्ल तक मैंने नहीं देखी। ये सब किताबें जो तुमने मुझे दी थी, सब की सब मैंने पढ़ डाली हैं। अब बताओ मैं क्या करूं?
0: जो कुछ मैंने पूछा पहले उसका जवाब दो। तुम अभी अभी क्या कर रहे थे?
1: तुम देख तो चुकी हो।
0: तो ये ठीक है कि तुम?
1: हाँ ये ठीक है। मैंने अपने कोट की जेब से सिगरेट की डिबिया निकाली थी और फिर वहीं डाल दी थी। मैंने उसी तरह दो मर्तबा अपना बटुआ भी निकाला था। मगर तुम मुझे ऐसी मलामत भरी नजरों से क्यों देख रही हो? ये कोट मेरा अपना ही तो है और इसमें जो चीजें पड़ी हैं वे भी तो मेरी हैं। मैं अपनी जेबों में से अपनी ही चीजें निकाल रहा था, इसमें हर्ज क्या है?
0: काशी, काशी तुम्हारी हालत काबिल रहम है। तुम इतने बिगड़ चुके हो कि तुम्हें सुधारना बहुत ही मुश्किल काम है। मैं तो नाउम्मीद हो चली हूँ।
1: तुम कुछ गौर तो करो, यूं चुटकियों में तो ऐसे काम नहीं हो सकते। ये भी तो सोचो कि मैं कितने बरसों से जेबें काट रहा हूं, एक महीने में तुम मेरी ये आदत कैसे दूर कर सकती हो? मैं तो कहता हूं कि जितनी जल्दी ये आदत दूर हो जाए उतना ही अच्छा है, पर ये उंगलियां तो आहिस्ता आहिस्ता ही राह पर आएंगी।
0: तुम्हें दरअसल पराए माल पर हाथ साफ करने का चस्का पड़ा हुआ है। तुम कभी दुरुस्त नहीं हो सकते। तुमने आज तक खुद कमाकर खाया हो तो तुम्हें इन बातों का इल्म हो। तुम क्या जानो कि मेहनत मशक्कत क्या बला है? मेरी तरफ देखो, मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, 100 रुपए मुझे माहवार मिलते हैं,
1: जिनमें से 50 नहीं 70 वो आदमी वसूल कर लेता है।
0: चाहिए तो ये था कि मुझे हर तरह का आराम मयसर होता, मगर तुम देख चुके हो। तुम जानते हो कि मैं बहुत दुखी हूं, मुझे एक पल चैन नहीं मिलता। मेरी मजलूमियत की इंतहा यह है कि एक निकम्मा फाउंटेन पेन भी मैं खरीद कर नहीं ला सकती, हालांकि दूसरों के पास अच्छे अच्छे कलम देखकर रोज मेरा जी ललचाता है, मगर मजबूरी है। सीने पर पत्थर रखे मैं काम किए चली जा रही हूं, इसलिए कि मुझे जीना है। और एक तुम हो कि अपनी उंगलियों को काबू में नहीं ला सकते। तुम्हारे पेश नजर तो फिर कोई मंजिल है, लेकिन मैं मंजिल की तलाश में भटक रही हूं। तुम बड़े बदकिस्मत हो काशी।
1: मुझे माफ कर दो, मैं अब ऐसी हरकतें नहीं करूंगा। मैं सच्चे दिल से वादा करता हूं कि फिर ऐसी हरकत नहीं करूंगा।
0: मेरी मजलूमियत की इंतहा यह है कि एक निकम्मा फाउंटेन पेन भी मैं खरीद कर नहीं ला सकती। एक निकम्मा फाउंटेन पेन भी मैं खरीद कर नहीं ला सकती।
1: मुझे विमला के लिए कुछ करना चाहिए, एक फाउंटेन पेन देना चाहिए। मैं इतने दिनों से इसके घर रहा हूं, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। हाँ, कल विमला की सालगिरह है, मैं बाजार जाऊंगा।
0: मेरी मजलूमियत की इंतहा यह है कि एक निकम्मा फाउंटेन पेन भी मैं खरीद कर नहीं ला सकती। एक निकम्मा फाउंटेन पेन भी मैं खरीद कर नहीं ला सकती।
2: अंधा है क्या, देख के नहीं चल सकता?
1: माफ करना भाई।
0: तो कल तुमने खूब बाजारों की सैर की, सारा दिन घूमते रहे ना?
1: हाँ सारा दिन घूमता रहा।
0: आज मौसम कितना अच्छा है, देखो आसमान का रंग मेरी चूड़ियों की तरह निखरा हुआ है।
1: हाँ चूड़ियों का रंग आसमान की तरह निखरा हुआ है। ये चूड़ियाँ तुम्हें पसंद है?
0: हाँ, जब दुकान पर थी तो इतनी खूबसूरत नहीं थी। तुम मुझे बनाओ नहीं।
1: आज तुम्हारी सालगिरह है ना?
0: है तो सही, लेकिन
1: सालगिरह अच्छी होती है।
0: ये तुम क्या उठपटांग बातें करते हो?
1: मैं सोचता हूँ, मैंने कई मर्तबा सोचा है कि अब दुनिया में मेरी हैसियत एक फालतू आदमी किसी हो गई है। छकड़े में अगर 5वां पहिया लगा दिया जाए तो मेरी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। मेरा जी चाहता है कि कुछ नहीं, तुम कितनी अच्छी हो विमला, मेरा जी चाहता है कि मैं तुम्हारी खिदमत करूं, खिदमत खिदमत खिदमत। हाँ मेरा जी चाहता है कि मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूं।
0: काशी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई बात मुझसे छुपा रहे हो।
1: नहीं तो?
0: देखो काशी, लड़ाई हो जाएगी, तुम झूठ बोल रहे हो। बोलो, सोच क्या रहे हो?
1: मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ, कबूल करोगी?
0: पहले मुझे तोहफा दिखाओ।
1: तुमने उस रोज कहा था कि मेरी मजलूमियत की ये इंतहा है कि मैं एक फाउंटेन पेन भी नहीं खरीद सकती, हालांकि दूसरों के पास अच्छे अच्छे कलम देखकर रोज मेरा जी ललचाता है। मैं कल बाजार गया तो ये कलम तुम्हारे लिए।
0: दिखाओ तो।
1: ये लो।
0: बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कलम है।
1: तुम्हें पसंद आया?
0: क्यों नहीं, लेकिन तुमने ये लिया कहाँ से? बोलो, कहाँ से लिया?
1: एक राह चलते आदमी की जेब से।
0: काशी, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? जो चोरी की चीज तुमने मुझे तोहफे के तौर पर दी है, मैंने तुमसे पहले ही नहीं कहा था कि तुम कभी दुरुस्त नहीं हो सकते? चोरी चकारी तुम्हारी रग रग में बस चुकी है। तुम बहुत जलील आदमी हो।
1: मगर
0: मैं कुछ सुनने को तैयार नहीं। क्या तुम ये समझ रहे हो कि चोरी का ये माल देखकर मैं खुश हो जाऊंगी?
1: लेकिन विमला, तुम मेरी बात तो सुन लो, मैं कसूरवार हूं, लेकिन
0: लेकिन लेकिन क्या?
1: तुम जरा सोचो तो, यानी जो कुछ मेरे दिल में है उसकी कुछ खोज लगाओ। मैंने कलम इसलिए नहीं उठाया था कि तुम उसे लेकर खुश हो जाओगी। उस रोज जब तुमने कहा कि मेरी मजलूमियत की इंतहा है कि मैं एक निकम्मा फाउंटेन पेन भी नहीं खरीद सकती, तो यकीन मानो
3: मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं आज तक कभी नहीं रोया,
1: मगर उस रोज मैं रोया। मैं अपने दिल का हाल किसे बयान करूं विमला? मैं जानता हूं कि मैंने गलती की, मैंने तुम्हें फिर ना उम्मीद किया है, मगर मैं क्या करूं। राह चलते आदमी की जेब में जब मैंने कलम देखा तो अपने आप मेरी उंगलियों में हरकत पैदा हुई और कलम मेरे पास था। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है, मैं शर्मिंदा हूं।
0: तुम कभी दुरुस्त नहीं हो सकते। जेबें कतरने की आदत अब तुम्हारी तबीयत बन गई है।
1: तुम ठीक कहती हो।
0: मुझे अफसोस इस बात का है कि बावजूद पूरी कोशिश के मैं तुम्हें दुरुस्त नहीं कर सकी। तुम बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हो काशी।
1: तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूं?
0: जाओ, जो जी में आए करो, लोगों की जेब काटो, चोरी करो, डाके डालो। तुम्हें इस बात की क्या खबर है कि मैं?
1: परमात्मा के लिए तुम रो नहीं। देखो, मैं अच्छा हो जाऊंगा, मैं अच्छा बनने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं जाता हूं, अपने आप को दुरुस्त कर लूं, फिर तुम्हें अपना मुंह दिखाऊंगा।
3: अच्छा, तो फिर मिलेंगे।

0: मैं इस मामले में ज्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता। बड़ी सीधी सी बात है कि मैं यकलक तुमसे कुछ रुपया लेकर तुम्हारे खत तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ।
1: मेरा राज आप मेरे ही पास बेच रहे हैं?
0: मुझे छानबीन पसंद नहीं। तुम्हें इन खतों की जरूरत है और मुझे मुझे यकलक कुछ रुपयों की। क्या तुम्हें यह सौदा कबूल है? खत हासिल करने के बाद तुम्हें किसी बात का खटका नहीं। ये बात खास तौर से काबिले गौर है।
1: मैं अच्छी तरह गौर कर चुकी हूँ पर मुझे लगता है कि इसमें भी आपकी कोई अय्यारी छिपी हुई है।
0: तुम्हारे शुबाहात बिल्कुल गलत हैं। मैं एक सौदा करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक, वरना।
1: कितने में आप फैसला करना चाहते हैं?
0: 500 रुपए में।
1: ये तो बहुत हो गए।
0: इससे कम में सौदा नहीं हो सकता।
1: सारे खत आपके पास इस वक्त हैं?
0: नहीं, जब सौदा पक्का हो जाएगा मैं ले आऊंगा।
1: इतने रुपयों का इंतजाम तो हो नहीं सकता। क्यों ना काशी की मदद से इसकी जेब कटवा ली जाए। ये मैं क्या सोच रही हूँ, लेकिन लेकिन और चारा भी क्या है?
0: क्यों विमला, क्या सोच रही हो?
1: मैं ये सोच रही थी कि आप बोरी बंदर के स्टेशन पर मिल सकते हैं, यानी कि आप मेरा 1 और 2 बजे के अंदर इंतजार कर सकते हैं।
0: ये सब हो जाएगा, मगर सवाल ये है कि
1: आपका सौदा मुझे मंजूर है। मैं कल रुपए ले आऊंगी, आप सारे खत ले आइएगा। देखिए बाकी कोई ना रखिएगा, और मैं 1 और 2 बजे के दरमियान बोरी बंदर के स्टेशन पर पहुंच जाऊंगी। आप वो खत डालने वाले बम्बे के पास खड़े रहिएगा और मैं सीधी वहीं आ जाऊंगी। तो ये तय हो गया ना?
0: हाँ तय है, कल शायद हमारी आखिरी मुलाकात होगी।
1: परमात्मा करे कि ऐसा ही हो। तो 1 और 2 बजे के दरमियान वहां पहुंच जाएंगे ना?
0: हाँ हाँ पहुंच जाऊंगा।
1: अब मुझे काशी की तलाश करनी है, वो मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा। काशी कहाँ है?
2: 3-4 रोज से मुलाकात नहीं हुई, घर होगा।
1: आपको पता है काशी कहाँ है?
3: जी नहीं।
1: काशी कहाँ है?
2: अस्पताल में।
1: अस्पताल में?
2: हाँ, किसी ने मुझे बताया था कि वो 3-4 रोज से अस्पताल में है। नहीं, 3-4 रोज से नहीं, 10-15 रोज से, क्योंकि उसने मुझे यह भी बताया था कि अब वो अस्पताल से आने ही वाला है।

0: काशी।
1: अरे विमला, तुम यहाँ कैसे आई?
0: तुम मुझे ये बताओ कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है?
1: बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। मुझे क्या हुआ था? ऐसे ही।
0: तुम बिल्कुल ठीक हो ना?
1: हाँ हाँ।
0: सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। तुम चल फिर सकते हो ना? तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत मिल जाएगी ना?
1: हाँ क्यों नहीं, कहो तो, अभी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बताओ क्या काम है?
0: बताती हूँ। देखो, कल 1 और 2 बजे के बीच बोरी बंदर के स्टेशन पर एक आदमी आएगा। मैं तुम्हें उसका हुलिया बता दूंगी।
1: बहुत अच्छा।
0: उस आदमी की जेब में खतों का एक पुलिंदा होगा। तुम वहीं आसपास रहना और मौका मिलते ही जेब से। तुम चुप क्यों हो काशी? बोलते क्यों नहीं?
1: विमला, मैं अब अच्छा बन चुका हूं। मैं अपने दोनों हाथों की उंगलियां कटवा चुका हूं। ये देखो।
0: नहीं।

अभी आप सुन रहे थे सादत हसन मंटो का लिखा नाटक जेब कतरा। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है: काशी आलोक चटर्जी, विमला डॉली मल्होत्रा, गिरधारी बालेंद्र सिंह कुशवाहा, ब्लैक मेलर कमल जैन, आदमी एक प्रेम प्रकाश अष्ठाना, आदमी दो मोहम्मद लुकमान खान, आदमी तीन विक्रांत निम्बोरे और आदमी चार की भूमिका निभाई राम रतन सेन ने। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवा रहे हैं श्रुति अधिकारी का संतूर वादन। राग है बसंत मुखारी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे श्रुति अधिकारी का संतूर वादन, राग था बसंत मुखारी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, इसके बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा और धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा।
1: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851316807 और 9779701075000 पर संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने बताया है कि वह बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेइचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग जी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया तथा 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे पर समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासियों ने आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलवासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। हंगरी में PSA बुडापेस्ट स्वेश ओपन में भारत के वीर चोटरानी और सेल्वन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना ओरकेल। A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet today, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhote Koshi River this morning from the direction of Tibet. Preliminary reports suggest that the flash flood may have been triggered by an earthquake that caused an avalanche, sending large quantities of melted snow into the Bhote Koshi River. Rescue and relief operations have been intensified, with the Nepal Army deploying helicopters and disaster response teams to support search operations. Security officials said 93 people have been rescued from the different parts of the affected areas. According to the Nepal Tourism Board, those reported missing include foreign nationals and Nepali citizens. Among the foreign nationals, 105 are Indians, while 37 are NRIs, most of whom were travelling to Tibet for the Kailash Mansarovar Yatra. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan expressed grief at the loss of lives in the neighbouring country. Prime Minister Narendra Modi spoke to his Nepalese counterpart Balendra Shah and conveyed his condolences. In a social media post, Mr. Modi said, India is ready to provide all possible humanitarian assistance to Nepal. Meanwhile, India has dispatched 10 tons of humanitarian assistance and disaster relief and essential medicines to support the people of Nepal. The Indian Embassy in Kathmandu has issued emergency numbers for assistance and information regarding Indian nationals affected by the flash floods in Nepal. The embassy said that people requiring assistance can contact the embassy on helpline +977 985 131 6807, +977 970 910 7500, and +977 981 032 6117. These emergency numbers can also be contacted through WhatsApp. Bihar has stepped up preparedness following flash floods in the Himalayan nation and the possibility of a sudden rise in the water level of the Gandak River. Heightened vigilance is being maintained in six districts. districts of Bihar, West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Saran, Muzaffarpur and Vaishali, Chief Minister Samrat Chaudhary said that a high-level team has been constituted to closely monitor the situation. Union Home Minister Amit Shah spoke to Chief Minister Samrat Chaudhary over the phone in view of the flood situation in neighbouring country. Mr. Shah assured state government of providing all possible assistance to deal with the emerging situation. In Uttar Pradesh as well, vigilance has been intensified in the districts of Maharajganj and Kushinagar near the Nepal border. Chief Minister Yogi Adityanath has directed the local administration to take all necessary precautionary measures and maintain strict vigil. NDRF Commandant Gyaneshwar Singh said the National Disaster Response Force NDRF has deployed 9 teams in Bihar and 11 teams in Uttar Pradesh to deal with the emerging situation following the flash floods in Nepal. Union Minister of Railways Ashwini Vaishnav has said that Indian Railways is moving towards four-laning the entire high-density railway routes. In a social media post, Mr. Vaishnav said there are 7 high-density routes spread over nearly 11,000 kilometers and carry a major share of the country's rail traffic. The 7 high-density routes are Delhi-Howrah, Howrah-Chennai, Chennai-Mumbai, Mumbai-Delhi, Delhi-Chennai-Mumbai-Howrah and Delhi-Guwahati. The Indian Medical Association IMA has urged people to remain vigilant amid a seasonal rise in influenza AH1N1 cases, saying that the majority of infections are mild and self-limiting and there is no cause for panic. The IMA has advised people not to take antibiotics over the counter for flu symptoms, stressing that H1N1 is a viral infection and antibiotics do not kill viruses. The Delhi government today handed over approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under the Delhi Lakshmi Yojana. Out of this, 2,500 letters were given at a formal ceremony. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है. रात्रि के 11:10 हुए हैं. अब हमारी सायंकालीन सभा यहीं पर समाप्त होती है. कल प्रातःकालीन सभा में हम आपकी सभा में फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. जय हिंद.